चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है,

0: हरी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: है संक्षिप्त समाचार आपसे गीता। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतू शाह, सभी को हमारा नमस्कार। दो साल बाद अब 30 से ज्यादा अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख इस सोमवार से केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित होने वाले अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में एकत्र होंगे। प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम भी इसमें शामिल होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री विशेष रूप से 12 मई के कार्यक्रम में भाग लेंगे, जब सभी नेता विभिन्न गोलमेज बैठकों में हिस्सा लेंगे। दवाओं के भंडारण पर पब्लिक अकाउंट कमिटी पीएसी की विशेष रिपोर्ट ने संसदीय समिति के भीतर तनाव पैदा कर दिया है। राष्ट्रसभा के स्पीकर को भेजे गए एक पत्र में पीएसी के 5 सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष अध्यक्ष

केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों में रिपोर्ट का राजनीतिक उपयोग किया है, जबकि उन्होंने दस्तावेज के निष्कर्षों और सिफारिशों के प्रति अपना समर्थन भी दोहराया है। आने वाले 13 से 15 मई तक आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड मॉरिशस विश्वविद्यालय में इंडेंचर्ड लेबर रूट पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। ये चौथा संस्करण विभिन्न देशों से आए शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को एक मंच पर एकत्र करेगा। और विदेशी खबरों में हंटा वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज से रविवार को यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के समूह उतरे और उन्हें उनके संबंधित देशों में वापस भेजा गया। ये प्रक्रिया वैश्विक स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में चल रही है और आज भी जारी रहने की उम्मीद है। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। बादलों के झुंड मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। आज सुबह और दोपहर बाद को पूर्व, दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहेली इलाकों पर 28 से 30, न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 18 से 20 और साहेली इलाकों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज रात बादल घिरे रहेंगे, ऊंचे इलाकों पर हल्की बारिश होगी। पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 2.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:29 पर और शाम 5:43 पर सूरज ढल जाएगा। ये थी अब तक की खबरें। पूरा समाचार बुलेटिन आप सुबह 6:30 सुन सकेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन। RM3 Radio.

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो एक फरिश्ता उसके पास आता है और उसके पीछे खड़ा होकर गौर से कुरान सुनने लगता है और करीब होता रहता है, वो सुनता रहता है और करीब होता रहता है हत्ता कि वो अपना मुंह उसके मुंह पर रख देता है। उसके बाद वो जो आयत भी पढ़ता है तो वो फरिश्ते के पेट में जाती है।

मसनद अहमद की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स उस वक्त खड़ा हो जब सूरज बुलंद हो चुका हो, फिर अच्छी तरह वजू करके दो रकत नमाज पढ़े, तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे और वो ऐसे हो जाएगा जैसे उसकी माँ ने उसे उसी दिन पैदा किया हो। सनन अबू दाऊद की रवायत है, अंधेरों में इशा और फजर की नमाजों के लिए मस्जिद जाने वालों को रोज़े क़यामत के पूरे नूर की खुशखबरी सुना दो।

सामईन, मस्जिद भी इंसाफ की जगह है जहां अमीर गरीब दोनों भीख मांगते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसका नेक अमल ज़ाया हो गया। बहवाला सही अल बुखारी। सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ वो आदमी जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता जो सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज और सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज पढ़े।

हजारों अफकार उलझा देती है मगर एक सजदा सब सुलझा देता है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल जन्नत से ज़्यादा करीब कर देता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज़ें अपने अपने औकात पर पढ़ना। बहवाला मुस्लिम शरीफ। तबरानी की रवायत है, हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम नमाज में खड़े हुआ करो तो अपने इमाम से रुकू और सजदे में जल्दी न किया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ का फल है और नमाज का फल दुआ है। सामईन कराम, आज के प्रोग्राम में हमने नमाज से मुतालिक चंद बातें और अहादीस आपके सामने रखीं। उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा पहुंचा। तकनीकी मदद के लिए रामा साहब का शुक्रिया। अपनी मेज़बान बीनाज जान अली को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

0: 94.6
1: with RJ Sundaram from 7 a.m. to 8 a.m. Danny Sayaranga.

0: we all get sundaram.
1: Your music, your request.

गुजराती गीत संगीत नी दुनिया मा तद्दन नवीज महक साथे कवि श्री स्नेहल पटेले आ एल्बम द्वारा जीवन ना विविध प्रसंगों अने अनेक विध रंगों ने हूबहू काव्यात्मक रीते आलेख्या छे। जेम के राधा कृष्ण ए प्रेम नु उत्कट स्वरूप छे। प्रेम नी निर्मलता उत्कटता अने निखालसतानी वात ज्यारे आवे त्यारे राधा कृष्णना प्रेम नो उल्लेख थाय ज। प्रेमी पोतानी प्रियतमाने विश्वास आपवा मांगे छे के एनो प्रेम ए निर्दोषता अने पवित्रतानो साचो प्रतीक छे। प्रेम भक्ति छे। प्रियतमा पासे ए एवाज प्रेम भक्ति नी अपेक्षा करे छे। आ भावने कविए सुंदर रीते रजू कर्यो छे आ गीतमां।

0: शक्ति। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप सुन रहे हैं आलम थ्री रेडियो मनोरंजन पर आपका अपना दिल का अपना शो भक्ति में शक्ति। ये 45 मिनट जो हैं, जो कि आप बिना भाग दौड़ बिना किसी टेंशन के बस आप और मैं और हमारे भगवान की बातें, तो सीधे दिल से कनेक्ट करो दोस्तों। आज की भक्ति में शक्ति में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस सबको ये इतना ही कहेंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने परमात्मा के साथ जुड़े रहें।
1: RM3 Radio.

0: दोस्तों, कोई भी काम शुरू करो पहले गणपति को याद करो। उनका नाम लेते ही जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जब हम करते हैं और अंदर से एक ताकत आ जाती है, क्योंकि गणपति बप्पा सिर्फ मूर्ति में नहीं, वो है हर इंसान में, हर तकलीफ में, जो हारना मंजूर नहीं करता और बस इतना ही कहता है, गणपति बप्पा है ना सारे विघ्नों को हरने के लिए। आज जो भी मुश्किल है तुम्हारी, बप्पा के आगे रख दो, वो संभाल लेंगे। बस अपने आप अपनी आस्था को बनाए रखो।
1: RM3 Radio.

0: भक्तों, महादेव के बारे में एक बात मुझे बहुत प्यारी लगती है, वो है भोलेनाथ। मतलब इतने सरल है ना वो, ना कोई बड़ा महल चाहिए उनको, ना सोना चांदी, बस एक बेल का पत्ता या थोड़ा सा पानी, जिसे हम जल कहते हैं, और उसे कहते हैं सच्ची भक्ति। सोच के देखो भक्तों, जब दुनिया उलझी हुई लगती है, शिव जी ही याद दिलाते हैं सादगी में ही असली शक्ति है। अगर आप सादे हैं, सरल हैं, तो जरूर शिव के पास हैं।
1: RM3 Radio.

0: भक्तों, विष्णु जी को कहते हैं पालनहार, मतलब जो पालता है, रक्षा करता है, संतुलन बनाए रखता है। सृष्टि के अंदर हर चीज का संतुलन, जैसे समुद्र अपनी जगह पे बैठा है, आकाश में बहुत गर्मी नहीं होती, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, इंसानों को, हर जीव को वो पालता है। और सोच के देखो, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, नारायण ने हर बार अवतार लिया है, हर बार आकर धर्म को बचाया है। जो आज अगर ज़िंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो डरो मत, पालनहार देख रहा है, वो आएगा, वो आता है।
1: RM3 Radio.

0: भक्तों, एक बात पूछूं, कभी सोचा है इतने सारे भगवान क्यों हैं हमारे पास? क्योंकि जिंदगी इतनी बड़ी है ना कि एक अकेला तो संभाल नहीं पाएगा। बप्पा है हिम्मत के लिए, महादेव है सादगी के लिए, नारायण है रक्षा के लिए, माँ दुर्गा है शक्ति के लिए। ये सब एक बड़े परिवार की तरह है और हम सब उनके बच्चे, तो कभी अकेला महसूस मत करना। पूरा देव परिवार है हम सब की रक्षा, सहायता और हर तरीके सुख देने के लिए।
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: तो दोस्तों ये था आज का आपका भक्ति में शक्ति, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ भक्ति के लिए, सिर्फ दिल से दिल की बातें। उम्मीद है आज की भक्ति में आपको थोड़ी सी शक्ति ज़रूर मिली होगी। मैं थी आपके साथ पूनम, आपके साथ RM3 रेडियो मनोरंजन पर। अगले सोमवार फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। मेरे बाद आएंगे डेविड अपने प्रोग्राम के साथ। इन्जॉय कीजिए लास्ट आपका भजन।

0: 跟住上一首。
1: 你收听的是无理求思广播电台819频道。我唱得

接过吻的经历，见过最美玫瑰，更试过失去再得到那种快慰，有最冷的雨季

0: शक्योता मित्स एग्जैक्टली नो ना ये सुनते समाचार गीता के साथ नमस्कार
1: नमस्कार गिरीशा सभी को हमारा नमस्कार प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल शाम नैरोबी पहुंचे वे अफ्रीका फॉरवर्ड समिट में भाग लेने के लिए एक सार्वजनिक निजी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं इस शिखर सम्मेलन का सह आयोजन केन्या और फ्रांस द्वारा किया जा रहा है अपने आगमन पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री का जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केन्या के स्वास्थ्य मंत्री आडेन डुआले ने स्वागत किया नैरोबी के जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल शाम प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बीच अत्यंत सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई दोनों नेता लगभग एक ही समय पर केन्याई धरती पर पहुंचे और उन्होंने हवाई अड्डे के स्टेट लाउंज में मुलाकात करने का फैसला लिया लगभग 10 मिनट तक चली इस बातचीत के दौरान दोनों हस्तियों ने अपने उत्कृष्ट संबंधों की समीक्षा की ये अवसर मॉरिशस से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का भी रहा जिनमें जलवायु परिवर्तन बहुपक्षवाद तथा वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार शामिल थे इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने एमबीसी को साक्षात्कार भी दिया एंटोनियो गुटेरेस ने सुशासन और लोकतंत्र के क्षेत्र में मॉरिशस को एक शानदार उदाहरण बताया जबकि डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा मॉरिशस को हमेशा मिलने वाले सहयोग का उल्लेख किया विशेष रूप से हाल ही में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की के संदर्भ में रॉबर्टसन रिपोर्ट के प्रकाशित होने के 13 साल बाद भी ये मॉरिशस में मीडिया के भविष्य को लेकर चर्चा और विचार विमर्श का केंद्र बनी हुई हैं प्रेस की स्वतंत्रता पत्रकारों की जिम्मेदारी नैतिकता मीडिया पेशेवरों की सुरक्षा और जनता के लिए सुलभ शिकायत विवरण व्यवस्था इस रिपोर्ट की कई सिफारिशों का इस सप्ताह फिर से उल्लेख किया गया जब मीडिया ट्रस्ट द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शांतिपूर्ण भविष्य के लिए जिम्मेदार और स्वतंत्र मीडिया विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और विदेशी खबरों में उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी और बारिश से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है जबकि राजस्थान गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर बना रहेगा दिल्ली उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा और पहाड़ी राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए कुछ ही देर में शोक समाचार रॉयल रोड सचमिल थ्रियोली में 88 साल की 88-year-old की श्रीमती रुक्मीन रामसुहोई पैदाश नाम राम गुलाम और जो सुभावती से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर रॉयल रोड सचमिल थ्रियोली से उठाकर बामौशों तेरूश की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM 58 साल की किस्नावती मोइकू पैदाश नाम गोकुल और जो रानी से ज़्यादा जानी जाती थी और जो एवेन्यू बेलिल बॉम्बू रहती थी की मृत्यु हो गई हैं अर्थी आज दिन के 1:30 बजे लाशापेल ओदों डेमुगा रॉयल रोड पेचित रिविया से उठाकर गांधी पालमा काथोबोन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio Mana.

सुहाना सफर सुहाना सफर। दिन के 12:10 हुए हैं और आज हैं 11 मई। गुड आफ्टरनून मॉर्निंग जाने कहने जा

ये रही थी मैं, लेकिन अभी मॉर्निंग नहीं, अभी आफ्टरनून हो गया है. सो वेलकम, स्वागत है आप सबों का. वो क्या है ना कि हमारे दोस्तों के मैसेज आने लगे हैं और उन्होंने मॉर्निंग मॉर्निंग कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अभी परदेश में है ना, तो वहाँ पर उनकी मॉर्निंग अभी भी जारी है.

टिक होंगे, कुछ धमाकेदार होंगे, कुछ कूल होंगे, कुछ ऐसे भी गाने होंगे जिसे सुनकर शायद आप अपनी ज़िंदगी के बारे में या उसके चतुर्बे के बारे में काफ़ी कुछ सोचने लगेंगे। तो चलिए अभी के लिए मुकेश साहब आ गए हमारी महफिल में छा जाने के लिए, और फिल्म का नाम है दिल ने पुकारा, और ये गाना इसकी फरमाइश की गई है 1967 में आई थी ये फिल्म। चलिए सुनते हैं गाना।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: इस गाने की भी फरमाइश की गई थी ओई अम्मा जी, बिल्कुल रफी साहब के साथ अपनी आवाज मिला रही है लता जी, सुनते चलिए मुस्कुराते चलिए। इस समय आप रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े हैं, प्रोग्राम चल रहा है सुहाना सफर वेदिता के साथ।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: हमको होने लगा है प्यार तुमसे, लेकिन ये जो उइमा उइमा करते हैं तो बड़ा मजा आता है। चलो आपको भी अच्छा लगा गाना जानकर, अच्छा लगा साथ देते रहिए वेदिता का, और हम आपके साथ साथ रहेंगे 2 बजे तक। तो बताइए वीकेंड कैसा रहा,

0: क्या किया? क्या किया होगा? बस आराम किया होगा, और आराम भी तो करना चाहिए ना. वीकेंड होता है आराम करने के लिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो आराम नहीं करते. वो लोग काम पे काम क्या करते हैं, कहते हैं वीकेंड मिला है तो सारा काम निपटाते हैं. भाई वीकेंड जब मिलता है तो ये काम के लिए नहीं, आराम के लिए होता है. कभी थोड़ी थोड़ी अपनी बॉडी की भी सुन लिया करो, बेचारा वो भी थक जाता है, कहता है भाई अभी तो माफ़ कर दो, थोड़ा सा तो हमें. इसीलिए लोग बीमार पड़ जाते हैं. जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है तभी आप देखना सर्दी खांसी जुकाम सब कुछ होने लगता है. तो अपना प्रिकॉशन लेते चलिए. और यहाँ पर हमारे जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यस हमारे साथ फेसबुक पे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो हमें मैसेज करते रहते हैं, कहते हैं कि हम आपका प्रोग्राम टिकटॉक पे देखते हैं. जी बिल्कुल, तो आप टिकटॉक पे लाइव भी देख सकते हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम लाइव है. यहाँ पर कविता अनु को हम नमस्कार कहेंगे. और यहाँ पर शाइलेन जी हमारे साथ हैं, कहते हैं बुकवाश नमस्ते जी. थैंक यू सो मच शाइलेन. राम खिलावन जी यहाँ पर हमारे साथ हैं. अच्छा जी, कनेक्शन की बात तो मैंने आपको नहीं बता सकती कि क्या हुआ है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी आवाज़ पहुँच रही है. ठीक है, हर हर महादेव मनीता जी. और मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कहती आप आए बाहर आए, मैं तो सेम कह सकती हूँ, है ना. जेतन दिलवा जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपको. मिंता रामबरन राधे राधे. और साथ में यहाँ पर गाना तो मैं ज़रूर चलाऊँगी आपके लिए. यहाँ पर हमारे साथ हैं आसिया बुदू, और साथ में हैं हमारे और भी बहुत सारे दोस्त. सुनील बिरवाल जी कैसे हैं, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गाने के साथ. फिल्म है जमीर.
1: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
0: और ये गाना हम डेडिकेट करेंगे शालिनी रवि नीरव के लिए जो हमेशा हमारे साथ हैं. मरियम आपका वेलकम है. माधुरी जी हेलो जी, कैसे हैं आप, गुड आफ्टरनून. चलिए सिरेना अंतवानेट का भी वेलकम करते हैं. हाय

0: सुहाना सफर,
1: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। जिंदगी का काम है चलते जाना, जब रुक गया तो सब खत्म हो जाता है। इसीलिए आपको भी चाहिए कि अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करते रहें और आगे बढ़ते रहें। क्या पता कल जब हम नहीं होंगे तो बस हमारे साथ ये यादें ही तो रह जाएंगी। तो इन्हीं यादों को हम सजाने के लिए आते हैं, आपके साथ यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं, इसको खूबसूरत बनाने की हमारी कोशिश रहती है। अभी के लिए तो ऐसा है कि हमारे पास जितने भी गाने हैं, मैं जानती हूँ उनको सुनकर आप कहेंगे कि अरे ये वाला गाना, अरे ये वाला गाना। जानती हूँ। अब्दुल रशाद हमारे साथ, शारदा रिसोल, वी हैव मिमी एंड मिस्टर नूरुद्दीन फ्रांस से हमारे साथ हैं एज यूजुअल, एंड पामेला, वी हैव परी। परी कहती मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ। हाँ दिखाई नहीं देती, वह बहुत उड़ती रहती है। तो यहाँ पर विमला जी साथ में हैं, देवी किश्तू हमारे साथ में हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में। एंड वी हैव बीमा जोगिया, प्रणाम जी, कैसे हैं आप? हाय अर्चना जांजा, न्यूजीलैंड से साथ दे रही हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और यहाँ पर मिंता जी, आपके नातिन हैं नियारा, उनको ओके, तो वो हो गए 3 साल की, उनके लिए नेक्स्ट गाना। और साथ में यहाँ पर बीमा जी, आई एम फाइन, बहुत ठीक हूँ, थैंक यू। मनोज जी हमारे साथ हैं, और ठंडी हवाएं, चलो मैं भी कोशिश करती हूँ, ठंडी हवाएं तो हैं ही। और अभी फिल्म का गाना मेरे पास है नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ। फिलहाल आप गर्मा गर्म खाने के साथ अगर बैठे हुए तो बना बेची। मनीता जी कहती हैं वीकेंड 3 दिन का था, आधा तो किचन में गुजरा बिरयानी नान रोटी आदि बनाते हुए। और यहाँ पर हमारे लिए तो पूरा हमारा वीक गुजरता है बस बातें बनाने के लिए। चले तो यहाँ पर लीना हमारे साथ हैं क्यूपिप से, और साथ में माधुरी जी कहती हैं कि हम लोग अभी स्विंग का काम चल रहा है हमारा, कढ़ाई का काम चल रहा है या सिलाई का आई गेस। तो अगला गाना आपके लिए अनिल चिरबो, आपके लिए गाना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जिमी हमारे साथ हैं, उनके लिए भी गाना हम डेडिकेट करेंगे। जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मिंता जी ने न्यारा को बहुत सारा प्यार भेजा है, हैप्पी बर्थडे।
2: RM3 Radio.

0: खाना सफर खाना सफर।
1: चलिए जी, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ते हुए हम और आप साथ में रेडियो मनोरंजन RM3 पर वेदिता का साथ है। सुहाना सफर हमारे प्रोग्राम का नाम है और अभी के लिए जो गाना होगा हम विनेश के नाम डेडिकेट करेंगे। वैसे उन्होंने गाने की फरमाइश की है, वो गाना ऑलरेडी हमारे पास है। माला बुद्धू, लोलिता, उदन लाल सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कई सारे गीतों की फरमाइशें भी आई हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और मनीता जी ने भी गाने की फरमाइश की है और आपने जो गाना मांगा है दर्द दिल का पता, वैसे दर्द का तो नहीं लेकिन खुशियों का पता मैं आपको दे सकती हूँ। शालिनी हमारे साथ है, अगला गाना उनके हस्बैंड अनूप के लिए, उनके बेटे अयूर, उनकी बेटी आयुषी के नाम। ठीक है जी, नीरू रामसन कैसी हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बिंदा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विश्वानी कैसी हो, बहुत सारा प्यार आपके लिए। यलेश गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। वी हैव परी, और परी कुछ कहना चाहती हैं शायद, कोई बात नहीं, हम समझे नहीं लेकिन हम समझ जाएंगे। तो यहाँ पर अगला गाना जो है वारिस फिल्म के गाने की फरमाइश की है। अच्छा जी ठीक है, वो भी हमने नोट कर लिया, वारिस फिल्म का गाना। और मुझे लगता है कि ये गाने जो हैं हमेशा चलते हैं, कोई बात नहीं वक्त मिला तो वो भी चला देंगे। और यहाँ पे खदीबा मंगर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कैसी हैं जी, सलाम आपको भी। गंगाराम फैमिली के लिए गाना होगा जो साथ दे रहे हैं। पोते जी आंशु का बर्थडे है, अशोक सुकवंती शुभकामना पेश कर रहे हैं। और वहीं पे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जरीना दाहू, हेलो जी। और लगता है जरीना को नींद आ रही है, कोई बात नहीं, आराम करने का ही टाइम है, आप आराम भी करो गाने भी सुनो, ठीक है। और यहाँ पर कल्याणी हरी जी हमारे साथ, और साथ में हमारे जुड़े हुए हैं आप संजय ओमी, प्रणाम आपका स्वागत करते हैं। ठीक है चलिए, गाना हो जाए आपके लिए।
2: RM3 रेडियो

0: RM3 Radio. Radio.
1: चलिए गाना हम चलाते हैं प्रिया लक्ष्मण के लिए और गाना होगा युवेश के लिए. आज उनका बर्थडे है और साथ ही साथ लीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. वी हैव वेना पिंटिया, साथ देने के लिए थैंक यू. और साथ में ये गाना होगा फॉर नील, प्रिया लक्ष्मण, मनी प्रिया, लीना बेलरोज से, साहिल, बबीता, फिया और इंदिरा के लिए जो हमारे साथ जुड़ी हैं.

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: अगले गाने के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं एक बजे के समाचारों की ओर। चलते चलते अनुराग के लिए, उनकी वाइफ के लिए और साथ में सुमन, सबीना, शैला, सिमला, भामा, सबरीना, मनीष, मंजुला, साथ में सुरेखा, जगूजी हमें सुन रही हैं, केतिका, सीला सिसा, हाय केशनी, अवनीश, रिया, सबके लिए हम अगला गाना डेडिकेट करना चाहेंगे प्यार से। पूनम का साथ है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े हैं आप। और यहाँ पे हमारे साथ हैं कृतिया वैष्णव, ठीक है, कृति, ओके, तो कृति के लिए गाना होगा और साथ में उन्होंने अलविदा के नाम भी गाना डेडिकेट करना चाहा है, सो थैंक यू सो मच। और शिमला बिजादर जी हमारे साथ हैं, थैंक यू, हैप्पी मंडे आपको भी। लोग हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, हम हैप्पी मंडे बोलते हैं, क्योंकि मंडे हैप्पी हो गए तो सब कुछ ठीक हो गया। यमस्ती जी और यहाँ पर केशनी अपने हस्बैंड के लिए गाना मांग रहे हैं क्योंकि कल उनका बर्थडे था, सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे उनको भी। और यहाँ पर हमारे साथ हैं एंजल जी, नहीं वो मैं नहीं थी, एंजल थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार भेजा है सभी ने हमारे लिए, थैंक यू सो मच। और किसी ने गाना भी यहाँ पे मांगा है, क्या खूब लगती हो, और दानी जगरू आपके लिए गाना होगा। चलिए इसी के साथ गाना सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। शर्मिला राम भरत जी, कैसी हैं आप, नमस्कार, स्वागत है प्रोग्राम में। फिजी आइलैंड से मोहम्मद हनीफ का मैसेज आया है, कहते हैं करमल इन फिजी फॉर नादी।

0: नमस्कार गिनिशा, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। ये कैसा आयोजन है जिसकी घोषणा केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो और उनके फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल माक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र के दौरान की थी। दो वर्ष बाद अब 30 से अधिक अफ्रीकी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार प्रमुख आज से केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में एकत्रित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी इसमें भाग ले रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री विशेष रूप से 12 मई के कार्यक्रम में भाग लेंगे, जब सभी नेता विभिन्न राउंड टेबल बैठकों में हिस्सा लेंगे। और नैरोबी के जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल शाम प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेता लगभग एक ही समय पर केन्याई जमीन पर पहुंचे और उन्होंने हवाई अड्डे के स्टेट लाउंज में मुलाकात करने का निर्णय लिया। लगभग 10 मिनट तक चली इस बातचीत के दौरान दोनों महानुभावों ने अपने संबंधों की, मतलब दोनों देशों के संबंधों की समीक्षा की। शिखर सम्मेलन से पहले स्टैटमोर यूनिवर्सिटी में नागरिक समाज ने विचार विमर्श और बहस के पहले चरण की शुरुआत कि इसके केंद्र में एक मुख्य विचार था, आज अफ्रीका में लोकतांत्रिक विमर्श किस प्रकार निर्मित हो रहा है, इस पर सवाल उठाना। ये पहल फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी इनोवेशन द्वारा आयोजित की गई सोशल क्रिएशन एंड इनोवेशन पैवियों में लगभग 50 संगठनों से जुड़े शोधकर्ताओं, कलाकारों और परियोजना संचालकों को एक साथ लाता है, ताकि वे अपने अनुभवों और प्रस्तावों का आदान प्रदान कर सकें। डॉक्टर नवीन राम गुलाम की देश में अनुपस्थिति के दौरान कल शाम आर्यन नावोमारी कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाल रही हैं। जेंडर इक्वालिटी मंत्री से पहले भी कई महिलाओं ने हमारे संस्थानों के द्वार खोले थे। मारी डेनिस मार्शन को 1963 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनाया गया था और राधा पुनुस्वामी 1975 में पहली महिला बनी जो सांसद के रूप में निर्वाचित हुई और इसके तुरंत बाद मंत्री पद संभाला। आपको बता दें कि 2014 में माया हनुमान जी राष्ट्रीय सभा की पहली महिला स्पीकर बनी और 2015 में अमीना गरीब फाकी मॉरिशस की पहली महिला राष्ट्रपति। विदेश में फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि एमवी होंडियस के 5 यात्रियों को अगली सूचना तक पेरिस में क्वारंटीन में रखा जाएगा। ये फ्रांसीसी नागरिक उन 90 से अधिक पर्यटकों में शामिल हैं जिन्हें रविवार को डच जहाज से घर वापस लाया गया। ये जहाज सुबह होने से पहले कैनरी द्वीपों के तट पर लंगर डाले हुए थे। तो ये थी अब तक की खबरें कुछ ही समय में। शोक समाचार। रॉय रोड पिछित रिविया में 58 साल की 58 years old श्रीमती किसनावती मोइकू पैदाशी नाम गोकुल और जिन्हें लोग रानी नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे पहले एवेन्यू बेलिल बॉम्बू की रहने वाली थी। इनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे लशापेल ऑडेंट दू मोरा रॉय रोड पिछित रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा का टोबोन कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे 1:30 PM। रॉय रोड से चमिल त्रियोली में 88 साल की 88 years old श्रीमती रुकमीन राम सोहोई पैदाशी नाम राम गुलाम और जिन्हें लोग सुभावती नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान रॉय रोड से चमिल त्रियोली से उठाकर बुआ मौशो तेरूज कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे 2:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio Mana.

सुहाना सफर और सफर को सुहाना बनाने के लिए बस आपके साथ की जरूरत है। 1:10 हुए हैं, आज है 11 में, क्या बात है। चलिए जी, वेदिता का साथ है हमारी सगनावर में, आपका हम फिर से स्वागत करते हैं। खूबसूरत पुराने गीतों का ये सफर है, जहां पर अब अगला गाना हम इनके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, इंदिरा सूर्या रामिनी पराग, जो कि इटली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वी हैव सीता राम धोनी, उनके हस्बैंड सूरज, उनके बेटे यश और हंस के लिए, साथ में अली आता जो कि हमारे साथ स्वीडन से जुड़े हुए हैं। हेलो जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। विमी एंड वी हैव अनवर जो कि पेरिस से हमें सुन रहे हैं, और साथ में है नेक्स्ट गाना लीना की तरफ से उनके पति कृष्णा के लिए। सूरज सजादा त्रियोली से हैं।

गीता बीमार हैं उनके लिए तो अगला गाना उनके नाम हम चलाएंगे और साथ ही साथ ये गाना हम उनके लिए भी डेडिकेट करेंगे जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैसे एक दो तीन करती हुई या माधुरी अभी आ गई हमारे साथ समीता जी कैसी हैं आप बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहेंगे और यहाँ पर कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिनको प्रोनाउंस करने में मुझे थोड़ी परेशानी होती है थामोथरन मुक्कन वणक्कम वेलकम स्वागत है आपका हाय एवो आपका स्वागत करते हैं एंड रेणुका जी थैंक यू साथ दे रहे हैं आप और यहाँ पर जो गाना होगा ये हम आपके लिए भी चला रहे हैं सूर्या कहते हैं कोई भी गाना चलाओ अच्छा सा मेरा नाम भी जोड़ दो हाँ जी सूर्या प्रिया रंग हमारे साथ हैं गुड आफ्टरनून आपको कहते हैं कि मैं पहली बार आपका प्रोग्राम आपका लाइव देख रही हूँ थैंक यू सैड नहीं है भाई हम गाने ढूंढने में जब माहिर हो जाते हैं ना तो फिर उसके बाद हम थोड़ा सीरियस हो जाते हैं लेकिन आप लोग भी चाहे तो हमारे लाइव जोड़ सकते हैं हमारे लाइव में बबीता जी वेलकम है आपका स्वागत है रोशनी की तरफ से गाना उनके हस्बैंड संजय जो कि अभी केदारनाथ जा रहे हैं तो उनको कहेंगे हर हर महादेव हमारे लिए भी थोड़ा प्रेयर ज़रूर कीजिएगा और हम सोच ही रहे थे यहाँ पर मिलान से आ गई हैं स्वीटी हेलो जी स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में

देखो ये कौन आया। आने को तो बहुत सारे लोग हैं, हमारी टिकटॉक पे लाइव जुड़े हुए हैं। वैसे मैं आई हूँ दिन के 12 बजे और आपके साथ हूँ आप ही के प्रोग्राम में जो कि है सुहाना सफ़र। और यहाँ पर अनीता जी हैं फ्लिक ऑफ फ्लाक से, जय रिवर, साधना, अनिल राजन, काजल, गीता, राम जतन और नेक्स्ट गाना वाइफ प्रतिमा के लिए, काजल, कविता, रॉबी हैं सुवी नाम से और विमला देवी, आपका स्वागत है। यहाँ पे कहते हैं देखो ये कौन आया, लेकिन यहाँ कोई इंतज़ार में है कि भाई कब आएगी। चलिए जी, आएगी आएगी, जिनको आना होता है वो तो आ ही जाते हैं। और सूर्या, आपको गाना पसंद आया, तनवीर खालिद आपका भी हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और साथ ही साथ आपका वेलकम करते हैं मिस्टर नासिर, साथ देने के लिए थैंक यू। और ठीक है, आपने शायद गाने की फरमाइश की, मैं देखती हूँ थोड़ी देर में, और अभी के लिए तो चलिए इस गाने को गुनगुनाते हैं साथ में मिलकर।

और इस गाने की फरमाइश आई थी, तो चलिए सुनते हैं तिलक मंदिर फिल्म का ये गाना हो जाए। दबना अनुराधा, साथ में अमिता मोहाबिर, दिनेश कोपी, देवी नार, एक साली जी जो हमें सुन रहे हैं।

0: सुहाना सफर।
1: वैसे हमारे प्रोग्राम में फरमाइशों की कमी नहीं है, एक के बाद एक, एक से बढ़कर एक गीतों की फरमाइश आती है, लेकिन कभी कभी जब वही गाने बार बार मांगे जाते हैं तो उनमें हम थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगाते हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर लेते हैं। यहाँ पर शमिला रामभरत हमारे साथ जुड़ी हुई है, गाना उनके लिए और कुमार के लिए। थैंक यू कुमार। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि मेरा फेवरेट गाना चला दिया आपने, थैंक यू। और बस आज कोई फरमाइश नहीं, कहते हैं आज गाना ही सुनना है। हमारे साथ दिवैन जुड़े हुए हैं, दिवैन का हम वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में। और साथ ही साथ यहाँ पर रामिनी जो है वो फिर से हमें मैसेज कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड कितने सारे लोग हैं जो हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, हमें अपना प्यार भेजते हैं, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो जी, तो यहाँ पर वैदेही का हम वेलकम करते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर अपना 23rd वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं काजल और केविन, उनके लिए हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार है। अक्रम कई हफ्तों के बाद शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्रम, आपका हम हमारे प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। ठीक है जी, चलिए राधा का मैसेज आया है तो आपको भी कहेंगे राधे राधे, गाना अच्छा लगा आपको ना। रजनी महावीर जी, चलिए नेक्स्ट गाना आपके नाम। और इस गाने की फरमाइश परी ने की है, बहुत मुश्किल से उनके गाने मिलते हैं, उनके गाने कुछ हमारी तरह हैं लेकिन चलो, गाना आपने ये वाला मांगा है तो यही वाला सही।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. और इस गाने की फरमाइश वनीता जी ने की है या किसने की है मैं भूल गई। ये गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे शवि के लिए, दास कूर, रेशमा, प्रीति देव जी और रीना फाकू के नाम।

चलिए यहाँ पर फ्रांस से अनवर ने गाने की फरमाइश की थी उनके बेस्ट फ्रेंड चंद्रानी के लिए। यही गाना हम अंजू के नाम डेडिकेट करेंगे और एजे के लिए भी। साथ ही साथ ये गाना जाएगा पति आनंद के लिए जिनका जन्मदिन है। सितम हमारे साथ हैं, वहीं पे गीता जी, सलोनी गयादिन और क्विंसी हमारे सुन रहे हैं। और ये गाना हम डेडिकेट करते हैं प्रतिमा, अजय, श्रेया, जयेश, स्नेहा और दौतल फैमिली के लिए। मिस्टर रमेश कलाई हमारे साथ हैं।

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: चलिए समय आप विदिता का साथ दे रहे हैं. प्रोग्राम चल रहा है आपके लिए रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफर के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे आपको. और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का जो अगला गाना है चलिए सुनते हैं.

0: चलिए दोस्तों हमारे जाने का समय हो गया है, चलते चलते विशाल शमार और अरविंद का हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में। अगले गाने के साथ अब समय हो गया है आपको बाय बोलने का।
1: RL3 Radio.

ये गाना माशविना के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे और साथ में ये गाना होगा फॉर मिस्टर प्रदीप श्रेया बीकू उनकी नीस है पालमा से आज उनकी 60th बर्थडे है स्वीट 16 क्या बात है उनके अंकल प्रदीप की तरफ से और साथ में यहाँ पर गाना होगा आपके लिए सन थैंक यू सो मच साथ देने के लिए हमारे गाने गुनगुनाने के लिए और इसी के साथ शर्मिला दुलारी आपका हम वेलकम करते हैं एंड सरिता थापा आपको भी नमस्कार स्वागत है प्रोग्राम में चलिए जाने का समय हो गया है दीपक बिहारी जी नमस्ते आपको फिर मिलेंगे वेडनेसडे को ख्याल रखें कीर्ति चतु नमस्कार

पूछो ना यार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ, पूछो ना यार।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें। पूजा से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल रविवार रात मॉरिशस समय अनुसार रात के 11 बजे केन्या के जम्मू केन्याता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके आगमन पर केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडन ज्वाली ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री की प्रतिनिधिमंडल में जूनियर मंत्री धनेश्वर दामरी और फैब्रिस डेविड, विदेश मामलों के सचिव रॉय बिसुंदोयार, फ्रांस में मॉरिशस के राजदूत जोएल रॉल्ट तथा अफ्रीकी संघ में हमारी स्थानीय प्रतिनिधि शामिल रहे। हवाई अड्डे के स्टेट लाउंज में प्रमुख अतिथियों की पुस्तिका में डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस और केन्या के बीच विशेष संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने ये भी बताया कि केन्या उनका पहला विदेशी देश था जहां उन्होंने जीवन में पहली बार यात्रा की थी, जब वे सर शिव सागर रामगुलाम के साथ नैरोबी में केन्याई राष्ट्रपति जोमो केन्याता से मिलने गए हुए थे। इसके बाद जोमो केन्याता ने मॉरिशस को संविधान तैयार करने में मदद करने के लिए प्रतिभाशाली ब्योरा को भेजा है। अब प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में अपेक्षित लगभग 40 अफ्रीकी नेताओं में शामिल हैं, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों भी मौजूद हैं। ये उच्च स्तरीय बैठक आज से केन्या की राजधानी में शुरू हो रही है। मॉरिशस लोकतंत्र और अच्छे शासन का शानदार उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नैरोबी में कल शाम प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से मुलाकात के बाद एमबीसी को विशेष रूप से ये बयान दिया। दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षीय और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार से जुड़े मुद्दों पर बात की। अपनी ओर से मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रति संयुक्त राष्ट्र के निरंतर समर्थन की सराहना की। और विश्व बैंक की सदस्य संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IMF ने हाल ही में मॉरिशस के पर्यटन पर एक रिपोर्ट जारी की है। ये दस्तावेज विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। रिपोर्ट में पर्यटन क्षेत्र की स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए मध्यम और दीर्घकालीन उपायों की सिफारिश की गई है। इसमें क्लाइमेट रेजिलियंट टूरिज्म टास्क फोर्स के गठन की सलाह दी गई है, जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन परियोजनाओं का समन्वय करेगा। विदेश में उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी और बारिश से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, जबकि राजस्थान, गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी। इस बीच दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार और शुभ दिन।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio TV, NBC Radio TV.
3: Centre 95.5, North, South 95.6, 95.6, East, West 98.2.
4: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

नमस्कार, संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस समय इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण चल रहा है रेडियो मनोरंजन पर, और साथ में MBC के फेसबुक पेज पर भी इसका सीधा प्रसारण हो रहा है। और संस्कृति की बातें कार्यक्रम का प्रसारण आप्रवासीघाट ट्रस्ट फंड के मिले जुले सहयोग से होता है। इस कार्यक्रम में हम संस्कृति, धरोहर, विरासत, भाषा और साथ में बुजुर्गों ने जो जीवन जिया है, उनकी जीवन शैली कैसी थी, इन सभी बातों पर हम ध्यान देते हैं। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं संस्कृति की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत, और वह है इंडेंचर लेबर रूट। इंडेंचर लेबर रूट एक ऐसी परियोजना है जिसमें आप्रवासीघाट ट्रस्ट फंड के साथ साथ कई देश जुड़े हुए हैं। और इस परियोजना में जो भारत से निकलकर शर्तबंद मजदूर मॉरिशस में आए, मॉरिशस के साथ साथ जो अन्य देश में जाकर बस गए, उन सभी लोगों, उन सभी आप्रवासियों की जो जीवन, उनका जो जीवन है, उनकी जो धरोहर है, उनका जो विरासत है, वह आज किस रूप में जीवित है, किस तरह से आज भी भारतीय डायस्पोरा जुड़ा हुआ है, इन सभी विषयों पर बात की जाती है, शोध किया जाता है। और इस शोध को

0: एकत्र करता है यह इंडेंचर लेबर रूट परियोजना। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के निदेशक श्री विष्णु बंधन जी। नमस्कार विष्णु बंधन जी।
1: नमस्ते आपको भी।
0: और साथ में हम जब संस्कृति, धर्म, भाषा, विरासत की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ

0: रूट परियोजना जो है यह क्या है, इसमें कौन कौन से देश हैं, इसमें क्या किया जाता है, क्यों ये जरूरी है?
1: नमस्ते फिर से। मैं सबसे पहले MBC रेडियो को धन्यवाद करूंगा कि ये जो कार्यक्रम नया कार्यक्रम शुरू किया गया है संस्कृति की बातें, कि इसका बहुत ज़रूरी था
0: जी,
1: क्योंकि अभी आप देखेंगे कि हमारे जो नई पीढ़ी लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उसको पूरा से पूरा हमारे संस्कार के बाद जो है उसको मालूम नहीं पड़ रहेगा।
0: जी हाँ, संस्कार, संस्कृति, विरासत के बारे में उनको जानकारी नहीं है,
1: बहुत कम है, तो बहुत कम,
0: कम है।
1: तो ये हमारा खास ड्यूटी है, जिस बोलिए हमारा खास ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हमको जो कुछ हमारी अनुभव है, जो कुछ हमने पाया है, जो कुछ हमने हमको मालूम है, ये हमको शेयर करना है हमारे लोगों से, ताकि नौजवान जो है, नई पीढ़ी के लोग जो है, उनको भी मालूम है। अच्छा, आपने कहा का इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट। अच्छा, ये इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट जो है, ये शुरू है भारत से
0: जी,
1: क्योंकि भारत से जब हमारे पूर्वज निकले थे अन्य देश में जाकर काम करने के लिए, तो वे लोग अलग अलग देश में बसे हुए हैं
0: जी। हाँ,
1: पहले से हम कैसे मालूम है कि कम से कम 2 करोड़ निकले थे भारत से उस समय में, जीवित सौ फ्रांसी से लेकर आएंगे तो कम से कम 2 करोड़ निकले थे, तो उस 2 करोड़ में से 500 हजार जो है, मतलब आधा मिलियन जो था, वो मॉरिशस से गुजरे, मॉरिशस में आए हुए हैं। तो इसी कारण जब बोलते हैं जो इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट जो है, ये जब लोग निकले से भारत से निकले थे, तो बहुत देश में जाकर बसे हुए, मॉरिशस है, रीजन आइलैंड है, फिजी है, गियाना है, साउथ अफ्रीका है, ऐसे देखेंगे से बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर लोग बसे हुए हैं। लेकिन क्या वो जो बसे हुए हैं वो अपना संस्कार को अभी तक मानते हैं, वो अपना संस्कृति जानते हैं? तो ये एक हमारा जो काम है आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड द्वारा, कि उन लोगों को ये मान दिया जाए, किस तरह से मान दिया जाए, ताकि किस तरह से मान दिया जाए कि हमको बहुत ऐसी रिसर्च करना पड़ता है जो इतिहास है। इतिहास में हम लोग बताते हैं कि इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट जब 2014 से शुरू हुआ, तो इसका महत्वपूर्ण बात क्या है कि भारत सरकार और मॉरिशस सरकार ने तय किया कि वो जो उसका सेक्रेटेरिएट जो है, इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट का सेक्रेटेरिएट जो है, वो मॉरिशस में कायम किया गया है,
0: जो कि मॉरिशस के लिए बहुत बड़ी बात है,
1: बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग भारत से बसे हुए मॉरिशस में, जैसे मैंने बताया 500 हजार, क्वार्टर मिलियन
0: जी,
1: हाफ ए मिलियन। तो इसी कारण भारत भी हमको वो बताता है कि हमारा जो देश है, अभी हमारा जो मॉरिशस देश का है, उसमें अभी जो ये OCI कॉस्ट देते हैं ना
0: जी, हाँ,
1: अभी देखो हम 7वां पीढ़ी जो है उन लोगों को भी अभी भारत ने OCI कॉस्ट देने का तय कर लिया है। अच्छा, OCI कॉस्ट जो है, तो उसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और वो जो कार्ड हमको देता है वो पासपोर्ट तरह के, वो वीज़ा है, ताकि वो हर एक इंडियन जो आए हुए, जो बसे हुए भारत से बसे हुए हैं, उनको सिर्फ जानना चाहिए अपना वो पेपर द्वारा कि हमारा पूर्वज भी भारत से निकल कर आए हैं। तो वो पूर्वज जो आए हैं कैसे हमको मालूम है कहाँ से निकल कर आई है?
0: हाँ,
1: तो सरकार द्वारा वो जो ऑफिस है ना, MGI के ऑफिस में भी है,
0: मॉरिशस नेशनल आर्काइव्स और MGI
1: के ऑफिस में जितने लोग आए हुए थे, उन लोगों का सिर्फ नाम था और उसका नंबर था। तो उस नाम और नंबर द्वारा उसको अभी आप जाकर निकालेंगे अपना जन्म पत्री, पिताजी का, दादाजी का, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम आपका वो पर्व दादा
0: जो पहले व्यक्ति
1: आया हुआ था वो कब आया था, कब अपना देश छोड़ा था,
0: कहाँ से आया था,
1: किस जहाज से आया था, किस उम्र में, उसका उम्र कितना था, ये सब मतलब इंफॉर्मेशन जो है ना, ये सब है वहाँ पर। तो मैं अभी आपका ये प्रोग्राम लेकर ये मांग करूँगा कि जो लोग ये अपना OCI कार्ड भी निकालना चाहते हैं, तो बहुत इजी है,
0: मॉरिशस के लिए इजी है,

0: लेकिन बाकी देशों के लिए इतना आसान नहीं होगा।
1: अच्छा हाँ, क्यों मॉरीशस के लिए इजी है? क्योंकि हमारे जो आर्काइव्स है, जो आशीष बोलते हैं, जैसे कि MGI में है और नेशनल आर्काइव जो है, तो वहाँ पर ये रिकॉर्ड रखा गया है। मॉरीशस एक ही देश ऐसा है कि जितना इन्फॉर्मेशन है वो प्रवासी वालों का, तो हमारे मॉरीशस में कायम है। इसी कारण अभी भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि चलो मॉरीशस वालों को हम 60वीं पीढ़ी को भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपका जो है पूर्वज तो भारत से आए हुए हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसी कारण ये जब सब निकल कर आए थे भारत से, तो उसका एक रास्ता था उन लोगों की, कहाँ कहाँ गई, मॉरीशस आइए, मॉरीशस से रियूनियन आइलैंड गए, साउथ अफ्रीका भी गए, फिर अभी देखते हैं
0: फिजी गए,
1: गियाना, इस सब जगह में लोबी मॉरीशस हिंदू वाले बसे हुए हैं। मतलब हिंदू मतलब बोलने वाले क्या कि जो अप्रवासी भारत से भारतीय जो है वो वहाँ से। अब क्या है कि हम किस तरह से मॉरीशस में जीते हैं, हमारे जो भाईचारे जो है, हमारे जो जो हमारी तरह के जो है फिजी में, वो किस तरह से जीते हैं
0: जरूर,
1: या उसका संस्कृति क्या है, या वो लोग इसी तरह की जैसे हम मॉरीशस में करें इसी तरह के वो फिजी में करते हैं, इसी तरह वो गियाना ब्रिटानिया में ऐसे करते हैं, तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा। तो इसी कारण ये ILRP रूट प्रोजेक्ट जो है ना,
0: प्रोजेक्ट
1: जो है
0: ILRP
1: का, तो इसके द्वारा मतलब ये एक संस्था बनाया गया है, इसके द्वारा हमको रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों से देश जो लोग बसे हुए अन्य देश में लोग से मिलकर हम जुट कर जो कुछ है हम
0: आदान
1: प्रदान करेंगे, तभी तो जाकर मालूम पड़ेगा कि हमारे लोग जो है उसका संस्कृति जो है संस्कार जो है इसी तरह का है या उसमें कोई बदलाव आया है, उसका भेष पहनने वगैरह का भेष में कैसा है, बोली कैसा, किस तरह का बोली है, भोजपुरी बोलते हैं हमारे जैसे, हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इसी कारण हमने ये प्रोजेक्ट रखा हुआ है। अभी इसमें हम आगे चल कर बताते हैं, आपको बताऊँगा कि हमारे अभी एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है दिन में, इस पर
0: अभी हम थोड़ी देर में इस पर बात करेंगे। तो अभी विष्णु बंधन जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से इस इंडेंचर लेबर रूट परियोजना जो है, प्रोजेक्ट जो है, इसके अंतर्गत न सिर्फ विरासत धरोहर के बारे में बल्कि इतिहास को नापने के लिए एक पूरा जो साइंटिफिक रिसर्च चलता है, उस रिसर्च को एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही मंच पर एकत्र करने के लिए इंडेंचर लेबर रूट की स्थापना की गई है। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि मॉरीशस जो जहाँ पर OCI कार्ड की सुविधा है, वह अकेला देश है जहाँ पर हमारे पूर्वजों के आने का एक बहुत सुनियोजित, बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित एक पूरा लिखित रिकॉर्ड है, और इसके माध्यम से आप अपने पूर्वज, अपनी जड़ तक पहुँच सकते हैं। ये थी बातें आप्रवासी घाट और इतिहास और विरासत से जुड़ी। अब हमारे साथ हैं पंडित सुधाकर महावीर जी। पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि मॉरीशस जो कि अभी 7वें-8वें पीढ़ी तक पहुंचा है, भारत से निकलकर हमारे लोग यहाँ पर बसे हुए थे, हम उनके बच्चे हैं, आज आप धर्म के क्षेत्र में एक पुरोहित हैं, एक पंडित हैं, आपको क्या दिखता है मॉरीशस में जो ये संस्कार की बातें हैं, धर्म की बातें हैं, विरासत की बातें हैं, जो भारत से निकलकर मॉरीशस आया आज किस रूप में है और किस रूप में वह आया था, और आपको क्या लगता है इस पर आपकी क्या विचार हैं?
2: सभी श्रोताओं और दर्शकों को हमारा प्रणाम। MBC को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज मंच पर आकर के कुछ बातें कहने के लिए मौका मिला, और सबसे सुंदर बात यह है कि हमारे पूर्वज पर जो बातें चल रही हैं, विष्णु जी को बहुत सुने। मैं पंडिताई लगभग 40 साल से कर रहा हूँ।
0: जी हाँ।
2: एक सुंदर बात मुझे मौका मिला ये देखने के लिए, पहले पहल जब हम पंडिताई कर रहे थे, मतलब कि 1997-98 तक, उस समय जब हम कहते थे लोगों को कि चलो शादी है तो जो दूल्हा है एक कुर्ता पहनना है, तिलक लगाना है,
0: धोती पहननी है,
2: नहीं लगाना चाहते थे, नहीं पहनते थे। और फिर इसके बाद में वो पगड़ी की बात आती है तो कहते हैं कि पंडित जी क्या ये डालना जरूरी है। तो माँ बाप, हमारे पूर्वज बाप दादे लोग जो लाए थे धरोहर, जैसे आपने कहा, जो रामचरितमानस को छुपा करके अंग्रेजों से छुप करके पढ़ाई करते थे, गीता की पाठ करते थे रात्रिकालीन में, दुख समय में।
0: जी हाँ।
2: लेकिन बच्चे लोग जब आए

0: तो कुछ उतना नहीं मिल पड़ा, लेकिन अभी लगभग 20 साल से एम्बिशन में बोल रहा हूँ, 20-25 साल से
1: एक रिवाइवल हुआ।
0: हाँ, एक बहुत अनोखा रिवाइवल हुआ। जहां तक मॉडर्नाइजेशन तो हुआ ही है, लेकिन भारत से जब कल्चरल चीज हुए, सीरियल लोग देखने लगे, भारत से आने लगे लोग, तो अब कहीं भी शर्मिंदा नहीं है एक धोती पहनने में, एक कुर्ता पहनने में, या एक तिलक लगाने में। अब बोलना नहीं पड़ता है। पहले तो माँ बाप कहते हैं कि पंडित जी देखा सदिया बाटी तनी बुने लेकर और के बोल जाना पगड़ी चाहिए डाले के ना। तो अब ये बात नहीं है,
1: नहीं है।
0: तो मतलब कि हमारे सरकार या लोग या विदेश से जो भी प्रयोजन हो रहे हैं संस्कृति के बारे में, अच्छा चल रहा है। और कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, सभ्यता संस्कृति हमारे घर से प्रारंभ होती है। और जब ये घर जब शुरू होती है तो ये कभी कभी माँ बाप का भी दोष होता है, बच्चों को सही मार्ग में नहीं डालते हैं। कैसे हमारे माँ दादे लोग कहते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम बड़े हुए तो वही जाकर के बोलते हैं, हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। तो बच्चा जैसे पकड़ लेता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। संस्कृत को जीवित रखें, इस धरोहर पर मॉडर्नाइजेशन पर लाइफ चल रहा है, इस स्तर पर रखे हैं, कायम रखे हैं। और आज मुझे तो ये फख्र की बात है कहने के लिए कि MBC में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है लाइव, जो कि हमारे एडवेंचर लेबर के बारे में, पूर्वजों के बारे में ये कहा जा रहा है। ये बहुत सुंदर बात है।
1: और जैसा कि आपने सुना, आज की संस्कृति की बातें जो कि अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के सहयोग से प्रसारित किया जाता है, इसमें आज हम दो व्यक्तियों, दो मेहमानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक है अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के निदेशक, जो बहुत साइंटिफिक तरीके से रिसर्च हो रहा है इंडेंचर लेबर को लेकर। इंडेंचर का मतलब शर्तबंद मजदूर। और साथ में हमारे साथ धर्म के एक ठेकेदार हैं, श्री पंडित सुधाकर महावीर जी। तो यहाँ हम धर्म, संस्कृति के ठेकेदार और फिर विरासत के ठेकेदार, दो ऐसे व्यक्तियों से जहां साइंटिफिक रिसर्च और धर्म और फिर मान्यताओं का संगम हो रहा है, ऐसी चर्चा में आज हम लगे हुए हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बातें बहुत दिलचस्प हैं। थोड़ी ही देर में हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम।

0: संस्कृति की बातें
1: कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज संस्कृति की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत हमने मॉरिशस में जो इंडेंचर लेबर रूट परियोजना बा ओकर कौन भूमिका बा ई बात पर बात करत है जा और साथ में ई देखत है जा कि हमने के देश में जो धर्म संस्कृति जैसे अभी ई गीत में सुन ला कैसे उस समय में हमने के पूर्वज लोग लेके अलन जा और कौन रूप में आज उ फलत फूलत बा ई सब बात पर ध्यान देवत है जा। हमने के मेहमान हवन आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के डायरेक्टर विष्णु बंधन जी और पंडित सुधाकर महावीर जी। विष्णु बंधन जी, अभी आप एगो इशारा कर ला कि आवे होला दिन में एगो कॉन्फ्रेंस के आयोजन हो बता मॉरिशस में, एगो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जोन की एकर सेक्रेटारिया अभी बोल रहा आप प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड संभाले ला

0: और ये संस्था कला और संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत था और ये जन कॉन्फ्रेंस चली इंडेंचुअल लेबर रूट कॉन्फ्रेंस एगो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये मैं सहयोग देवथवंजा यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस मॉरिशस टूरिज्म प्रमोशन अथॉरिटी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्लेवरी एंड इंडेंचर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फॉर द डेवलपमेंट और ये सब के चलते ये सब जो संस्था बा ये लोग मिलजुल के आप्रवासी घाट द्वारा संभाल जाए होला सेक्रेटारिया जो सम्मेलन चलावे होला बा एक पर थोड़ा जानकारी दा
1: जैसे कि आपको मालूम है कि आप भी तो एक कर्मचारी है हमारे आप्रवासी घाट का आपको मालूम कि वहाँ हम क्या करते हैं बहुत से रिसर्च काम होता है
0: जी
1: चारों तरफ जो जो हमारे अभी इमारत है उस पर रिसर्च करते हैं हमारे जो संस्कृति पर रिसर्च करते हैं
0: बुजुर्गों के जीवन पर के रिसर्च करते हैं
1: तो हर एक पेज यहाँ भारतीय बसे हुए हैं वो इस तरह का काम करते हैं लेकिन किसी को मतलब ठीक से मालूम नहीं है कि कहाँ पर क्या हो रहा है किस देश में क्या हो रहा है तो इसी कारण ये जो इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट बनाया गया है इसमें हर एक देश जहाँ पर भारत से बसे हुए हैं वो भी अपना क्या रिसर्च कर रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं उसको हम कैसे साथ में लाएंगे तो इसी कारण ये हम एक कॉन्फ्रेंस चला रहे हैं वो कॉन्फ्रेंस बुधवार को शुरू हो रहा है 13 तारीख को यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के ऑडिटोरियम से लेकर उसका जो लेक्चर थिएटर में होगा कॉन्फ्रेंस इसमें फिजी के लोग भाग ले रहे हैं सुरीनाम से भी आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से पन्य देश से वो आकर इसमें भाग लेने वाले हैं अच्छा भाग लेकर इस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा क्या लाभ होगा इसे
0: जी हाँ
1: जैसे मैंने आपको बताया कि हर देश में उसका चर्चा हो रहा है वो रिसर्च हो रहा है वो जो इतिहास है कैसे उन लोगों ने उसका पूर्वज कैसे उस देश में पहुँचे वहाँ पर
0: डॉक्यूमेंटेशन
1: तो ये सब कॉन्फ्रेंस पे सब अपने अपने देश से लाएंगे साथ में रखेंगे अपना जो जैसे बोलते हैं एकेडमिक्स जो है हिस्टोरियंस जो है लाएंगे अपना वो
0: पेपर्स,
1: सामने पेपर्स अब प्रस्तुत करेंगे तभी सब जब प्रस्तुति हो जाएगा तो उसके बाद उसको एक कलेक्शन कर एक रिपोर्ट बनाया जाएगा वही रिपोर्ट हम सरकार को पेश करेंगे ताकि हम जो इंडेंचर लेबर रूट प्रोजेक्ट का जो है आते 5 या 10 साल के बीच में हमको ये जितना रिसर्च है सब कुछ साथ में लाकर हम लोग को जहाँ जहाँ भारत से बसे हुए हमको उसको वहाँ पेश करना है
0: मतलब कि आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के कंधों पर एक काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है
1: हाँ ये तो जब मैंने आपको पहले बार कहा कि हाफ ए मिलियन 500,000 तादाद में भारत से लोग यहाँ मॉरिशस में बसे हुए ऐसे कहीं और गए तो 100 है 50,000 100,000 लेकिन मॉरिशस में ज़्यादा तादाद में मॉरिशस में आए हुए थे तो इसी कारण या तो मॉरिशस सरकार या भारत सरकार उन्होंने सोचा कि इसका स्थान जो है आईएलओपी मतलब सेक्रेटरीज़ जो है इसको हम मॉरिशस में दें
0: और फिर आप्रवासी घाट वह अकेला इमिग्रेशन डेपो है इस विश्व भर में जो कि एक आज भी जीवित है आज भी वो उपस्थित है और मॉरिशस का आप्रवासी घाट एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है
1: हाँ इसी कारण जो है कि जो हम इस पर अभी देखो जैसे बोलते हैं कि कल्चरल टूरिज्म भी प्रकट हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर ध्यान देते हैं तो ये क्यों होता है कि लोग मॉरिशस में आने का मतलब उन लोग को कैसे बोलते हैं भोजपुरी पैसे है हाँ। चलो मॉरिशस चलते हैं मॉरिशस भी देखते हैं क्या हो रहा है किस तरह के वो लोग जी रहे हैं कि अभी देखो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है आप्रवासी घाट को जो है कि भाषा पर ज़्यादा से ज़्यादा बात होता है भोजपुरी भाषा जो है हिंदी भाषा जो है हमने तक कायम रखे हुए हैं चलता रहता है तो इस सब पूरा मिलाकर जो लोग यहाँ भी भाग रहेंगे कॉन्फ्रेंस में वो अपना रिसर्च हमको प्रस्तुत करेंगे तो उस पर ध्यान देकर हमने अपना पूरा रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि पब्लिक के साथ सिर्फ मॉरिशस में नहीं चारों तरफ जहाँ जहाँ बसे हुए जहाँ से लोग आ रहे हैं वहाँ हम अपना ये रिपोर्ट है प्रेस करेंगे
0: ज़रूर और पंडित जी अभी जब हम धर्म संस्कृति विरासत की बात कर रहे हैं इतिहास की बात कर रहे हैं किस तरह से शर्तबंद मजदूर भारत से निकलकर मॉरिशस में आकर बसे फिर अन्य देशों में बसे और मॉरिशस में जब पर्यटन की बात आप कर रहे हैं विष्णुबंधन जी तो मॉरिश

0: मॉरीशस में आज पर्यटक ये देखने आते हैं कि किस तरह से यह एक बहुसांस्कृतिक देश है, जहां हर एक संस्कृति एक दूसरे का मान सम्मान आदर करता है और हर एक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी भाषा को वह बोल सकता है, जी सकता है। तो आप ज़रा हमारे देश में जो हमारे पूर्वज इस संस्कृति, इस विरासत को लाए और फिर किस तरह से इसको जीवित आज भी हमने रखा है, किस तरह से आगे जीवित रखा जा सकता है। ऐसे जब कॉन्फ्रेंस होता है, जब देश विदेश के लोग आते हैं, तो किन किन बातों पर बहुत खूबसूरती से ध्यान देते हैं, ज़रा इस पर टिप्पणी कीजिए।
1: सबसे पहले तो मैं उस महान व्यक्ति को धन्यवाद दूंगा जिसने यह प्रवासी घाट खोलने का या इसका सृजन करने का ध्यान दिए थे, और दूसरे धन्यवाद तो मैं दूंगा सरकार को कि भाई विष्णु बंधन जी को ये डायरेक्टर काम सौंपने को दिया। इनका नाम ही है विष्णु, कितने अवतार ले चुके हैं ये,
0: और बंधन इनके मन में बसा हुआ है,
1: और जो बंधन है, जो बंधन है तो बांध करके रखते हैं। तो मैं इनको बहुत प्रोत्साहित करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। अब रही बात हमारी प्रश्न पर आप जो ने किया कि देश विदेश पर, तो पहली बात यह है कि हम जब भारत से आए हमारे पूर्वज लोग, तो तीन चीज़ को मैं हमेशा मान्यता देता हूँ। एक है देशाचार, लोकाचार और कुलाचार
0: जी।
1: कि देशाचार हमारे देश में कैसे की जाती है, लोकाचार एक गांव में लोग कैसे करते हैं, और कुलाचार जब पूर्वज जहाँ जहाँ से आए अपने घर में अपने कुल में कैसे अपने पूजा पाठ करते हैं। ये तीन बातों को ध्यान करते हुए हम देश में जीते हैं, आपसी भाव से जीते हैं। ये रही एक बात, देशाचार को हम कभी ना भूलें, न कुलाचार न लोकाचार
0: जी।
1: मतलब कि कैसे हम अपने बात लेंगे, लालमाटी में, मैं लालमाटी वासी हूँ, हमारे ये जब महाशिवरात्रि का पर्व होता है, कांवर्थी लोग जब जाने लगते हैं तो वहाँ पर बृहद पूजा की जाती है काली माई में, सब कांवर्थियों का पैर धोया जाता है, तब वे लोग गंगा तालाब की ओर जाते हैं। ये हो गई बात लोकाचार, ऐसे आप अपने कुल में कैसे पूजा करते आए हैं, ये हुई बात पूर्वजों की। हमारे रीति रिवाज जैसे हुए उसको जीवित रखते, आज के बच्चे भी जीवित रखते हैं। हैरान की बात होगी आपको सुन करके कि मैं इंग्लैंड भी जाता हूँ पूजा कराने के लिए, वहाँ पर एक मॉरिशन का वहाँ पर कोई बच्चा हो गया था, तो कहा कि गुरुजी बच्चा हो चुका है, हमारे कुल की पूजा करनी कैसे करेंगे, और कहे कि हमारे यहाँ खीर पूरी चढ़ाएंगे तो देना पड़ता है, लेकिन यहाँ दरवाज़ा खोलेंगे तो लोग अलग अलग देश के हैं। मैंने कहा कि आप करना चाहते हैं कि हाँ, हमारी कुल रीति और देश के जो कुछ लेकर आए हमको करना है। तो उन्होंने, मैंने कहा कि बड़ा पूरी मत तैयार कर, छोटी छोटी पूरी तैयार कर, छोटी छोटी पूरी तैयार कर, सात जोड़ा चढ़ाते हैं ना कुल रीति अनुसार। उन लोगों ने चढ़ाया, आराम से किए, और इतना लोगों को सुकून पड़ा कि हम अपने बाप दादा जो हमारे देश में हैं उनका हमने पगड़ी ऊंचा किया, ध्वजा को आगे किया। ये देश से भी वहाँ भी गए, विदेश में, यूरोपियन में, कैनाडियन है या कहीं भी गए हैं, अपने धर्म संस्कृति को जीवित रखते हैं। ये हुई कर्मकांड की बात
0: जी हाँ।
1: कि पूजा पाठ में कैसे हम इनको जीवित रखते हैं। और जब बात रहते सरकार की, हमें जितना सहयोग मिलता है खास करके या प्रवासी घाट से, तो हमें ये मौका और ये महसूस करते हैं कि हमारे पीछे कोई है जो कि जागृत करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे प्रोग्राम के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, खासकर कापरी विभाग के ट्रस्ट फंड को और सरकार को, जिन्होंने इस प्रकार के व्यक्ति को नियुक्त किया कि ये सब कार्य आगे बढ़ाने के लिए। संध्या काल शाम का जब होता है तो माँ बाप क्या कहते हैं, जा संध्या बार्द हाली सुन, सुते जाए के आगे, खाई जाए के आगे संध्या बार्द। सोने से पहले संध्या काल में संध्या जब जला देते हैं एक दीपक, सुबह सूर्य नारायण का अर्घ दे देते हैं, बड़ी बात नहीं कहता हूं, अर्घ दे दिए काम में चले जाते हैं। यह है सभ्यता, यह संस्कृति, यह रूट। और एक बात को हमेशा याद रखे, कहा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड, ये कभी ना भूले।
0: मैं आपसे यही सवाल करने जा रही थी पंडित जी कि आज के दौर में जब हम ग्लोबलाइजेशन को जी रहे हैं, जहां पर हम विसंस्कृतकरण एक सच्चाई है, आज हम दूसरे हर एक को एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आप ऐसा ना करें कि अपनी संस्कृति छोड़कर विसंस्कृतिकरण की ओर बढ़े, दूसरे संस्कृति को अपनाएं। तो ऐसे ग्लोबलाइज्ड दुनिया में जहां यूनिफॉर्माइजेशन हो रहा है, वहां पर अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने संस्कार को जीवित रखने का क्या क्या फायदा, मतलब क्यों रखना चाहिए?
1: देखो, भगवान पागल नहीं थे कि आपको हिंदू घर में जन्म दिए, आपको इस घर में जन्म दिए, आपको भगवद गीता रामायण वेद के साथ दिए। अब ये सब हमारे माँ बाप आपके धर्मशाला गुरुकुल जहाँ मंदिर जाते हैं, जो बैठकट में जाते हैं, यज्ञ किया जाता है, अगर आप जाएंगे पता चलेगा कि वहाँ क्या होता है। पहली बात रही है माँ बाप पर।
0: जी हाँ,
1: पूर्वज लोग जो हमको सिखाए, अब नई पीढ़ी के लोग क्या सिखा रहे हैं, कैसे लेकर जा रहे हैं, हम पूरे फायदा के साथ, पूरे अपने मेहनत के साथ पंडितगण ये काम करते हैं कि कैसे इन बच्चों को, साइंटिफिक वर्ल्ड है, कैसे साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली अप्रोच देते हैं कि बच्चे ये पान के पत्ते चढ़ाते तो क्यों चढ़ाते हैं। पान के पत्ता एक हृदय के आकार करता है, ये चित्र को देखकर मुझे पता चला है। ये हृदय के आकार के साथ जो फूल डाल रहे हैं, मैं ही हूँ, ये आपको अर्पण करता हूँ भगवान। ये हुई पूजा पाठ की बात। अब अगर साइंटिफिक लेंगे तो पान के पत्ते अगर चबाते हैं तो कितने प्रकार की बीमारियां भी दूर करते हैं। तो ये सब कुछ हम सुनाते हैं, सिखाते हैं। और बाप दादों ने कहा कभी कान आवाज लगाना चाहिए। और अभी के बच्चे जो हैं ये सीखना चाहते हैं, ये लव करते हैं जानने के लिए हमारी सभ्यता क्या है, और ये इसे भागते नहीं है। लेकिन हाँ, सिखाने वाले भी आप जैसे मंच होने वाली छवीना भी चाहिए ताकि हम आगे प्रोत्साहित करें। और धन्यवाद देता हूँ MBC को बहुत पूर्ण रूप से, खास करके आपको, कि आपने इस मंच पर ये कार्य किए। और ऐसे करते जाएंगे तो बच्चे लोग भी प्रभावित होंगे।
0: धन्यवाद आपका पंडित जी कि आज आप उपस्थित हुए। अब हमें ये बताइए कि जब हम बच्चों को ये सिखाना चाहेंगे कि क्यों संध्या काल में दिया जलाना चाहिए, क्यों आज की दुनिया में भी आपको अपनी भाषा बोलनी चाहिए, क्यों आपके दादी नानी जो खाना खाते थे उसका उस से जुड़ना चाहिए, अपने जड़ों को क्यों याद करना चाहिए, और फिर आध्यात्मिक तौर पर इनकी क्या, इनका क्या महत्व है, ये सारी बातें आप बच्चों को कैसे सिखाएं? क्योंकि आजकल अगर माता पिता को ही समझ में नहीं आएगा कि संध्या काल में दिया क्यों जलाना चाहिए, जब एक खुशी का माहौल है तो फिर खुशी का माहौल बनाने के लिए मिठाई क्यों बांटना चाहिए, और जब घर में एक मृत्यु हो जाती है, चाहे आपके घर में हो, पड़ोसी में हो, फिर किस तरह से सांत्वना देने के लिए आपको एक अन्य माहौल स्थापित करना चाहिए। ये सब बातें आज छूटती जा रही है, तो ज़रा इस पर हमें समझाइए कि क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि जो सांस भगवान हमको दे रहे हैं वो तो आज तक भगवान को हम नहीं चुका सकेंगे। माँ बाप के गर्भ से जब हम आए, उनके सम्मिलित होकर के, तो उनका ये प्रयोगन हुआ, ये प्रयोजन हुआ, उनके प्रोत्साहित से हम धरती पर आए। और कुछ भी न करें, मान लिया जो मेरा नाम महावीर है, मैं अपने पुराने दादा जो आए थे पहले 18,000 में, मैं तो उनको नहीं देखा था, और मैं कहूँगा नहीं मेरा दादा एग्जिस्ट नहीं थे, वो नहीं थे, ये तो झूठ बात है। जिस बात को कहते हैं DNA होता है ना, डेओसी रिबो निकोलिक एसिड हर एक शरीर में है। अगर मेरा टेस्ट किया जाएगा तो महावीर का खून इसमें आएगा
0: जरूर।
1: ये हो गई पूर्वज की बात। अब ये बात आ गई आबरवस घाट की बात, यहाँ पर आ गई
0: जी।
1: अब जैसे लाए थे, जैसे किए थे, अब हम उसको फॉलो क्यों करेंगे? अरे भाई, उनका खून हमारे शरीर में चल रहा है, ये तो रेस्पेक्ट तो देना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि हर एक साल में 15 दिन हमको मिलता है पितृपक्ष
0: जी।
1: कि ये पितृपक्ष क्यों मिलता है? कि अपने पितरों को थोड़ा याद करें, पितरों को थोड़ा याद करके, नमन करके उनको धन्यवाद दें
0: और आशीर्वाद लें।
1: आशीर्वाद लें, पितृ दोष अगर हो तो शांत करें, जो पिंडदान करते हैं पिंडदान करें, जो जल तर्पण करते हैं जल तर्पण करें, ये रूट है हमारे। और बच्चों को जब सिखाते हैं तो बच्चों पूछेंगे मामा काहे पानी दे के चाहना दादा लोग के, तो कहते कि दादा तो मर गल हो, कहा के पानी पियन, ऐसे कहते हैं। लेकिन कहो कि दादा का रग रग में तुम्हारे खून चल रहा है। अगर तुम्हारा बच्चा होगा, अगर तुम महावीर है, बंधन है, तो तुम्हारा बच्चा जो होगा तो बंधन ही होगा, महावीर ही होगा। तो ये खून के प्रभाव से, ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम अदर्स कंट्री जैसे कहते हैं, उनके रेस्पेक्ट से करते हैं। आज हमारे पूर्वज आए, चले गए, लेकिन खून छोड़कर चले गए। इस कारण मोरिशस को कहते हैं कि छोटा भारत है यहां पर। और ये छोटा भारत को जीवित रखने के लिए जो सहयोग भारत से मिलता है और इस आपरवर्ष घाट से सरकार से, ये कायम रखना चाहिए। अब कितने आप लोगों ने, आपने प्रश्न कहा, अगर एक एक हाँ, उत्तर दूंगा ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। लेकिन
0: संक्षेप में मेरा सवाल ये भी है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको नहीं पता कि क्यों संध्या काल में दिया जलाना चाहिए, ये एक एग्जाम्पल है। तो बच्चों को कैसे हम समझाएं कि ऐसा करने से साइंटिफिकली मतलब क्या होता है? और फिर सिर्फ साइंटिफिकली नहीं, देखिए हमारे जो पूर्वज थे उनके पास इतना न रिसोर्स थे, न संपत्ति था कि वो बृहद रूप से पूजा पाठ करें। वो बस ध्यान करते थे, बस एक दिया जलाते थे, और इसी श्रद्धा के माध्यम से उन्होंने इस देश को संवारा, अपने जीवन को संवारा, कभी हिम्मत नहीं हारी। उनको पता था कि एक शक्ति है जो उनको प्रेरित कर रहा है, उनको मार्ग निर्देश दे रहा है। तो आज बच्चों को ये समझाना चाहिए, मतलब कैसे समझा सकते हैं?
1: बच्चों को तो यही समझाना, देखिए अगर जब काम पड़ता है, बच्चे लोग काम में जाएंगे, बड़े होते हैं या स्कूल जाते हैं, तो बड़ा ध्यान से अपना सब कुछ तैयार करके जाते हैं, कारण कि वो जानते हैं कि मैं जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, नौकरी मिलेगी, मैं अपने आप को पोस्ट पालूंगा
0: जी।
1: ये एक बात हुई, वहां रेस्पेक्ट दे रहे हैं,
0: जरूर
1: अच्छी बात है। अब याद रखें कि काम काज कर दिए, शादी ब्याह हो गया, 60 साल हो गया, 70 इयर्स हो गया, अब बच्चे को शादी कर दी, अब काम काज नहीं है, पैसे हैं, लेकिन याद रहे एक जो श्वास परमात्मा देते आते हैं, जो जीवित रखते रहते हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। सुबह पूरी रात आप सो करके आए, क्या क्या भोजन किए, क्या क्या कैसे किए, डाइजेशन सिस्टम, जो पाचन शक्ति रात को भगवान चलाते हैं रात भर, आप तो नींद, गहरे नींद में है, अब सुबह उठ करके केवल अपने बक्से लेकर के चले जाएंगे काम करने या स्कूल, ये तो बेवफाई हुई। सुबह उठ करके सूर्यनारायण जी को धन्यवाद, सूर्य जी कि आपने रात बीती, आज सूर्य देखने को मुझे मौका मिला, बहुत धन्यवाद, या एक अगरबत्ती बार दें या दिया जला दें, जो भी हो, या एक नमन कर दें, काम पर चले जाओ। पूरे दिन जो एनर्जी मिला, जो ऊर्जा मिली आपको काम करने के लिए, जो लोगों से मिलाप हुआ, अब शाम को आएंगे परिवार के बीच में खाएंगे, तो आपका एक पूजा स्थल होता है, या हनुमान जी के चौतरा है, या कुछ जैसे भी हो जो आप तैयार किए हैं घर में, तो कम से कम तो वहां पर भी नमन करना है कि थैंक यू भगवान जी, आपको बहुत धन्यवाद है, एक दिवस हमने कुछ कमा करके आए बच्चों के लिए या पत्नी के लिए या घर के लिए, बस आपको हम धन्यवाद देते हैं। एक संध्याकालीन समय में, शाम के समय में हम आपको एक दिया जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, धन्यवाद से अपने पूर्वजों बच्चों को रखें, या सद्भाव से रखें, पूजा पाठ में लोगों का ध्यान लगे। और ये कौन करता है, पहले माँ बाप करते हैं, फिर बच्चों को देना चाहिए। कभी बच्चे लोग गेम में बिजी रह जाते हैं, इस बच्चों का दोस्त नहीं है इसमें, ये हमारे ही दोस्त है इसमें, तो कहे कि दो, मैं कहता हूं कि नहीं, इसे नहीं है, लेकिन टाइम लिमिट पर जब करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। बच्चों को ये सिखाना है कि ये पूजा पाठ ही केवल नहीं, ये मंत्र से कर दे, ध्यान लगा दे, कैसे भी कहते हैं कि भगवान तो हृदय में है, अच्छी बात है, मैं हृदय में करता हूं, लेकिन याद रहे शरीर एक दिन जाना है,
0: जरूर
1: आत्मा वहां जाना है, कहीं तो कुछ रेस्पॉन्स करना है। तो एक दिया जलाने में, एक अगरबत्ती बनाने में ऊर्जा किसकी गई, आपकी गई, आप एनर्जी किसके गए, आपके गए, आपकी भक्ति किसको मिली, आपकी मिली, घर आंगन परिवार आदि। अब जब रेस्पेक्ट आप घर में दे रहे हैं तो परिसर में जाएगा, एक माहौल है। अगर मृत्यु के, अगर आपके यहाँ जन्मदिन है तो लोग नहीं मनाते हैं, ये रेस्पेक्ट करते हैं। अगर साउंड सिस्टम ज्यादा है, अगर वहां पर कोई मृत्यु हुई तो कम कर देते हैं, ये आज तक मॉरिशस में जीवित है, लेकिन आपके माध्यम से अगर एंटीना मिलता है तो हम और इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं और इसमें जबरदस्त कह सकते हैं,
0: अवश्य
1: ये समय पर होता है,
0: अवश्य। और विष्णु बंधन जी, आप प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड, जो उनकी आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के संचालन कर रहा था, लगभग 20 बरिस होगा, थोड़ा एक ब्यौरा के बारे में बोला, ये जो धर्म संस्कृति भाषा के डॉक्यूमेंट करे में, जो ओकर अलग अलग विरासत थोड़ा इमारत के संरक्षण बा, ओकर संरक्षण ओकर डॉक्यूमेंटेशन में आप प्रवासी घाट कैसे चलता, और आज ऐसा बड़ा कॉन्फ्रेंस जब चली तो जरूर आप प्रवासी घाट अपन ब्यौरा प्रस्तुत करे होला बा, थोड़ा हमने संगे भी ये ब्यौरा बांटा।
2: अच्छा, मैं पहले सूचित कर देना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस होगा
0: जी,
2: ये कला एवं संस्कार
0: संस्कृति मंत्री
2: द्वारा हो रहा है,
0: मंत्रालय
2: द्वारा हो रहा है। हमारा जो मिनिस्टर है श्री महेंद्र गुंजिया जी को, उसको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सब कुछ तैयार किया, हमको
0: सारी सुविधाएं दी
2: ताकि ये कॉन्फ्रेंस जो होने वाला है ये ठीक से गुजरे। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस हम यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में 3 दिन द्वारा होगा, मतलब कि 13, 14, 15 तारीख को होगा, शुरुआत होगा यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में, उसका जो लॉन्चिंग है हमारे मिनिस्टर द्वारा होगा, श्री गुंजिया द्वारा होगा। और उसमें क्यों हम यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में ये कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं, देखो वहाँ पर जो है उसका, वो बोलते हैं उसका बेसिस, उसका बाज जो है, जितने एकेडमिक्स है वो लोग सब अपन अपना पेपर तैयार करते हैं, और वो जब पेपर तैयार करते हैं तो वो उनका भी रिसर्च होता है, तो इसी कारण अब्रवासी घाट ने और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने मिलकर कोलाबोरेशन कर ये कॉन्फ्रेंस को रखा हुआ है। अच्छा, चलिए बात अब रही बात जैसे आपने कहा भाषा वगैरह पर,
0: हाँ।
2: तो हर एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए उसका जड़ क्या है, रूट्स, अभी पंडित जी ने बताया इनका इतना तो इसका पहुंचा, देखो कितने कितने देश में वो जाकर भी पूजा पाठ करते रहते हैं, तो अभी अभी मेरे को लालमाटी में कुछ होने वाला है अभी थोड़ी में और भी है, तो ऐसा है कि वो जर जब अपना रूट्स आपको नहीं मालूम है तो आप क्या प्रगति करेंगे
0: जी।
2: हर एक व्यक्ति को अपना रूट्स जानना चाहिए
0: ताकि पता चले किधर जाना है,
2: किधर जाना है हमको, क्या क्या डायरेक्शन क्या है,
0: किधर से निकले किधर जाना है।
2: हाँ, तो अभी हम अगर ये नहीं, हमको नहीं मालूम पड़ेगा तो बस हम लाचार कहीं पर रहेंगे,
0: कोई खाते पीते चले जाएंगे।
2: तो हमारा जब बच्चे लोग पूछेंगे हमारा से

0: ये हमारे जो नई पीढ़ी के लोग आते हैं, तो पिताजी पापा जी भी कहाँ से हम आए, तो आप तो हमारा पापा है, तो आपका पापा कौन था, कहाँ से आइए, आपने कभी सोचा है, कभी पूछा है, आपने कभी हमको बताया नहीं। तो ये सब फैसिलिटीज है। मैं ये आग्रह करूंगा कि ये कॉन्फ्रेंस तो हो रहा है, ये कॉन्फ्रेंस देखो सरकार द्वारा हो रहा है, आप्रवासी घाट द्वारा हो रहा है, लोगों को सूचित करने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए कि आप जाओ अपना जड़ तक जाओ,
1: जरूर,
0: ताकि आप कैसे जो पंडित जी बता डीएनए की बात कर दिया, तो ये हमारा भी जो है वर्ल्ड यूनेस्को द्वारा एक संस्था है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल साइंटिफिक कमिटी ISC, उनके द्वारा जो है उसमें मेंबर है, चारों बहुत अन्य देश के मेंबर लोग में बैठे हैं, उन लोगों के द्वारा भी ये कॉन्फ्रेंस चलेगा। अच्छा, वहाँ से जो जो मेंबर हर देश में मेंबर है और वो मेंबर जो है अपना अपना पेपर तैयार करके लाते हैं, ये 3 दिन द्वारा जो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में होने वाला कॉन्फ्रेंस, इसमें वो अपना पेपर पेश करेंगे ताकि लोगों को मालूम है। मैं अभी से अभी यहाँ आपके माइक द्वारा आमंत्रित करता हूँ ताकि लोग जिनको समझ है आप आओ, देखो, सुनो क्या कुछ हो रहा है, कि हम तो ला रहे हैं लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका लाभ तो नहीं होगा।
2: और फिर इसका ऑनलाइन
0: जैसे बोलते हैं तो हम ये कॉन्फ्रेंस जो है हाइब्रिड बोलते हैं ना, मतलब जूम द्वारा ऑनलाइन द्वारा होगा, ताकि हर एक व्यक्ति को जो समय नहीं है वो अपना देश काम छोड़कर इसमें भाग लेने के लिए, ताकि वो अपने देश में रहकर अपना घर में भी बैठकर ये जो कॉन्फ्रेंस होगा ऑनलाइन देखेगा, भाग लेगा, और उसका अगर पेपर भी होगा तो अपना पेपर भी पेश करेंगे।
2: और शायद ये लिंक जो है वो आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के वेबसाइट पर आपको मिल सकता है।
0: जरूरी, सब कुछ है।
2: और आप्रवासी घाट के फेसबुक पर पेज पर भी इसको प्रसारित करेंगे।
0: हाँ।
2: जी हाँ। तो ये थी बातें कॉन्फ्रेंस की जो कि विष्णु बंधन जी ने बताया, बुधवार से शुक्रवार तक चलने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में, और इस कॉन्फ्रेंस को आप देख सुन सकते हैं। इसके लिए लिंक होगा आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के वेबसाइट पर, वहां पर जाइए, आपको लिंक मिलेगा, रजिस्टर कीजिए और इस कॉन्फ्रेंस से आप काफ़ी लाभ उठा सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फिर हम आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ पंडित जी भी जुड़े हुए हैं, पंडित महावीर जी, जिन्होंने हमें बताया ग्रास रूट लेवल पर किस तरह से इस संस्कृति को लोग जी रहे हैं मॉरिशस में, मॉरिशस से बाहर भी। और आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के निदेशक श्री विष्णु बंधन जी हमारे साथ हैं, जो कि इस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के जो हेरिटेज प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी हमें जानकारियां दे रहे हैं। और बंधन जी, जैसा कि मैंने कहा, इस वर्ष 20 साल हो रहा है जब आप्रवासी घाट का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अंकन हुआ था, और शायद इसी का फायदा उठाते हुए जो गतिविधियां आप्रवासी घाट चला रहा है उनमें से ये भी एक है। और अभी थोड़े ही कुछ दिन पहले, पिछले महीने, जो इंडेंचर IDMS इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स था, उसमें भी आप्रवासी घाट ने अपना पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया, किस तरह से कार्य हो रहा है और कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिससे हम प्रस्तुत करते हुए बच्चों के साथ साथ आम जनता जो है उनका भी ध्यान आकर्षित कर सकते हैं इसके बारे में। और आज के इस कार्यक्रम के प्रसारण में आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड का पूरा सहयोग रहा है संस्कृति की बातें कार्यक्रम में। तो अंत में प्रोग्राम के लगभग समापन तक हम पहुँच चुके हैं, आप जो आखिरी मैसेज है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे विष्णु बंधन जी?
0: संदेश ये है कि हर एक, मैं ये मांग करूंगा, पंडित जी तो है ही यहाँ पर कुछ बोलने के, लेकिन माँ बाप को चाहिए कि अपने जो इतिहास है,
2: हिस्ट्री जो है
0: हमारा देश का हिस्ट्री जो है, ये अभी देखेंगे आप बाद में शायद इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जो है पहले पारिवारिक जो है फैमिली टुगेदरनेस, उस पर ध्यान देना चाहिए, इतिहास पर भी ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने भी कहा कि रूस जो है हमारा, तो हिस्ट्री द्वारा सब मालूम होगा, तो आप्रवासी घाट जो है तो ये जो है हिस्ट्री जो हमारा रूस जो हमारा हिंदी में बोले हिस्ट्री के इतिहास हमारा इतिहास, जब तक हम इतिहास नहीं जानेंगे, देखो बोलते हैं अगर एक जात को मारना है ना तो उसका भाषा को मार दो पहले। तो हमको ये बाप माँ को चाहिए कि अपना भाषा जो है, तो भाषा में क्या है, भाषा में हमारा संस्कार, संस्कृति है,
2: संस्कार
0: है, संस्कृति सब कुछ है। इसी द्वारा तो हमको मालूम पड़ेगा। देखो अभी पंडित जी बता वेदाज है, महाभारत पढ़ते हैं, गीता है, ये सब हमको देते हैं कि मतलब कि लाइफ का जो डिसिप्लिन होता है
2: वो इसी में है,
0: इसी में
2: है। जरूर। और बस एक मिनट रह गया है पंडित जी, एक मिनट में आप एक संदेश देना चाहेंगे?
1: संदेश वही दूंगा कि आप लोग जुट करके रहे, भाषा गई तो संस्कृति गई, संस्कृति गई तो देश गई
2: जी।
1: अगर देश को बचाना है तो भाषा को बचाना है, और भाषा को बचाने के लिए अपने संस्कृति सभ्यता को जानना चाहिए। और इसमें जो बड़े कार्य कर रहे हैं हमारे विष्णु बंदन जी यहाँ पर घाट से, सरकार के सहयोग से और एमबीसी के सहयोग से सराहना करने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी सिलसिले में हम अगले 23 तारीख से महाशिवपुराण की कथा कर रहे हैं लाल माटी में, इसी बातें पर ज़्यादा बात करने की विष्णु जी ने कहा, तो आप सभी लोगों का आमंत्रित हम भी दे रहे हैं।
2: ज़रूर,
1: धन्यवाद।
2: संस्कृति की बातें कार्यक्रम यहीं पर पूरा होता है। आपने हमें ध्यान से सुना, प्रोग्राम को पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: सपहर के 3 बज चुके हैं। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम रविवार रात मॉरिशस समय अनुसार रात 11 बजे केन्या के जम्मू केन्याता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके आगमन पर केन्या के स्वास्थ्य मंत्री अदन द्वाले ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री की प्रतिनिधिमंडल में जिनों मंत्री धनेश्वर दामरी और फैब्रिस डेविड, विदेश मामलों के सचिव रॉय बिसुंदुयाल, फ्रांस में मॉरिशस के राजदूत जोएल रॉल्ट तथा अफ्रीकी संघ में हमारे सहायक प्रतिनिधि इंद्रजीत बाबुआ शामिल रहे। हवाई अड्डे के स्टेट लाउंज में प्रमुख अतिथियों में पुस्तिका में डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस और केन्या के बीच विशेष संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने ये भी बताया कि केन्या उनका पहला विदेशी देश था जहां उन्होंने जीवन में पहली बार

0: ट्रक की थी जब वे सरसिव सागर रामगुलाम के साथ नैरोबी में केन्याई राष्ट्रपति जोमो केन्याता से मिलने गए हुए थे। इसके बाद जोमो केन्याता ने मॉरिशस को संविधान तैयार करने में मदद करने के लिए प्रतिभाशाली टॉम एम्बोया को भेजा था। प्रधानमंत्री अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में अपेक्षित लगभग 40 अफ्रीकी नेताओं में शामिल हैं, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों भी मौजूद हैं। और मॉरिशस लोकतंत्र और अच्छे शासन का शानदार उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नैरोबी में कल शाम प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से मुलाकात के बाद एमबीसी को विशेष रूप से ये बयान दिया। दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षीय और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार से जुड़े मुद्दों पर बात की। विश्व बैंक की सदस्य संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने हाल ही में मॉरिशस के पर्यटन पर एक रिपोर्ट जारी की है। ये दस्तावेज विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। और रिपोर्ट में पर्यटन क्षेत्र की स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करने के माध्यम और दीर्घकालीन उपायों की सिफारिश की गई है। इसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट टूरिज्म टास्क फोर्स के गठन की सलाह दी गई है, जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन परियोजनाओं का समन्वय करेगा। तो ये थी अब तक की खबरें। कुछ ही समय में शुभ समाचार। शिवाला रेलवे रोड मोताई ब्लांश में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड श्रीमती पारो सिवनुत पैदाशी नाम सुभा और जिन्हें लोग पारो नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। कीर्थी कल दिन के 2 बजे इनके पति धनराज सिवनुत के मकान शिवाला रेलवे रोड मोताई ब्लांश से उठाकर मोताई ब्लांश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 2 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: आज की चर्चा।
5: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सब लोगन के स्वागत बाटे। प्रणाम नमस्ते सबको। के लंदी के दिन हाथ अच्छा ला एक घंटा के इस सफरवा में आप सब के शानदार स्वागत बाटे। और हमेशा नियन लंदी के दिन हमने चर्चा करी ला जा खेती बाड़ी के बारे में। और आज हो हमने यही पर चर्चा करब जा बायो फार्मिंग। कभी सुन ले हुआ बायो कुंची हा? हाँ, हमेशा प्रताप जी आज नए आल हवन बल्कि एगो दूसर मेहमान आल हवन एक्सटेंशन ऑफिसर हवन फागी दने से श्रीमान संजय शंभू। तो चला आज यही टॉपिक पर हमने चर्चा करब जा। सबसे पहले इनका स्वागत करी ला जा। संजय जी तुहर स्वागत बा। नमस्ते।
6: नमस्ते निशा। जितना कोई हमने संगे जुड़ल मन सा उन लोग के बीच नमस्ते।
5: तो चला आज ये जो टॉपिक वा है बायो फार्मिंग, एकर से आगे तनी सुन। हमने जब देखा था जब दुनिया में कौन चीज हुआ था, वॉ होता, लागेर हुआ था, दूसर दूसर जो देश बा वो लोग लागेर करत हवन सा, लेकिन भरती जो दुनिया बातें संसार बातें वो सूफिया करता। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाला तो हमने छोटा देश है सा और हमने के जो नेपाक ऊहू हमने महसूस करी ला जा। जब बायो फार्मिंग की बात करे थे, जब बायो माने कि जैविक, माने कोनो रासायनिक पदार्थ नहीं, तो ऐसन में हमने सबसे आगे आगे हमने बढ़ब जा बायो फार्मिंग के जो लाभोताज बातें। लेकिन अभी जो सिचुएशनवा बातें दुनिया में एकर से खेतीहर लोग के कौन मुश्किल हुआ था?
6: तो जैसे बोल बाहर में जो अभी वेस्टर्न एशिया में जो अभी है समस्या बातें, तो आज देखब हमने के ज़्यादातर जो कृषि हमने यहाँ पर मॉरिशस में करी ला जा, तो ओकर में ढेर ऐसा रासायनिक पदार्थ के प्रयोग होला।

0: कृषि हमने यहाँ पर ये मॉरिशस में करी ला जा तो ओकर में ढेर ऐसा रासायनिक पदार्थ के प्रयोग होला थे पेस्टिसाइड्स बातें और बहुत ऐसा बीज के प्रयोग कैला सा जो ओके हमने आए हैं पोते कैला जाता है जब तीन को चीज देख बीज खाद और पेस्टिसाइड देखबा तो हमने के कृषि एक पर बहुत निर्भर करेला
1: तो तुहर से अभी पूछती जब पेस्टिसाइड्स बोली ला जा जब फर्टिलाइजर्स बोली ला जा कौन डिफरेंस भाई में
0: फर्टिलाइजर यानी कि वो खाद है खाद में ओकर में एलिमेंट न्यूट्रिटिव रहेला कैसे एन पी के पोटाशियम फॉस्फेट
1: न्यूट्रिएंट्स
0: मिनरल न्यूट्रिएंट्स रहेला में तो वो देवल दला माटी में सकेला माटी उतना बढ़िया नहीं हुई तो ओके सप्लीमेंट करे खातिन डाल दला ओके जब में जोड़ मिली खाए के मिली
1: जी
0: तो इसे गांची बढ़ी पेस्टिसाइड्स के प्रयोग वो कीड़ा कीटाणु वगैरह से लिपटे खातिन होला तो एगो बीमारी हुए तो फंगिसाइड के प्रयोग हो एगो एगो अगर एगो मारू पिलुआ बाते तो इंसेक्टिसाइड के प्रयोग हो मारू घास रहला तो हर्बिसाइड के प्रयोग होला सकल आए दूसर चीज वो करे लेकिन
1: जस्टी सबसे हाँ जी जी तो जितना जना हमने के देखा था हुआ जा लाइव है जा रेडियो पर टीवी पर फेसबुक पर भी तो कोई प्रश्न रही हमारे सामने से संपर्क या किया जा 402-85-402-8085 पर फोन करिया हमने के आज के मेहमान हुआ श्रीमान संजय शंभू और हमने बताया था जा बायो फार्मिंग तो बायो फार्मिंग कौन सी है
0: अच्छा आज एगो कृषि कौन एगो कृषि लेप्स खेती बाड़ी लिप्स तो ऐसे एगो सोच कर कि हाँ खेती बाड़ी में एक को रासायनिक पदार्थ के प्रयोग नहीं करत हो
1: जी
0: तब हम बोलब जे ई बायो फार्मिंग हो गल क्योंकि रासायनिक नहीं बाय कर में
1: तो ई संभव है
0: बिल्कुल संभव है तो एगो एगो एगो खेती बाड़ी करब घरे अपने से पापन अपन खेत में अपने से बीज निकल ले और बीज के ओके रासायनिक पदार्थ से ट्रीटमेंट कर ले हाँ एगो दूसरा चीज कंपोस्ट या फिमिया के प्रयोग कर ले हो अपन खेती करे खातिर तो वही से माटी के बढ़ियार कर ले हो तो खाए के तमिल गल
1: जी
0: अब बातें समस्या आज हो पिलुआ के या बीमारी के तब भी एक आध चीज बातें जैसे लाथाप सा कब सा करिए जैसे आजकल ढेर ऐसा पेस्टिसाइड बातें ओके बोला सब बायो पेस्टिसाइड
1: जी
0: ओकर भी प्रयोग सकल लाए करे और नेचुरल फार्मिंग में एगो खासियत बात है कि चाहला तोहरा अपन जो पर्यावरण बा ओकर भी तैयारी करे के देखो बायोडायवर्सिटी से तो आज अनेक प्रकार के जब पेड़ पौधा जब लगेब जो फुलाला और मनुकिल्छे नहीं करब एक जीवसिते के रोपाई करब तो अपने से बीमारी जो कीड़ा रहेला ओकर ओकर जो फ्रेशो रहेला कम हो जाला
1: अच्छा।
0: लिपटे के आसान रहेला तो इस प्रकार से जैसे हम थोड़ा उदाहरण देनी एक में हम रासायनिक पदार्थ के प्रयोग नहीं करनी तो खेती बाड़ी हो जाला हम ऐसा अनेक अनेक खेती हर लोग के जानी ला
1: जी।
0: जो रासायनिक पदार्थ के प्रयोग बिल्कुल नहीं कैलन जा नेचुरल फार्मिंग कैलन जा उसी से गुजारा सब हो जाला
1: तो संजय जी आजकल हमने बायो फार्मिंग की बात करे थे जैविक खेती की बात हमने करे थे जा और ढेर जना एकरा अपनावे अपना ले हवन पर हबी ले कई जना खेतीहर हवन जा जो ढेर पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते आवत हवन इस्तेमाल करते आवत हवन बोलत है सेना चाहेला इस्तेमाल करके हमेशा प्रताप जी जब आवेलन बोलेलन जो पेस्टिसाइड बातें जो रासायनिक पदार्थ है वो चाहेला लॉस्ट ऑप्शन रहे के जब कोई ऑप्शन नए रहेला तब ऐसा सिचुएशन जो आगे रह और हबी जो बातें वो तनि सुन ओकर बारे में बताओ
0: जाना था संसार जैसे चलेला एगो फैसिलिटी के जब फैसिलिटी मिलला तो सबको एक गंदा हवे में चलते जाला
1: जी
0: कैसे तोहर तोहर घर में आजकल टीवी बातें लगल बा लिविंग रूम में लड़का लोग के टैबलेट सब मिला था मोबाइल फोन मिला था तो कहाँ जाके बाहर खेले के खेल कूद करे के बैठा लो ऐसा सोफा में

0: ikan mekun cihul jab berkar berkar jen labu kato lu ba kumpai lu ba ilan sabulan sa dikha tohar khet me hai jen kira kitanu bhate tohar tohar sabzi ke oke
1: oke chala moi ke
0: ha tohar sabzi ke gati karta utna tohar paidavaran ne bate ta chala hai prayog kara tab dikha sab chij niman se jaise bolan sa joli joli khubsurat rehla ta aise hi shuru hol जैसे कि दूध के होल ता दूध के आए दूध जब प्रयोग करते हैं सब फ्रेश मिल्क
1: जी
0: तो कर बाद मार्केटिंग से आल के देखा पाउडर मिल्क बाते सक बचा अनेक हफ्ते वा महीना तक रखे ता कहाँ जाए बा फ्रेश मिल्क रखे
1: जी
0: हाउ के प्रयोग करा ता हाउ के पा सेम थिंग पा गई होल बा ता जब ये आल ता जब किसान लोग जब इकर प्रयोग कर लन सा ता इता स्पष्ट बात है कि जब डाले होन सा जब पेस्टिसाइड्स ता जितना पिलवार हाल तक सब का मित्र मरले चल गया ना तो अब हमने के जो सब्जी लोग कहता है तो बहुत
1: बढ़िया
0: बढ़िया भाई ने बढ़िया ने बोला चोली लोग कहता ऐसे बोला खूबसूरत लोग कहता एक बार बाद में फिर से आप भाई बढ़िया बात है कि नहीं तो ऐसे ही शुरुआत हो तब ऐसे जब देखो फैसिलिटी में जब आदमी पड़ गल तो कहाँ हो लात्राप डाले के कहाँ अनेक तरह के रुपाई करे के कहाँ बायोडायवर्सिटी देखे के ये सब गते गते मरे लगल
1: जी
0: क्योंकि हमने बहुत है जब रासायनिक पदार्थ बातें ओकर पर निर्भर करे लगनी सब तक हमने बोला जिस पा के दोषी बा के नहीं दोषी बा सबको एक हमें दोषी बा हम यो दोषी हैं ऐसा क्योंकि हम यो बोलने से देखा
1: प्रयोग सुविधा
0: लेकिन अब ऐसा नहीं को सिचुएशन में आ रहे ऐसा स्थिति में आ रहे ऐसा कि अब हमने के लोग के ला कि जो आगे बोलते हैं जा निमन बातें आजकल है नया जहाँ जो रिसर्च होता है बोलता है कल में देखा समस्या बातें
1: जी
0: एक आध गो पेस्टिसाइड्स बा ओकर में जानी ला सा ओकर से कैंसर होला
1: जी
0: एक आध गो पेस्टिसाइड्स बा जो जानी ला जब प्रयोग होला तो जन पानी में जला तो पानी में जाके जो जन जीव जंतु पानी में रहला तो ओके समस्या होला एक आध गो पेस्टिसाइड्स में माटी में जाके माटी के बंजर बना होता तो ये सब गते गते आवता तो अब एगो जागृति होता कि देखा है जो रासायनिक पदार्थ बातें एगो क्वेश्चन वर्क बातें उतना से खिलानी मन नहीं हुई तो वो खातिन रासायनिक पदार्थ के ये जानते हुए कि कितना नाशकारी है तो हमने के चला एक प्रयोग अंत में जब जितना हमने योजना बनेले हैं सा वो योजना
1: नए
0: काम कर लग तब तब एक आदमी के साथ शुरू से वो किसान के चाहला ओकर माटी के बढ़िया रखे के माटी के बढ़िया रखे खातिर वो खाद से नहीं होला रासायनिक खाद से नहीं होला वो कंपोस्ट फीमिया से होला सबसे अच्छा हमने के गौ माता की फीमिया
1: तो आजकल जो गौ माता की फीमिया की बात करे थे इतना चना के आगे जैसे रहल दादा दादी लोग पोसत रहलन जा गाय अब तक कमती बात है अब वो लोग की कहाँ से मिली बुलाई बोलबा तनि सुन कमती वो बात है ढेर चना न करेलन
0: हाय अच्छा बोला तो आगे की तरह के उतना गाय के पोषण नहीं होला तो अब सबसे गला कंपोस्ट के हो इंडस्ट्री निकाले एगो हमने के कैसे बोला एस एम ईज नहीं हुए चला दिखे कि खाली गला हमने किसान के ट्रेनिंग का इलासा बोला सा किसान लोग जहाँ आए थोड़ा अपन अपन अपन खेत में कंपोस्ट बनाओ प्रयोग करा जहाँ दूसर
1: तरह से
0: सोचे कि किसान के खाली गो ओकर ओकर ओकर ओकर एगो वो कर में अकेले नायक नहीं बातें सकेला का मैं हमने के एस एम ई पी एम ए लोग सभी उठे जन कंपोस्ट बनाए और एक चीज बोलती सकेला आज एक ऐसा स्थिति में आ गए नहीं सर कि हाई जन फीमिया के ओकर प्रोजुक्शन बात है सकेला को सेवी से सौशलों में गिर जाए
1: अच्छा।
0: आगे जाके क्या पता सरकार बोली देखा हम हमने के चाहला था फीमिया चाहला को उत्पादन करते रहे के तो हमने के चाहला ऐसा स्टाशन डाले के जहाँ कम से कम थोड़ा तो मिली ना
1: तो जब आसीज वो सब होला ला एग्रीकल्चर के तो ये सब जितना खेती हर वजह स्टेक होल्डर जैसे बोला था वो लोग आके इस सब के बारे में वर्कशॉप करे ला जब ब्रेन स्टोमिंग होला कैसे
0: हो रहा आसीज तो ये बड़ी सुन रहा शुरू में साल के शुरू में लेकिन आसीज से पहले जैसे बोला सब प्री आसीज के आसीज से आगे प्री कंसल्टेटिव प्रोसेस वो बढ़िया से हो रहा
1: जी
0: अनेक वर्कशॉप हो रहा जहाँ पर 400 से भी ज़्यादा स्टेक होल्डर्स बन लोग आला लंजा और अनेक प्रकार के चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज और सुझाव भी दे रहे लंजा और हम मांग करती कि जितना कोई आज हमने के सुना था तो हमने के कृषि मंत्रालय के ओकर वेबसाइट में सगवा प्रयास के

0: पापा वो डाउनलोड करके पढ़े तो कर में देख बा कितना चीजों का मैं बात है
1: तो हाउ जब आसीजवन उस सब होला वर्कशॉप उस सब होला तो जो न खेती हर हवन जा जो न किसान लोग हवन जा जो न आगे से हबी ले काम कर रहे थे हवन सा और जो न फैसे फैचिलिजा इस्तेमाल कर लें जब पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर उन लोग के माइंड सेट बदले खातिर कुनो चीज कर जाला उन लोग कैसे सोचे लन जा कैसे रेजोने करे लन सा हम एग्रीकल्चर रेजोने की बात करे ला जा तो वो लोग कैसे रेजोने करे लन सा
0: हम एक उल्टा चीज बोला सकेला कोई नाराज भी हो जाए पहला माइंडसेट चला हमने अपने आप के बदले के सच्चे के भुला जा
1: सच्चे के
0: अपने आप कैसे बोलते हैं हम आज फाये के प्रतिनिधि है तो सबसे पहला माइंडसेट चला हम अपन माइंडसेट बदले के कि देखा हम नहीं सका आगे की तरह जाके आए किसान लोग के शिपो दे कि ऐसे कर हाई रासायनिक पदार्थ डाला वगैरह वगैरह सबसे पहला माइंडसेट अपन के चला आए बदले के ओकर साथ एगो कलेक्टिव हम है ऑफिशे तो हमारे अनेक जन कोलेग लोग बांटे सबके कलेक्टिव यानी कि ऐसी चीजों के अब माइंडसेट बदल गए तब जाके किसान लोग के साथ बोले ना तो एक में अकेले ये हम कहते हैं बोले कि हमने कि नहीं चला खाली किसान अकेले ओकरे चला ये मार्ग लेके कि तरह चोरा चला ऐसे करे के नहीं किसान के साथ साथ हमियों के भी चला का साथ चले के देखिए कैसे कौन सुविधा दे सा कौन बटल नेक पाते कौन समस्या पाते ओके सुधार आने के सकेला पॉलिसी में हो सकेला लॉ में हो सकेला कुछ में हो तो साथ साथ चला जा लेके चाहिए ताकि हो खेती बाड़ी के जो बोला सर फार्म टू फोक कैसे लासीज में देखें फार्म टू फोक लेके कहाँ कहाँ कुंची कुंची हमने किला होगा ताकि चाहला समस्या के समाधान के हो सब चाहला करे साथ साथ
1: ये सच्ची बात बोले हो क्योंकि काय की जितना हमने चीज खाए ला सा खेत से निकल कर हमने की लाकुचिन में आवला माने कि हम सब को सुमाते हैं ऐसा तो एगो साइकिल जिन बातें हमेशा हमने बात कर लेला जाए वो जिन साइकिल वो बातें घूमते रहे ला हाइजा से शुरू होके लाकुचिन में आके फिर से तो चाहे ला जैसे बोले हवन नहीं खातिर खाली नहीं जिन खेती हर हवन जा किसान लोग हवन जा सब कोई चाहे ला हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ के तो हमने के साथ जुड़ल हवा यह आज के चर्चा कार्यक्रम हमने बायो फार्मिंग पर बतियात है जैसे कुछ हो पूछे के बातें फिकर न करिए 402 80 85 402 80 85 पर हमने के फोन करिया।

0: बहुत बहुत धन्यवाद हमने संगे जुड़ल हो आज की चर्चा कार्यक्रम में और हमने बात कर रहे थे जा बायो फार्मिंग तो देख ला उकर इतिहास कैसे रहा आज हमने 2026 में है जा और बायो फार्मिंग के जब हमने चर्चा करी ला जा ढेर जन किसान हो जा ढेर हमने कोसुमाते है जा हमने सब एकर से कोसैने है जा और एक पर चर्चा करे खातिर हमने संगे हो न प्रिंसिपल बल्कि एक्सटेंशन ऑफिसर फागिद अनिसे श्रीमान संजय शंभू तो शंभू जी हमने बात कर रहे थे जा फूड सिक्योरिटी के बारे में अभी जन फॉरेस्ट वेस्ट में अभी जो लड़ाई सब हुआ था ओगर से भर्ती संसार जैसे बोली वो सब हमने अफेक्टिव हुआ था ऐसा पर है जो लागे जो हुआ था अभी हमने के कौन लाभ होता हमने एगो छोटा देश है जा हमने कहाँ दूर है ऐसा पर एक प्रभाव पड़ेला कौन लाभ होता बा हमने के
1: हाँ आश्चर्य के बात बात है कि हाँ लाभ होता
0: बात है जहाँ लोग लड़ाई करत हवन सब पर हमने के कौन लाभ होता कैसे
1: तो ऐसा स्थिति में तब हमने के पड़ेला जागे के जागृत हुई के कि देखा जैसे करत नहीं सब तो सकेला निमन से जन सीमा ले लें ऐसा जन रास्ता ले लें ऐसा नहीं छा बातें आप चलना कोई दूसरा रास्ता अपनाए के कैसे कि जैसे शुरू में बोले लेने चलना कि हमने के जन खेती बाड़ी बातें ज़्यादा तक रासायनिक पदार्थ पर निर्भर करेला
0: तब
1: केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स और हाइब्रिड सीड्स बनवाते होकर आयात करेला सब तो आज देखब जा हमने के मन बा अपन पैर पर खड़ा हो हमने बोला सा शुरू में बोला ऑटोसुफिशियंस बोला तो ऐसे ही नहीं बोला हमने के मन में हम बोला रेजिलियंस हमने के मन में रेजिलियंस हो के तो हमने के चाहला हाई सब पर निर्भर नहीं करे के
0: जी
1: तो अब कैसे निर्भर नहीं करब सब तो केमिकल फर्टिलाइजर चल हमने के ओके ओके कम प्रयोग करे के पेस्टिसाइड्स कम प्रयोग करे के बाहर से बीज कम प्रयोग करे के तो यहाँ पर ही हमने के चला अपन जो बीज बातें लोकल लोकल बीज जो बातें खोज करे के हमने के यहाँ पर जैसे कंपोस्ट रही फिमिया रही तो हमने उतना केमिकल फर्टिलाइजर नहीं प्रयोग करब जा और जैसे बोली अनेक तरह के तरीका बातें योजना बातें जैसे सबसा लाथाप या अपन से कुछ पत्ता वगैरह जीवन मित्रम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग द्वारा सबसा अपने तैयारी करे ताकि सकब जा पिलुआ सबके सामना करे तो इस प्रकार से हमने अपन पैर पर जस्ती खड़ा हो सा और बाहर से बाहर पर निर्भर नहीं करब सा
0: तो हैजा जब बात करत हुआ तो हम के फिरों से याद आ गल कोविड जिसने जब आ रहा तो हमने कौन ची नए सीखले हैं ऐसा कैसे अपन जो घरे कैसे खेती बाड़ी होला छोटा छोटा जो चीज रहल हमने ओकर वाले माटी के मोल जैसे हमने बोली रासा ना ओकर जो वाले हुआ वा हमने जनली जा सीखली जा तो हयो हबी जन सिचुएशन आल बाटी भर्ती संसार में एगो सकेला एगो मौका हमने के फिरों से मिलल हमने भूल गए रैली सा हमने के सकल सकब सब बोले कि हाँ कोविड चल गल सब कुछ निमन से हो गल अब जन सिचुएशन फिरों से आ गल बा हमने नहीं जाने थले नहीं जानब सा आगे कौन चीज हुई

0: कुछ हो ही नहीं जाने थे तो अभी चाहे ला फिर से हमनी के अपन गोर पर खरा ठरा हो कि जैसे कि बोलत हुआ और जब हमनी गत महीना एक दो महीना हो गल बाती हमनी माटी के मूल कार्यक्रम कर ली लैसा माधेगुन माने कि फ्री आप के बारे में प्रताप जी एगो किस्सा बोले रलन कि जब एगो छोकरा एगो छोकरी के बाप जात रलन छोकरा लगे ओकर से पूछे तुर लगे माधेगुन बाते वो बोलक का है बोलक कि जे बात और लगे फ्री आप तो हमार बेटी वो भूखा नहीं मरी तो एगो एगो एगो एग्जाम्प हाँ। पर जब सोचब तो इस सच्ची बात है आगे को जो जो जो चीज रहल आज तक डेवलपमेंट हुआ था टेक्नोलॉजी के बात हमने करा था ऐसा तो सब कुछ जब बदलते जात बातें पर नहीं चाहेला भुलाए के कि ये सब जो फूड सिक्योरिटी जो चेन बातें चाहेला वापस रिस्टोर करे के
1: बिल्कुल बिल्कुल ता कोविड में जैसे बोला बहुत चीज कोविड से मिला सीखे के और बहुत कुछ कर लीजा के खेती नहीं करता अचानक देखे के नहीं कर रहा था
0: जी
1: ऐसे चना देखे के
0: बड़का बड़का जिन आदमी ऑफिस में ब्यूरो में काम कर रहा था ललन जा वो लोग कबो माटी के नहीं छोड़े ललन सा आज देखा अपन काम करे था काम कर रहा था वन सा ब्यूरो में अपन माटी के संभालत होवन चाहे जन माटी के मोरवा बात चाहे ला हमेशा याद रखे के
1: फिर कुछ बोल हवे जन आगे में बोलनी फैसिलिटी तो एगो फैसिलिटी में जब पढ़नी सा तो मैं गिर गई नहीं सा ऐसे बोला गिर गई नहीं सा जब गिर गए नहीं सर तब मैं देखा था तब मिला था कुछ जब करी ऐसे बोला ना तब भुला गए नहीं सर तभी मौका मिला लबा वेस्टर्न एशिया में जो आए समस्या बातें तो आज ये भी भुला गए नहीं सर तक आगे जाके अगर ना एगो थोजम गया मोजाल हो या फिर एगो दूसर परिस्थिति आए तब कुछ करब जा तो यही मौका बातें कोविड के हमने के जो एक्सपीरियंस मिला अनुभव जो करनी जा और आज जो होता तो हम बोलती थे मौका ने गवाए के चाहे लाने के पैर पर खड़ा हो के फुयापा के बात बोल हम ओकर से एगो तोरा एगो जैसी दूर के चीज बोल शुरू में बोल ओत विशेष हाली में होते तो एक आध गो चीज हमने जो आयात कैला से ओकर में बातें हमने के गेहूँ आटा तो इसे हमने के इम्पोर्ट बिल भी ज़्यादा रहेला तो फुयापा से सकप से हमने आटा बनाए
0: अब तो बना हुआ जाता
1: हाँ लेकिन उतना कौचते में नहीं
0: हाँ
1: मैं बनाता हूँ फुयापा से सकप सा बनाए बतात से बना सकप बनाए मान्योक से सकप सा बनाए
0: जी
1: हमारे देखे में सकप जा जो व्यूलेट बोला सा उकर से भी बनाए अब देखा आज हमने एक प्रोडक्शन आज एगो कौचते में करती सा हमने के देश में एगो कारखाना चला जो ने कर प्रोडक्शन बड़ा मात्रा में करत तो ये हमने के जो हमने गेहूँ आए के आयात के लासा ओके कम कर दे
0: जी
1: सब नए चला 20% ही कर दीजा
0: तो हमने यही आशा कर रखा है सर कि अभी जितना जाना सकेला सुनत होवन आगे हमने मोरिंगा यानी कि मुगुंग के बारे में हमने खाली बुयो पकार बनावत रही सा छोंकत रही सा आज देखा मोरिंगा के लापुट बनता चाय बनता ढेर चीज बनावल जाता तो जैसे बोले हवा भाई संजय तो काहे नए सकेला ढेर अभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट होवन जा ढेर जना होवन जा सोचत होवन जा कौन चीज चाहेला करे के जो आगे के बारे में हमने सोचब जा तो हाँ अभी आज तक मान्योग के बारे में गत हला हमने बचैली सब मान्योग के आटा बनाता फुयापे के आटा बनाता बेतराव के हमने बतात के 5-6 गो वाइते हमने देख ली सब कौन ची नए बनावा जाता तो ई मार्ग पर जे हमने हबी नए सोचब चा तो हमने पीछे रह जाब सा
1: ना बिल्कुल बिल्कुल चाहेला और एकर में एगो एगो एगो एगो समय रहल कैसे जब एगो आदमी बोला मान्योग खा बतात खा
0: जी
1: तब सकेला ओकर में तनि सुन शर्म जुड़ल रहल तो हम एगो छोटा आदमी है बतात खा मान्योग खा हम आज जो स्थिति में है सा जन साल में है सा 2026 में तो जितना रिसर्च बा कहूँ कोनो नजरिया से देखब सा तो देखब सा कि जो बतात बा जो ज्वेलित बा जो फुयापा बा एक में जितना एलिमेंट न्यूट्रिचिव बात है एक एक खाब सा तो हमने सौ वाला जस्ती निमन से हमने के सेहत वो भी रही
0: हमने के पूर्वज हमने के दादा दादी लोग यही खात रलन जा और कितना हेल्दी स्वस्थ रलत रहन जा आज तो हमने ये सब चीज कमती हुए खा था ऐसा जितना जंक फूड बा हव के पीछे जैसे बोले तो वह फैसिलिटी जोन फैसिलिटी मिले तो हमने खा था ऐसा पर यही जो न फूड जोन बातें

0: पातात बाते जुन मान्योक बाते ये सब खाब सा एगो चटनी मिल जाए टटका मिल जाए वी करके खाब सा तेने सु दूध में डालब सा तो चाहे ला हो जुन कुलचौवा बाते हाँ, फिर से चाहे हाँ, ला
1: लेकिन लेकिन एकर में फिर से हो जुन हो जो बिलन सा माइंडसेट तो हो माइंडसेट तो हमें चला बदलाव आने की तो हम थोड़े से मांग करती शायद अगले सप्ताह पता नहीं कब सकबा दादा शायद कोई के बुलाए यहाँ पर ही जो एक न्यूट्रिशनिस्ट हो सकेला वो यहाँ पर चर्चा करी फू यहाँ पर में हमने के बतात में मानयोग में
0: कुछ कुछ
1: बातें ऐसे हमने के जो नागरिक लोग बातें सब सुनी ग्राहक लोग बात सुनी तो हाई जन सा खरीदे
0: तो हम यही आशा कर रहे थे और उधे जना जाने लन आजकल तो एहतियात बातें जो चीज खोजबा ओकर बारे में तू जान जाएबा ढे जना जाने लन सब पर इन योगों तनी सुन हो जालन जा ना ये के खाए अभी दूसर खाए खाएवा के मिलता फैसिलिटी जैसे हमनी बार बार फास्ट फूड मिलता जंक फूड मिलता सब कुछ लेता नए बातें नहीं चाहेला लेता निकाले के और इस सब के बारे में चाहेला और वहाँ जो नवा जेनरेशन हुआ हुआ था उन लोग के चाहेला सिखाए के
1: चला तो ये विधि जैसे चलेला जितना चीज में श्रम रहला एगो जेफो पर डाले के हवे हमने के जो बुद्धि बातें उन नहीं खुश रहला बस हमने के बुद्धि आलसी रहला समझा तो जितना चीज मारू रहला जैसे फास्ट फूड जंक रहला वो हमने के बुद्धि बोला जैसे सिपा चला हाई खरीद के खाए तो ई सब में चला एगो बदलाव आने के
0: चला बुद्धि के ब्रश न करैया हवे गो जना हवन न उनका से हमनी बचायला जा हेलो हेलो
2: टाइम के अंदर
3: जी नमस्कार
0: नमस्ते जी
3: मैं हम प्लांटर थे यदि मान्यु तो सब यदि खा लेता हाय मांगूस की कौन सी खा लेता तो कैसे बने
0: नमस्ते चाची तो चाची बोले थे वन ओ मान्योक प्लांट ले हवन जुन काजिनी के चूहा मंगूस सब कुछ खाते
1: बंदर
0: बंदर कहाँ से हवा चाची
3: सेवास्तोपोल
0: सेवास्तोपोल से
1: चाची नमस्ते
3: नमस्ते
1: सबसे पहला तो जानना चाहने के की समस्या कहाँ होता मंगूस से होता कि बंदर से होता
3: नहीं बंदर नहीं नीचे कोड़ के खाता
1: नीचे कोड़ के खाता
3: मंगूस वे हुई मुको
1: अच्छा तो अभी हम के है ये जो मंच में है हम कठिन रही बोले के हम तोरा बल्ती सेवास्तोपोल के एरिया के ओकर एक्सटेंशन ऑफिसर फ्लैक में बातें ओकर दफ्तर हाँ
3: फ्लैक
1: हाँ एक वो जाके वहाँ पर ही ओकर से ओके जनाया नहीं वो स्वीवी करी तोर खातिन निश्चिंत रहिया वो स्वीवी करी जाके वहाँ पर ही ओके जनाया
3: धन्यवाद
0: अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद जी कुछ और पूछे के बात है हमने के फोन करिए 402-80-85 402-80-85 तो भाई संजय हमने के बतावा जब बायो फार्मिंग की हमने बात करा था जा एक स्टेप्स कौन सी है
1: सबसे पहला हम बोलती चला नकल नहीं करे के एगो एगो खेतीहर जो दक्षिण में बातें तू उत्तर में हो तो तू गला दक्षिण में वो खेती बाड़ी करता नेचुरल फार्मिंग के तो वहाँ से नकल करके नहीं आनिया
0: तो जब नकल करके बोला था तब बायो फार्मिंग हुआ तो वही है अब ओकरा देख के धरला हमार वाजा बातें वो करत है बायो फार्मिंग अब हमरो मन बा तो ओकरा देख के तो हम करब
1: नहीं पड़ोसी और दूर में जे बा ओकर में अंतर बाते ओकर में आयला नेचुरल फार्मिंग ज्यादा तक निर्भर कहला तोहर पर्यावरण पर तोहर बायोडाइवर्सिटी में कुंची बा तोहर इलाका में हुआ परी सकेला कुछ प्रकार के अच्छा जीव जंतु बाते जैसे कोक्सिनेल बाते लेकिन कोक्सिनेल तो अनेक प्रकार के बाते बात नहीं लेकिन हर हर इलाका में कैसे उत्तर दक्षिण या प्लाटू में ऐसा तो वहाँ पर ही जन क्लीमा बाते वो अति ने
0: बान
1: क्लीमा बाते साउथ में साउथ में गाना तुम उत्तर में रहला तो नकल कर वहाँ के ओकर क्लीमा खातिन ओकर नेचुरल फार्मिंग योजना जन बाते ओकर खातिन अडाप्टे बाते
0: अच्छा
1: तू नोफ में हुआ तुहर दूसर समस्या बाते दूसर चैलेंज बाते तोहर तोहर बायोडाइवर्सिटी जन जन पेड़ पौधा सकेला जन उगेला ओकर ओकर अलग तोरा चला अपन बाज बनाए के
0: अच्छा
1: सबसे पहला चला अपन बाज बनाए के फोंडाशों करे के पहला है सबसे पहला अपन माटी के बाजार करके सगरो दक्षिण में भी उत्तर में भी कहूं पे रबे चला ई पारे रही,
0: चाहे वो खुला मैदान में रही, शेल्टर फार्मिंग वो में रही,
1: शेल्टर फार्मिंग लेकिन माटी में जो होता है हाइड्रोपोनिक के बजाते हैं तो सबसे पहला है माटी के चला बरियार करे के, और माटी के बरियार करे खातिर 50 गो सोल्यूशन है
0: जी।
1: एक गो है चला माटी में माचे उगाने का निक
0: जी,
1: तो माचे उगाने के ओकर जो लासु जो ओकर सोर्स बाते तो बाते कंपोस्ट, जैसे कि कंपोस्ट या फिमिया, वो भी गाय के फिमिया सबसे
0: बेस्ट
1: बेस्ट बाते।
0: तो हबी तो हसे पूछती जब बायो फार्मिंग जो माटी के बरियार के बरियार बड़ा बुलत हुआ तो धरला हम आगे इस्तेमाल करत हली पेस्टिसाइड, अब हमार मन बदल गल बाते, अब हम करब बायो फार्मिंग तो कौन चीज चाहेला करे के माटिया के कितना बरिस कितना महीना चाहेला स्प्रे करे के मटिया के प्रिपारे करे के जमे बायो फार्मिंग हम करब।
1: हम इस सब झमेला में नहीं पड़ती, देखा तू अपन खेती बाड़ी में को परिवर्तन खोजता लाई के ये सब जाना तो जन जाना तीन बरिस आए के तीन बरिस के इंतजार करे के वगैरह ये सब जन लोग सर्टिफिकेशन करते हैं तो वो लोग खाते अच्छा बात है, और जे सर्टिफिकेशन भी करा था एक चीज के नाम है ट्रांजिशन
0: जी,
1: एक ट्रांजिशन पर एक चीज सर्टिफिकेट मिलेगा तो हाँ वो बात है। हम ये सब झमेला में नहीं पड़ती, हम बोलते देखा नेचुरल फार्मिंग करा तो कि नहीं कहूँ पर शुरू करता शुरू करा
0: जी।
1: सबसे पहला अपन माटी के बरियार करा जो आगे करा तब आगे करते ना तब बीत गल ना कौन सी सब अपन बदले कुछ नहीं जन जन जन जन अब बा ओकर पर ध्यान करो तब माटी बरियार करो मनोकिलचिया के छोड़ा अनेक तरह के रोपाई करो
0: जी।
1: कैसे हम हमेशा बोला ए बी सी डी ई
0: मतलब
1: ये है मातनिल में सीखा था ना ए बी सी डी तो लेकिन जब नेचुरल फार्मिंग कर बा तो लगभग पांच गो
0: बाईते
1: सब्जी के रुपाई करा
0: जी।
1: तब एबीसीडी कहाँ वेला कर में तब खाली एगो एगो एगो पौसिल बाओ कर में खाली ए ने रोपा तब बी तब एगो छोटा सुन पौसिल बनाओ ए करा तब बी करा तब सी करा तब डी करा तब ई करा तब फिर से ए बी सी डी तब खेत में एगो डाइवर्सिटी होगा। ओकर साथ साथ तोरा चला जाने के तोहर इलाका में कैसन पेड़ पौधा होला
0: जी,
1: ओकर रोपाई करे के बोझ बनाए के ताकि जन अच्छा ऐसे बातें वो आए जैसे कि कोक्सिनेल बातें वगैरह वगैरह अनेक प्रकार सीएफ बातें अनेक प्रकार के ऐसे
0: बातें
1: सब वगैरह आए तो बायोडाइवर्सिटी के साथ एगो डाइवर्सिटी जन अच्छा बातें वो भी आए। खेती बाड़ी जब शुरू कर ले हुआ नेचुरल फार्मिंग के तो अपन लाथाप नहीं भूलिया, अब लाथाप अनेक प्रकार की है। एक वो है जन सकेला कैसे उदाहरण के उदाहरण दे होता है मुशदफी के हुई
0: जी,
1: तो एगो लाथाप डलबा मुशद मेलों के तो ओकर फेरोमोन के प्रयोग करवा तो वो आके पकड़ाए दूसर मुशदफी के दूसर लाथाप, लेकिन एगो दूसर तरह के लाथाप वो जीवित रहेला जैसे कि हमने के जन पौधा बाते एक आध गो फूल जन रोप तो वो हम फूलवा मारू ऐसे के बुलाई
0: गेंदा के फूल
1: हाँ जैसे
0: फ्रिप्सोकर
1: में गेंदा के फूल में ओकर में आए तो तोहर खेत में नहीं जाए तो एक आध गो दूसर के तेरा जैसे प्लाटा में आरोमाचिक बातें वो गए पूछे करेला तो आज ओकरो रोप तो अब वो तो गए पूछे करे तो कारो में नहीं आए तो ये सब चाहेला हमने के प्रयोग करता उसकी जो पहला सौ गो जो पांच बातें वो पहला पढ़ी तब ओके हो लागे की जाए ट्रांजिशन सके करे तब वहाँ से कन्वेंशनल से निकल के कौन कौन स्टेप चला करे के जाए के नेचुरल फार्मिंग की ओर गिदाहिकुल सकबर में देख के करे।
0: अच्छा
1: गिदाहिकुल एगो एगो पुस्तक नहीं है जो नेचुरल फार्मिंग खातिर है लेकिन सकबा के प्रयोग करे नेचुरल फार्मिंग की ओर जाए
0: खातिर। अच्छा तो हमने बात करे थे जैसे जो स्टेप्स बातें बायो फार्मिंग के अभी बोला माटी के चाहेला बढ़िया बनाए के
1: बढ़िया
0: और दूसर जो स्टेप
1: अच्छा घर पे जब रही ला तो घर साफ सुथरा रही

0: 你们 jen bhojan ba u khaiba fast food ne
1: ji
0: jen niman khana ba u khaiba ta tu tandurus rabo
1: ji
0: ta to harab bhi bimari nahi hui aile rahi to ghar niman se thanda shital hawa ka me gujrata wagera ta acha lagi rahe ke tu tandurus rabo kheti bari
1: usne ha
0: uviya
1: ji
0: ek chiz hum hamesha bhuila hamare jen jita mitra log baate kheti har log ho ja ugalo ke bhuila dikha तोहरा जी लड़का हुई तोहरा जी लड़का बाते तो लड़का आज बीमार ने बाते
1: जी
0: तो ओके पास तामोल देब पिए के
1: नहीं
0: नहीं देब ना काहे नहीं देब
1: तो बीमार नहीं बाते काहे देब
0: तो जब तोहर खेती बाड़ी करे तो जब खेत में बीमारी ने बाते तो काहे रासायनिक पदार्थ डाले ला
1: जी
0: तो जय कुछ है रासायनिक पदार्थ के प्रयोग करब तो हो खेती के एगो फैसिलिटी ओकरे एगो फैसिलिटी मिला था तब उहु तब आलसी हो जला तब ओकर जोन बेला से ओकर डिफेंस मेकानिज्म बाते तब उहु अफेबली हो जला ऐसे ही आज देखबा जा एगो एगो छोटा से एक जना जोन हमेशा उबला हुआ पानी जोन पिएला और जाके बड़ा होल गनला नल नल के रोबिने से पानी पी सकेला बीमार पड़ जाए काहे तब क्योंकि ओकर ओकर कॉन्स्टिट्यूशन अफेबली होकर बाते नहीं सकेला ऐसा आसिमिले करे वो पानी के तो खेती खेती बाड़ी हुए होला हमने इतना ले सुविधा दे ला जा इतना ले हो पेड़ पौधा के ओके ओके वो लोकेशन मिला स्ट्रेसी हो के
1: जी
0: तो हुए होला
1: इतना सच्ची बात बोले हुआ और जैसे जो एग्जाम देवा था हुआ जो सिंपल एग्जाम्पल देवत हो उदाहरण देवत हो पर जब सोचबा तो सच्चे के है
0: और आज आज जैसे आलैसा हम जब शुरू कर रही काम करे के वापसी के फ्रीवे में शुरू में रही सन 2000 में लगभग तो उस समय में सन 2000 में उतना कैसे बोला सर बी ओ पी सी सी नहीं रहा
1: जी
0: नहीं रहा ज्यादा एक आध गो सकेला नीम के फौज भी रहा वो भी महंगा रहा और शायद उतना काम नहीं करता
1: जी
0: अभी जहाँ ऐसा 26 साल बाद जितना बी ओ पी सी सी बातें मार्केट में तो तू अंदाजा नहीं सक लगाए
1: जी
0: बी ओ पी सी के छोड़ दा अब जितना जितना प्लांट एक्सट्रैक्ट्स बातें मिक्रोब मिक्रोब के आधार पर जो बी ओ पी सी सी बनल बा वो भी बातें एक आध गो चीज का नाम है बायो फर्टिलाइजर लेकिन वो पी सी सी नहीं है ओकर में मिक्रोब बातें मिक्रोब जाके माटी में आज डलब तो जन तोहर एलिमेंट न्यूट्रिटिव है जैसे बोला सा फॉस्फेट जैसे बोला सा पोटाशियम वगैरह तो ओके माटी में बंधा ला तो लिबेरे कर दिला ओके खोल देवेला तो वो तब हमने के जो जड़ी बातें पौधा के तब ओके मिल जला ओके हिंचे के
1: मतलब कि ढेर अभी हमने देखा था जा सुविधा बातें ढेर जैसे लिग्जॉम देवत हुआ ढेर बायो फर्टिलाइजर सब बातें पर तोहर देखे में अभी आज हमने 2026 में है ऐसा तो 5 बरिस 10 बरिस में जो पेस्टिसाइड बा ओकर इस्तेमाल हमने जे हाउ जो तरीकावा बाते उहु तरीकावा से हमने इस्तेमाल करब सा कि नहीं माइंडसेट वो बदली जैसे तू काहे कि तू तेरे पर हवा खेतीहर लोग से किसान लोग से मिले ला जो जो जितना जना से तू मिले ला जो माइंडसेट बाते वो बदली हाँ हमने बायो फर्टिलाइजर्स बायो फार्मिंग पर जस्ती ध्यान दे वापस
0: बदले के बदली ये हम सकब 100% बोले बदले के बदली काहे कि जैसे जैसे हमने के जन जनता बातें लोग के अनुभव बड़ा हो जाता जाने लग जा कि रासायनिक पदार्थ में ओकर में समस्या बातें तो लोगों के नहीं मन माना खाए के जिनमें पेस्टिसाइड रेसिड्यू वगैरह बातें लोग के मन नहीं बा तई वो प्रेशर क्रिएट करी कि चाहला खेती बाड़ी एगो दूसरा तरीका अपनाए के
1: जी
0: एगो दूसरा जैसे तो राब बोलने अभी हमने के मार्केट में अनेक प्रकार के बी ओ पी सी सी बातें
1: जी
0: तो हमारे देखे से गते गते ये इतना ले आम हो जाए कि गते गते आदमी लोग बी ओ पी सी सी अपनाए और जन रासायनिक पी सी सी बातें ओके छोड़ दे
1: जी
0: लेकिन लेकिन बीओपीसीसी अपने आप में भी उहू भी नहीं अच्छा बात है
1: जी।
0: हम एक स्पष्ट रूप से बोल देला क्योंकि उहू एक तरह के एक दे पाउंड बात है ना। तो हमने के चला ऐसा नेचुरल फार्मिंग सिस्टम्स के आदुप्ति करे के जिनमें उफे
1: जितना
0: बीमारी बीमारी जो पिलुआ सब बातें कुछ संतुलन रही कि नहीं नहीं प्रयोग कर अब सही चीज़।
1: तो हर देखे में आज हमने बात कर रहे थे क्लिमाचिक का इतना पिलुआ बातें इतना जहाँ देखा था वह है लेगी में है सब्जी में है फल में है फलंजर प्रॉब्लम बातें बैक्टेरी बातें ऐसे बातें तो तुहर देखे में एक जैसे जैसे बोला था वह माइंडसेट बदली हाँ और लोग समझन सा जनियन सा कि कर इस्तेमाल चाहे वो पेस्टिसाइड हो बियो फर्टिलाइजर्स हो एक कमती हुए इस्तेमाल हो
0: कठिन रही क्योंकि जैसे बोला हमने के ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमेशा तो हमने के जो क्लीमा बातें जो मौसम रहला गर्मी के मौसम वो जो मारू पिलवा रहला ओके ओके अच्छा एक में ओकर ओकर ई ओकर गनला ओकर क्लीमा प्रेफर गया
1: जी।
0: लेकिन असंभव नहीं बातें जैसे बोली जब सुविधा मिलला तो हमने के बुद्धि जो नहला आलसी उजला कठिनाई में हमने तब पहला श्रम करे के लेकिन सकब सा निकले लेकिन शुरू में बोल रही अकेले किसान ही नहीं सके करे ना
1: जी।
0: हमने के चला साथ साथ चले के संगे एक गो विजों रही सब को योकर में चली तब हाई संभव रही। एगो शुरू में एगो बोलेला हॉग प्लम बीटल के नाम ले रहा तो देखे मैं ऐसे उड़ के आ रहा हमारे देखे मैं उड़ के नहीं आलवा ना बहुत ऐसे बीमारी जन रहला जन पिलवा होला उड़ के ना होला उस अकेला कोई इलीगल में कुछ आलत हुई तो कर में हुई अब नहीं डिटेक्टे हुए तब चला तब अब हमने के जन खेती बाड़ी रहला तब ओके ओके ओके ओके हानि पहुँचा होला तो ये सब जब बोला साथ साथ चले के तो ये सब भी चला देखे कि कौन फौजवी भीतर मॉरिशस में आवा था कैसे हो के स्क्रीनिंग करते हैं जा एक इस सब एक होलिस्टिक अप्रोच चला रहे
1: तो कंट्रोल होला मिनिस्टर देने से फारी देने से कंट्रोल होला
0: पुलिस बात है लेकिन चोरी तो चला ना तो क्योंकि पुलिस चारों ओर नहीं सकेला रहे तो कंट्रोल होला लेकिन ऐसे होला कि एक आध गो चीज इतना नियमन से ओके छुपावल कर पाते कि नहीं लोकल हुई होला ऐसे
1: जी जी। तो बहुत ही जो टॉपिक वा बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग वो बातें बायो फार्मिंग और कई जना तोहरा अभी सुनत होवन कई जना खेतीहर नहीं होवन जा पर अपन घरे जैसे आजकल हमने जब बात करें कंटेनर गार्डनिंग किचन गार्डनिंग हमने कर ली सा इतना प्रोग्राम हमने वो सब बचाई ली जा सिखाई ली जा कि कैसे चाहेला करे के मान कि रास्ता बा एगो जिक्शों बा बस चाहेला ओकरा अपनाए के
0: एक चीज बोले रहा हम बोलियो का बत्याप बनने बतैली हाई में जोड़ देला
1: जी।
0: तू बोले रहा सब्जी बढ़िया बात है
1: जी बढ़िया बात है
0: हाँ। बढ़िया बात है तो जब खूबसूरत एगो सब्जी देखी ला जा
1: जी
0: ओकर अर्थात नहीं है कि वो बढ़िया बात है क्वालिटी के बात
1: जी
0: सकेला हमने बोलते हैं ओकर में बात है मैं सकेला ओकर में इतना ले सकेला ओकर में पेस्टिसाइड के प्रयोग कर लेबा उका तीन तरह खूबसूरत लगता है। दूसरा चीज एगो चीज जब खूबसूरत है लाके से टमाटर ले लेना चाहिए एगो टमाटर जो इडोपोनिक में गन्ना बियो है बियो नहीं इडोपोनिक में बियो नहीं है क्योंकि ओकर में रासायनिक फर्टिलाइजर के प्रयोग होता लेकिन गन्ना ओकर में पेस्टिसाइड के प्रयोग नहीं हो पाते लेकिन एगो टमाटर जो इडोपोनिक में से निकले ला और एगो टमाटर जो बाहर में खेती बाड़ी हो बा दोनों से आगे उगाए बनाई बा तो ओकर में टेस्ट में अंतर नहीं बाते ओकर स्वाद में अंतर नहीं बाते बहुत अंतर बाते तोरा सचमुच आज जितना चीज जो हम बोला जितना चीज जो बियो से होला नेचुरल फार्मिंग से उत्पादन होला तो मेरे को मिठास रहेला
1: जी
0: है कैसे सुसु ले बा कावत ले बा कोनो चीज ले बा हाँ गोभी ले बा मिठास रहेला सक बात ढेर दिन तक के रखे काते नहीं होला एगो एगो एगो मित्र बात है हमारे एगो लाबो के ब्रांच के मैनेजर वन हम से एक दिन बोलते जैसे देखा हम गए एगो मार्केट में एगो सुफले खरीद ली तो लेके हम मोटर में रख दिली तब गए मगाजे वगैरह घूमे जब अली जब दरवाजा खोलनी तब के पेस्टिसाइड मौका था देखा तो आज हम जितना कोई घरी हो घर पे बाक्य फर्मिंग से बुलास आज सुनत हो आज त

0: मन रही जानने के कि वो पोजिजन बियो और जन जिसमें रासायनिक पदार्थ के प्रयोग हो बात थोड़ा मन हुई जिफियोस जाने के तक घर ही में भी शक बचा ओकर टेस्टे करे कैसे ओकर रुपाई करा जा आज जगह ने हो माटी ने हो जैसे बोला कंटेनर में माटी भरिया या फिर कंपोस्ट खरीदिया टेंशन माटी में ओके मिलाजे कर दिया तब ओकर में शक बचा छोटा छोटा चीज रोपे जैसे जीतें बातें जैसे लाके जोयों बातें जैसे सेलेरी बातें शक बजा लीची लीची रोपे तब जाके ओकर स्वाद लिया तब अपने बोलिया जे जो खरीदा तो ओकर संगे कैसे कौन अंतर
1: बाते
0: तब शक बचा बोले नहीं हम के चाहला ऐसा नहीं सन चीज
1: तो जो चीज होला उस शुरुआत होला हमनी से हमनी के घरे से
0: हमनी के घरे से होई
1: तो चला आज के चर्चा कार्यक्रम है जे परी समाप्त होला हमनी के मन बाते और ढेर चीज पर बचाए के पर हमनी आगे दूसरा कार्यक्रम में हमनी बतियाब जा बहुत बहुत धन्यवाद हमनी के साथ देला जा और जैसे बोले हो भाई संजय माइंडसेट चाहेला बदले के तभी हमने आगे बढ़ब जा
0: बिल्कुल
1: तो चला बायो फार्मिंग के अपना इते चला बहुत बहुत धन्यवाद भाई संजय शंभू फागे दानी से और हमने के मिलते रहिया सुनते रहिया नमस्ते शुभ दिन।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one.
3: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ पूजा। नमस्कार आपको।
4: नमस्कार मनीष मां, सभी को मेरा नमस्कार। वर्तमान में तैयार की जा रही नेशनल रोड सेफ्टी स्ट्रेटेजी 2026-2030 का लक्ष्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को 50% तक कम करना है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक्शन डिकेड के अनुरूप है। रेजू में आज एक कंसल्टेटिव कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां परिवहन मंत्री उस्मान महमूद ने अधिक सुरक्षित व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा के महत्व पर बात की। इस महीने ही 6000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक के छात्रों में सड़क सुरक्षा के सिद्धांतों का प्रचार कर सके। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम कल रविवार को मौसम समय अनुसार रात 11 बजे केन्या के जम्मू केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। प्रधानमंत्री की प्रतिनिधि मंडल में कई जूनियर मंत्री और महानुभाव शामिल हैं। हवाई अड्डे के स्टेट लाउंज में प्रमुख अतिथियों की पुस्तिका में डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस और केन्या के बीच विशेष संबंधों का उल्लेख किया। और अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में प्रधानमंत्री अपेक्षित लगभग 40 अफ्रीकी नेताओं में शामिल हैं, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद हैं। विश्व बैंक की सदस्य संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने हाल ही में मॉरिशस के पर्यटन पर एक रिपोर्ट जारी की। ये दस्तावेज विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। रिपोर्ट में पर्यटन

0: क्षेत्र की स्थिरता और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए मध्यम और दीर्घकालीन कदमों की सिफारिश की गई है। इसमें एक क्लाइमेट रेजिलियंट टूरिज्म टास्क फोर्स के गठन की सलाह दी गई है। विदेश में अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका और फ्रांस के दो नागरिकों में जो एक क्रूज जहाज छोड़कर अपने अपने देश लौटे थे और जिस पर एंटावायरस का घातक प्रकोप हुआ था, वायरस की पुष्टि हुई है। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि रिपैट्रिएशन फ्लाइट में एक अन्य अमेरिकी नागरिक में हल्के लक्षण भी देखे गए और दोनों यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी के तौर पर बायो कंटेनमेंट यूनिट में यात्रा करने की आवश्यकता पड़ी। फ्रांस की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि एक महिला पेरिस में अलग थलग है और उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जबकि उसके 22 संपर्क मामलों का पता लगाया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। हम मिलेंगे शाम 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन के साथ।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: आपके सितारे
3: सोमवार 11 मई घड़ी मिला लीजिए 4:05 होने का है। RM3 रेडियो मनोरंजन पर आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सुमी और आपके सितारे ये प्रोग्राम लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। सो हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी? अच्छे तो है ना। तो चलिए, 4 बजे का टाइम जो होता है बहुत ही अगर आप काम से निकल रहे हैं तो रास्तों पर ट्रैफिक होता है और ऐसे में ट्रैफिक में भी है और हमें भी सुन रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। बस जो है म्यूज़िक के रफ्तार के साथ आगे बढ़ते जाइए और आपका ये जो सफ़र है बहुत अच्छा हो, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और आपके सितारे प्रोग्राम लेकर हम आ गए हैं और अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक आपका साथ हम देने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि दिन अच्छे से बीत रहा होगा और आपके सितारे इस प्रोग्राम में आज एक ऐसे एक्टर पर हम बात करेंगे जो अपने टाइम के पॉपुलर एक्टर्स में से रहे हैं। एक्टर ही नहीं बल्कि ये जो है स्क्रीन राइटर भी है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, एडिटर भी है और जो है 25 सितंबर 1939 को इनका जन्म हुआ था। ये आज हमारे बीच नहीं है, 27 अप्रैल 2009 को ये चल बसे थे। तो आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं फिरोज़ खान साहब के बारे में। फिरोज़ खान साहब अपने आप में एक बेहतरीन एक्टर रहे हैं और बहुत से लोग इनकी अदाकारी को देखना पसंद करते हैं और अपने आप में ये इतने हैंडसम भी है कि क्या कहे थे, है ना। तो चलिए कुछ खूबसूरत गाने तराने इस 2 घंटे के सफ़र के दौरान आपके लिए हम चलाएंगे। फिरोज़ खान साहब से जुड़ी कुछ बातें करेंगे, किन किन फिल्मों में इन्होंने काम किया और चलिए इसी के साथ आज के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं धर्मात्मा फिल्म के इस पॉपुलर गाने के साथ। और अगर फिरोज़ खान साहब आपके भी फेवरेट एक्टर हैं और किसी के नाम इनका कोई गाना करना चाहते हैं तो बेशक यू आर मोस्ट वेलकम 4028070 पर। साथ ही यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250620000 पर।

और इस फिल्म में फिरोज खान साहब को कौन भूल सकता है, कुर्बानी फिल्म का ये गीत आप सबके नाम। ऐसे कुर्बानी फिल्म में सभी के सभी गाने इन पर पिक्चराइज नहीं हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ये इस फिल्म में है तो हम कोशिश करेंगे कि इस फिल्म के कुछ गाने भी आपके लिए हम चलाएं।

0: आपके सितारे
1: ऐसे संजय खान ऐसे हम फिरोज़ खान साहब की बात करें तो इनके भाई संजय खान भी फिल्मों में इन्होंने काम किया है और फिरोज़ खान साहब की बात करें तो इन्होंने जो है काफ़ी पॉपुलर फिल्में भी की है जैसे कि आदमी और इंसान जो 1969 में आई थी, प्यासी शाम ये भी इनके करियर की हिट फिल्मों में रही हैं। वहीं 70 के दशक में इन्होंने काफ़ी जो है हिट फिल्में दी है जैसे कि सफ़र, खोटे सिक्के, गीता मेरा नाम, काला सोना, शंकर शंभू। और पहले की फिल्में होती थी ज़्यादातर जो है मल्टी स्टारर फिल्में हुआ करती थी, एक से ज़्यादा एक्टर नज़र आते थे। अगर हम सफ़र इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म अपने आप में बड़ी कमाल की रही है, फिल्म के गाने भी बड़े कमाल के रहे हैं। इस फिल्म में ये फिरोज़ खान साहब के साथ अशोक कुमार, शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना जैसे बड़े बड़े कलाकार नज़र आए थे। और अन्य इनकी फिल्मों की बात करें तो ज़्यादातर फिल्में जैसे कि हमने कहा कि मल्टी स्टारर फिल्म रही है, जैसे कि गीता मेरा नाम इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में फिरोज़ खान साहब के साथ सुनील दत्त, साधना और हेलन जी नज़र आई थी। उसी दौर में अन्य फिल्मों की अगर हम बात करें, खोटे सिक्के जैसे कि ये फिल्म भी जो है इनके करियर की पॉपुलर फिल्मों में से एक रही है जिसमें फिरोज़ खान थे, रंजीत थे, फिर डैनी थे। तो पहले की जो फिल्में होती थी वो मल्टी स्टारर फिल्में होती थी, एक से ज़्यादा कलाकार होते थे और इतने कलाकारों के बीच में अपना नाम बनाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। लेकिन ऐसे सारे जो है सर्कमस्टेंसेस में भी इनके किरदार को बहुत ही लोगों ने सराहाया, इनकी एक्टिंग को बहुत ही लोगों ने सराहाया। और चले अभी के लिए ऊंचे लोग फिल्म का ये तराना हो जाए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: आपके सितारे।
1: जी हाँ, चलिए खूबसूरत गानों का सिलसिला जारी है और आपको पता ही है जितने भी गाने चल रहे हैं वो लगभग सभी के सभी पिक्चराइज्ड है फिरोज खान साहब पर। इन्हीं आपके सितारे आज हम इन पर बात कर रहे हैं। ऐसे 60s से लेकर 70s तक काफ़ी फिल्मों में काम करने के बाद 70 ही के सालों में जो है इन्होंने एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन और प्रोडक्शन की ओर भी रुख किया। जी हाँ, और इन्होंने जो है इनके करियर की फिल्मों की अगर हम बात करें बतौर डायरेक्टर, जो है इनकी पहली फिल्म थी अपराध। अपराध ये फिल्म 1971 में आई थी। इस फिल्म में इनके ऑपोजिट जो है नज़र आई थी मुमताज़, और ये फिल्म जो है बहुत ही लोगों ने पसंद की थी। फिरोज़ खान साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और जो है फिल्म में संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। मुमताज़ थी इस फिल्म में, प्रेम चोपड़ा थे और अन्य सितारे भी थे, और फिल्मों के गाने भी बड़े कमाल के थे। तो चलिए अपने करियर की पहली ही फिल्म से जो है इन्होंने बहुत ही पहली फिल्म जो इन्होंने डायरेक्ट की थी लोगों को बहुत पसंद आई थी। अपराध अपने आप में बेहतरीन फिल्मों में रही है, फिल्मों के गाने भी बड़े अच्छे हैं। तो चलिए ऐसे में हो जाए फिल्म का ये तराना, और ऐसे मुमताज़ और फिरोज़ खान जी की जोड़ी है वो लोगों ने बहुत पसंद भी की थी। और इस फिल्म में हेलन भी नज़र आई थी, साथ में मदन पुरी भी थे, और फिल्म जो है बहुत जो है अन्य लोकेशंस पे भी शूट हुई थी इंडिया के अलावा। तो उस समय जो है उतनी बड़ी बजट की फिल्में नहीं बना करती थी, और ऐसे में फिल्म जो है एक इंटरनेशनल लोकेशन पर शूट होना अपने आप में एक बड़ी बात हुआ करती थी। तो चलिए अभी के लिए अपराध फिल्म का ये गाना हो जाए आप सभी सुनने वालों के नाम।

0: के सितारे।
1: चलिए आपके सितारे इस प्रोग्राम से आप जुड़े हैं, देखते ही देखते 4:55 हो चुके हैं, होने को है। और आपके सितारे इस प्रोग्राम में आज जो है फिरोज खान साहब पर पिक्चराइज गाने हम चला रहे हैं। तो चलिए धर्मात्मा फिल्म का ये गाना हो जाए आप सभी के नाम। और इस फिल्म में इन्होंने एक्टिंग ही नहीं की थी बल्कि इस फिल्म को इन्होंने डायरेक्ट भी किया था।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: और चले यहाँ पर हमारे जो है रेडियो मनोरंजन पर आप जुड़े हुए हैं आपके सितारे के इस दूसरे घंटे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हम करते हैं। और आज फिरोज खान साहब पर पिक्चराइज कुछ लाजवाब गाने आपके लिए हम चला रहे हैं। और अभी के लिए अपराध फिल्म का ये गाना हो जाए आप सभी लवली लिसनर्स के नाम।

0: हमारे?
1: हाँ, तुम्हारे और कितने ठिकाने हैं।
0: कसम से किसी को नहीं।

आई थी वहीं पर धर्मात्मा ये फिल्म 1975 में आई थी। इस फिल्म को इन्होंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट दोनों ही किया था। फिल्म काफी कमाल की थी ऑब्वियसली, और फिर इनके करियर की फिल्म कुर्बानी को कौन भूल सकता है। इस फिल्म को इन्होंने सिर्फ डायरेक्ट और प्रोड्यूस नहीं किया था और एक्टिंग ही नहीं की थी, बल्कि इस फिल्म की कहानी को भी इन्होंने ही लिखा था। इस फिल्म में इनके साथ एक और कमाल के एक्टर नज़र आए थे, वो थे विनोद खन्ना साहब, साथ में थी जीनत अमान, और जो है एक गाने में जो है इस फिल्म में श्रीदेवी जी नज़र आई थी और ये गाना भी बहुत ही पॉपुलर हुआ था। तो चलिए, इनका ऐसे तो बतौर एक्टर इनका करियर काफ़ी लाजवाब तो रहा ही है, लेकिन एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ राइटर भी इन्होंने काफ़ी जो है फिल्मों में कंट्रीब्यूट किया है। और चलिए, अभी के लिए अगर हम कुर्बानी फिल्म की बात कर रहे हैं तो कुर्बानी फिल्म का ये गाना हम कैसे भूल सकते हैं, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए।

0: आपके सितारे
1: भाई जादू तो आज के इस प्रोग्राम में है क्योंकि फिरोज खान जी के गाने जो है वो बड़े कमाल के हैं। फिर चाहे वो गानों में ये खुद पिक्चराइज्ड हुए हैं या उन फिल्मों के गाने जो इन्होंने प्रोड्यूस या डायरेक्ट किए हैं। अब अगली फिल्म के बारे में जो हम बात करने वाले हैं वो है फिल्म यलगार, और ये जो फिल्म है ये इन्होंने डायरेक्ट की थी। 90s के सालों में ये जो है फिल्म आई थी और इस फिल्म को इन्होंने डायरेक्ट किया था, साथ में इस फिल्म को इन्होंने प्रोड्यूस भी किया था। इस फिल्म में ये नज़र भी आए थे। ये फिल्म भी एक मल्टी स्टारर फिल्म रही है। फिरोज़ खान, संजय दत्त, कबीर बेदी, मनीषा कोइराला, नगमा जैसे एक्टर्स इस फिल्म में नज़र आए थे। और फिल्म जो है 1992 में आई थी। फिल्म के गाने बड़े कमाल के थे और फिल्म को लोगों ने बहुत ही पसंद भी किया था। तो चलिए, मतलब कि 60 का दशक हो, 70 का दशक हो, 80 हो, 90 हो, इन्होंने तो अभी वेलकम जैसी फिल्मों में भी काम किया है, तो हर एक दौर की फिल्मों में इन्होंने बखूबी अपने आप को ढाला है। फिर चाहे वो एक्टर के रूप में हो, प्रोड्यूसर के रूप में हो या डायरेक्टर के रूप में क्यों ना हो। अभी के लिए हो जाए यलगार फिल्म का ये गाना आप सभी लिसनर्स के नाम।

चलिए आपके सितारे इस प्रोग्राम से यू आर स्टिल कनेक्टेड. थैंक यू सो सो मच ऑन आर एम थ्री रेडियो मनोरंजन. ऐसे इनके फैमिली लाइफ, इनके पर्सनल लाइफ की बात करें अगर फिरोज खान साहब की, तो इनका बेटा फरदीन खान भी फिल्मों में इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई. इन्होंने अपने बेटे को लॉन्च भी किया था प्रेम अगन इस फिल्म के ज़रिए, और इनकी एक बेटी भी है, इनके भाई भी हैं, लेकिन इनका जो ज़्यादातर फैमिली जो रहे हैं वो फिल्मों से जुड़े रहे हैं. और प्रेम अगन इस फिल्म की बात करें तो 1998 में प्रेम अगन ये फिल्म आई थी. फिरोज़ खान साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था, लिखा था, और इस फिल्म के ज़रिए उन्होंने फरदीन खान अपने बेटे को लॉन्च भी किया था. फिल्म में संगीत अनु मलिक साहब ने दिया था, और फिल्म जो है यहाँ पर लोगों को जो है इस फिल्मों से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन फिल्म जो है उतना कमाल नहीं दिखा पाई थी. लेकिन इस फिल्म के ज़रिए जो है फरदीन खान को बॉलीवुड में जो है एक एंट्री मिल गई थी.

और चलिए फिर उस्कान साहब की बात करें तो ऐसे इनके करियर की आखिरी फिल्म थी वो थी वेलकम, जिसमें इन्होंने काम किया था और 27 अप्रैल 2009 को लंग कैंसर के चलते ये चल बसे थे। और जो है इन्हें आज भी इनके एक्टिंग के लिए, इनके बनाई हुई फिल्मों के लिए इन्हें याद

0: के सितारे।
1: यकीनन फिरोज खान साहब को तो हर कोई आज भी चाहता है और हम इन्हें ऐसे ही चाहते रहेंगे। जब भी इनके गाने सुनेंगे या इनकी फिल्में हम देखेंगे तो चलिए इसी के साथ आपके सितारे इस फिल्म के जो है इस प्रोग्राम के लगभग हम अंत तक आ गए हैं और जाते जाते ये आखिरी गाना आप सभी के नाम हो जाए। 6 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार और हमारे आपकी मुलाकात जल्द फिर होगी। आपका प्यार भरा साथ हमें यूं ही मिलता रहे ऑन रेडियो मनोरंजन। थैंक यू सो मच।

0: सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले चलिए जानते हैं आज की सुर्खियां। मॉरिशस लोकतंत्र और सुप्रशासन का एक सशक्त उदाहरण, ये बात कल रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ मुलाकात के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने एमबीसी की टीम को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में कही। दोनों महानुभावों ने जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षवाद और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार जैसी चुनौतियों पर बात की। नैरोबी में आज एक बिजनेस फोरम भी लगा। विश्व बैंक की सदस्य संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मॉरिशस पर्यटन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में पर्यटन क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। पर्यटन सेक्टर की स्थिरता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए मध्यम और दीर्घकालीन कदमों की सिफारिश पेश की गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज लगी एक परामर्श कार्यशाला के दौरान परिवहन मंत्री उस्मान महमूद ने सड़कों पर जिम्मेदार और सुरक्षित व्यवहार प्रोत्साहित करने में शिक्षा के महत्व पर बल दिया। इस महीने से देश की पूर्व प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में सड़क सुरक्षा सिद्धांत सिखाने के लिए 6,000 से ज्यादा शिक्षकों को प्रशिक्षण दी जाएगी। भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया। ज्योतिर्लिंग अभिषेक के साथ इस विशेष अवसर पर उन्होंने एक कमेमोरेटिव डाक टिकट और एक सिक्के की लॉन्चिंग की। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम मॉरिशस समय अनुसार कल रात करीब 11 बजे नैरोबी के जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। उनके स्वागत के लिए केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडन ज्वाले वहां पहुंचे हुए थे। मॉरिशस डेलीगेशन में प्रधानमंत्री ने के साथ जूनियर मंत्री धनेश्वर दामरी और फैब्रिस दाविद, विदेश मामलों के सचिव रॉय बिसुंदियाल, फ्रांस के लिए मॉरिशस के राजदूत जोएल हॉल्ड तथा अफ्रीकी संघ में मॉरिशस के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रजीत बाबुआ शामिल रहे। हवाई अड्डे पर स्टेट लाउंज में विशिष्ट अतिथि पुस्तिका में डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस और केन्या के बीच कायम घनिष्ठ संबंधों का खास उल्लेख किया और कहा कि केन्या वो पहला देश था जहां उन्होंने यात्रा की थी, जब वे सरसिव सागर रामगुलाम के साथ नैरोबी में केन्याई राष्ट्रपति जोमो केन्याटा से मुलाकात के लिए गए हुए थे, जिसके बाद केन्या के राष्ट्रपति ने मॉरिशस के संविधान का मसौदा तैयार करने में मदद देने के लिए प्रतिभाशाली न्यायिक सलाहकार टॉम बोया को मॉरिशस भेजा था। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम उन करीब 40 अफ्रीकी राष्ट्र नेताओं में शामिल हैं जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 में भाग ले रहे हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक का उद्घाटन आज केन्या की राजधानी में किया गया। और मॉरिशस लोकतंत्र और सुप्रशासन का एक सशक्त उदाहरण है, ये बात कर रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ मुलाकात के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने एमबीसी की टीम को दिए गए एक विशेष इंटरव्यू में कही। दोनों महानुभावों ने जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षवाद और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार जैसी चुनौतियों पर भी बात की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मॉरिशस को दिए जाने वाले निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री ने आभार प्रकट किया। अब्दुल बुला की रजनी बिकर।
1: कल रात नैरोबी में जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में राष्ट्रसंघ महासचिव अंतोनियो गुटेरेस और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के बीच बहुत अच्छी मुलाकात चली। दोनों ही महानुभाव केन्या एक साथ ही पहुंचे और उन्होंने हवाई अड्डे के स्टेट लाउंज में भेंट करने का निर्णय लिया। उनके बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत चली, जिसके दौरान मॉरिशस और राष्ट्रसंघ के बीच बेहतरीन संबंधों की चर्चा की गई। मौके पर मॉरिशस के लिए कई अहम दस्तावेजों पर भी चर्चा की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन, बहुपक्षीय मुद्दों तथा वित्तीय और जियोपॉलिटिकल चुनौतियों की बात शामिल। इस मुलाकात के बाद एंटोनियो गुटेरेस और डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने एमबीसी को एक विशेष भेंटवार्ता दी। राष्ट्रसंघ महासचिव ने उन चुनौतियों का जिक्र किया जिनका सामना छोटे द्वीपीय देशों को वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में करना पड़ रहा है।
2: It was a pleasure for Mauritius to welcome you. Maybe some words after your meeting with the Prime Minister.
3: Well, Mauritius is for us a fundamental partner. Mauritius is.
1: Antonio Guterres ने कहा, Mauritius हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। Mauritius बहुपक्षीय पहलू को लेकर राष्ट्रसंघ के प्रति कटिबद्ध है। मॉरिशस एक छोटा द्वीपीय विकासशील देश है और ये हमारे लिए प्राथमिकता है, चाहे जलवायु को लेकर हो, अडैप्टेशन अनुकूल कदम उठाने के लिए हो, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुधार प्रणाली को लेकर हो। मध्यम आय वाले देशों के लिए समर्थन की जरूरत है। हमारे बीच घनिष्ठ सहयोग कायम है इन सुधारों के सिलसिले में। लोकतंत्र एवं सुप्रशासन के लिए एक बेहतरीन मिसाल है मॉरिशस, अन्यों के लिए एक सीख।
3: I believe is a lesson for so many others.
1: उधर प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रति कई सहयोग क्षेत्रों में राष्ट्रसंघ के निरंतर समर्थन की बात कही, जैसे कि हाल में सड़क सुरक्षा के संबंध में। प्रधानमंत्री ने कहा, लंबे समय से उनके साथ मित्रता कायम है। एंटोनियो गुटेरेस जब से इंटरनेशनल सोशलिस्ट में थे, वे हमेशा से अच्छी सलाह देते रहे हैं। निज गए थे तो वे ही पहले व्यक्ति रहे जो मिलने आए, और उनसे मांग की गई तो उन्होंने श्री टॉड का नाम लिया जो सड़क दुर्घटनाओं के सिलसिले में सहायता प्रदान कर रहे
3: हैं।
1: इस मुलाकात से एक बार फिर से मॉरिशस और राष्ट्रसंघ के बीच घनिष्ठ संबंधों की झलक मिलती है, मुख्य रूप से एक ऐसी अवधि में जब विश्व की बड़ी बड़ी चुनौतियों के चलते अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।
0: खबरों को हम जारी रखते हैं। नैरोबी में आज एक बिजनेस फोरम लगाया गया जिसके तहत जिनियो वित्त मंत्री धनेश्वर डामरी ने एक राउंड टेबल की अध्यक्षता संभाली। इसमें 2000 से ज़्यादा निवेशकों और व्यापारिक ऑपरेटरों ने भाग लिया। मॉरिशस डेलीगेशन में शामिल मॉरिशस निजी से 50 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने इस कार्य सत्र में भाग लिया। विश्व बैंक की सदस्य संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मॉरिशस पर्यटन पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में पर्यटन क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। पर्यटन सेक्टर की स्थिरता और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए मध्यम और दीर्घकालीन कदमों की सिफारिश पेश की गई। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं के समन्वय के वास्ते एक क्लाइमेट रेजिलिएंट टूरिज्म टास्क फोर्स की स्थापना का प्रस्ताव भी दिया गया।

0: हिंद महासागर से जुड़े
1: खबरों को हम जारी रखते हैं। नई दिल्ली में 7 और 8 मई को बदलती दुनिया में हिंद महासागरीय क्षेत्र विषय पर 10वां इंडियन ओशन डायलॉग का आयोजन किया गया। इसमें मॉरिशस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री रितेश रामफल ने किया। इस उच्च स्तरीय बैठक का उद्देश्य हिंद महासागर इलाके में महत्वपूर्ण विकास और बदलाव तथा उभरती चुनौतियों पर चर्चा करना रहा। क्लोदेट जोफा, यचना मिश्रा।
0: हिंद महासागर से जुड़े देशों के बीच यह संवाद भारत की महासागर विजन से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र का निर्माण करना है। समुद्री सुरक्षा चर्चा के केंद्र में रही, क्योंकि हिंद महासागर वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ये क्षेत्र समुद्री डकैती, अवैध मछली मार और गैर कानूनी तस्करी जैसी लगातार बनी रहने वाली चुनौतियों का भी सामना कर रहा है, जिनसे निपटने के लिए समन्वित बहुपक्षीय प्रयासों की आवश्यकता है।
2: In today's uncertain geopolitical environment,
0: भू राजनीतिक स्थिति के चलते आपूर्ति और वितरण प्रणालियां खतरे में हैं। ऐसे में हिंद महासागर का महत्व बढ़ गया है। यहां के देशों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, सहयोग मजबूत करना चाहिए।
2: Lies the Indian Ocean, whose growing vulnerability only reinforces its strategic importance.
3: Mauritius was again privileged in 2025 when Sri Narendra Modi
0: 2025 में अपने मॉरिशस दौरे के तहत श्री नरेंद्र मोदी ने सागर विजन को विकसित कर महासागर की शुरुआत की। ये प्रोग्राम हिंद महासागर से परे दक्षिणी हिस्से में भी समुद्री संरक्षण को ठोस करता है। ब्लू इकोनॉमी, व्यापार और निवेश तथा प्रकोपों के संचालन पर भी चर्चा हुई। तटीय देशों ने यह स्वीकार किया कि समुद्री संसाधनों का सतत प्रबंधन एक बड़े आर्थिक अवसर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अभी तक पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाया है।
1: उम्का फाउंडेशन के खिलाफ शिकायतें बढ़ रही हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने फिलहाल पूर्व मरीजों या उनके परिजनों की तरफ से कम 6 शिकायतों पर कार्रवाई कर रहा है। जहां एक तरफ ये जांच चल रही है, वहीं साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी अपनी तरफ से जानकारियां इकट्ठा कर रहा है। इस मामले में उम्का के प्रमुख का कहना है कि वे अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए तैयार है। वर्तमान में तैयार की जा रही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा स्ट्रैटेजी 2026-2030 का उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के 10 सालों की कार्य योजना के अनुरूप अगले 230 तक सड़क हादसों में मृत्यु और गंभीरताओं में 50% तक की कमी लाना। आज लगी एक परामर्श कार्यशाला के दौरान परिवहन मंत्री उस्मान महमूद ने सड़कों पर जिम्मेदार और सुरक्षित व्यवहार प्रोत्साहित करने में शिक्षा के महत्व पर बल दिया। इस महीने से देश की पूर्व प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में सड़क सुरक्षा सिद्धांत सिखाने के लिए 6,000 से ज्यादा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। देश में बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरों से सुरक्षित रखने के मकसद से मॉरिशस टेलीकॉम ने आज माइटी प्रोटेक्ट पेरेंटल कंट्रोल सेवा की लॉन्चिंग की। इसके अंतर्गत युवाओं को इंटरनेट और स्क्रीन के इस्तेमाल के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दिया जाएगा। ये पहल बढ़ते ऑनलाइन खतरों को लेकर माता पिता की बढ़ती चिंताएं दूर करने का उद्देश्य भी रखती है। और चलिए अब एक नए डिजिटल उपकरण पर बात करते हैं, जिसके माध्यम से एकता इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों को बेहतर कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। कालीतेनेट नामक इस नई सेवा के जरिए एकता इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त कर सकेगी और ऑपरेटरों को नियमबद्ध भी किया जा सकेगा। एबेन में आज इस प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग की गई।
0: अपनी इंटरनेट स्पीड जांचिए ताकि आप अपने कनेक्शन की गुणवत्ता का आकलन कर सके। क्या कुछ वेबसाइट कुछ डाउनलोड करने के लिए सामान्य से अधिक समय ले रहे हैं? क्या ऑपरेटर अपने वादों पर खरा उतर रहे हैं या नहीं? इसके लिए पहले से ही ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं, लेकिन कालीते नेट प्लेटफॉर्म पर परिणाम सीधे ICTA को भेजे जाते हैं।

0: हम ऑपरेटरों के साथ इस पर काम कर पाएंगे। तीन लाख छप्पन हजार घरों के इंटरनेट से जुड़े होने और 10 लाख से अधिक मोबाइल उपयोगकर्ताओं के साथ ये टूल डिजिटल परिदृश्य में बड़ा बदलाव ला रहा है। ये उपभोक्ताओं को अधिक अधिकार देता है।
1: La vision pour Maurice, c'est pour nous faire nous pays vivre un regional leader dans AI.
0: हम मॉरिशस को एआई में एक इलाकाई लीडर के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। एआई के साथ नेटवर्क पर दबाव बढ़ रहा है। हम ढांचों को ठोस बनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट प्रोग्राम, ब्लूप्रिंट और एआई स्ट्रेटेजी के अनुकूल हम नेट की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं। आईसीटीए ने आश्वासन दिया है कि एकत्र डेटा पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे। इस लॉन्च के दौरान ऑपरेटरों को भी इस टूल से परिचित कराया गया। अब उनके नेटवर्क के प्रदर्शन पर नियामक अधिकारियों की कड़ी नजर रहेगी।
2: विदेश में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया। ज्योतिर्लिंग अभिषेक के साथ साथ इस विशेष अवसर पर उन्होंने एक कमेमोरेटिव डाक टिकट और एक सिक्के की लॉन्चिंग की।
3: गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। संरक्षण के बाद मंदिर को नया स्वरूप दिया गया। इसकी 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेकर वहां अभिषेक पूजा की। इस विशेष कुंभ अभिषेक के लिए भारत के 11 पवित्र तीर्थ स्थलों से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया गया। इसके साथ ही मंदिर के प्रांगण में धर्मध्वज फहराया गया। इस अमृत महोत्सव के लिए सोमनाथ मंदिर को विशेष रूप से फूलों से सजाया गया। हेलीकॉप्टर द्वारा आकाश से पुष्प भी बरसाए गए। इस खास मौके के लिए मोदी जी ने इस मंदिर के चित्र का एक कमेमोरेटिव डाक टिकट और एक सिक्के की लॉन्चिंग की। सोमनाथ की समृद्ध विरासत मनाने का ये माध्यम रहा।
4: 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारतीय स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था।
3: मोदी जी ने अपने संदेश में कहा कि सोमनाथ मंदिर का संरक्षण भारतीय इतिहास और धरोहर को सुरक्षित रखने की कोशिश दर्शाता है।
2: और कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बीच हैदराबाद में लगे एकजुटाव के दौरान मोदी जी ने भारतीय जनता से एकजुट होकर प्रयास करने की मांग की। उन्होंने लोगों से ईंधन की बचत करने का भी आग्रह किया।
3: जहां मध्य पूर्व का संकट दुनिया भर को प्रभावित कर रहा है, वहीं भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को ऐसे कठिन समय में एकजुटता का सबूत देने की मांग की। उन्होंने समस्त जनता से संयुक्त रूप से विशेष कोशिश करने का आग्रह किया, जिससे भारत वैश्विक अस्थिरता के समय मजबूत खड़ा रह सके और इन्फ्लेशन का सामना कर सके। उन्होंने जनता से ईंधन का इस्तेमाल घटाने की मांग की।
4: हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना।
3: भारतीय प्रधानमंत्री ने साथ ही मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सोने की खरीद से बचने की मांग की, जो सीधे विदेशी पूंजी प्रवाह पर असर करता है।
4: हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है।
3: मोदी जी ने कहा कि भारत को मजबूत रखने में जनता सबसे बड़ी भूमिका

0: निभाती हैं।
1: विवरण अदिति अवतार का रहा। एक बार फिर हम लौटते हैं स्थानीय खबरों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत में हम इसकी चर्चा कर रहे थे, वर्तमान में तैयार की जा रही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा स्ट्रैटेजी 2026-2030 का उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के 10 सालों की कार्य योजना के अनुरूप अगले 2030 तक सड़क हादसों में मृत्यु और गंभीरताओं में 50% तक की कमी लाना। आज एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर परिवहन मंत्री उस्मान महमूद ने सड़कों पर जिम्मेदार और सुरक्षित व्यवहार प्रोत्साहित करने में शिक्षा के महत्व पर बल दिया। चलिए माधवी जागरनाथ की रिपोर्ट पर सुनते हैं याचना मिश्रा को।
2: सड़क सुरक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी हुई है। मुख्य रूप से रोज हमारी सड़कों पर 7,40,000 से अधिक वाहनों के चलती। इसके मद्देनजर 2026-2030 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा स्ट्रेटेजी की तैयारी चल रही है। सप्ताह की शुरुआत में रिजवी में आयोजित एक परामर्श कार्यशाला के दौरान कई पार्टनर जुटे हुए थे। इस दस्तावेज के तहत पूर्व प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में शिक्षा की अहमियत पर जोर दिया गया। गृह मंत्रालय के कम्युनिकेशन ऑफिसर सरीना रामसरन ने कहा, पूर्व प्राथमिक कक्षा से सड़क सुरक्षा के बारे में सिखाना शुरू कर रही है। इसकी शुरुआत में ही हम अध्यापकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पूर्व प्राथमिक के करीब 2,500 अध्यापक रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में सिखा पाएंगे। बाद में संबंधित सामान भी विकसित किए जाएंगे, साथ में माध्यमिक स्तर के लिए कार्य कर रहे हैं। DOR तैयार है, अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंसी की मांग कर रही है। परिवहन मंत्री उस्मान महमूद ने कहा कि इस नई राष्ट्रीय स्ट्रेटेजी का मकसद है देश को राष्ट्र संघ के डिकेड ऑफ एक्शन के अनुकूल लाना। इसी उद्देश्य के साथ कि 2030 तक मृत्यु और गंभीर चोटों की संख्या 50% से घटे। उन्होंने कहा, लोगों के सोचने के ढंग की बात कर रही है, संस्कृति बदलने की बात कर रही है। शिक्षा महत्वपूर्ण है, चाहे कितने भी अच्छे कानून लाएं, कानून का पालन न करवाए जाए और लोगों के सोचने के ढंग को न बदलें तो कुछ खास नहीं किया जा सकता है। ख्याल रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो उसकी सुरक्षा हो और सड़क का इस्तेमाल करने वाले अन्य लोगों की भी सुरक्षा हो, खतरा न हो, न उसके लिए और न अन्यों के लिए। मॉरिशस विश्वविद्यालय इस दस्तावेज की तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये सड़क सुरक्षा के नेशनल ऑब्जर्वेटरी के लिए भी जिम्मेदार है। इसके प्रो वाइस चांसलर अकादेमिया के प्रोफेसर पोनादुरई रामासामी ने कहा, मॉरिशस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी अपने फाइनल ईयर में अपनी परियोजना पेश करते हैं। PhD के विद्यार्थी भी हैं, साथ ही रिसर्च अफसर भी रोड सेफ्टी से संबंधित प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इस नई नेशनल रोड सेफ्टी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत मूल ढांचे में सुधार लाए जाएंगे और फैसला लेते वक्त टेक्नोलॉजी और नवाचार को भी ध्यान में रखा जाएगा।
1: विवरण रजनी भिकर का रहा। और अब मौसम का हाल। हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं और अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान रात को मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा, सिवाय देश के पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर बादल कुछ घिर आएंगे और हल्की वर्षा होगी। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। दक्षिणी समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से दूर समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 23 से 25। साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 24, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय कल सुबह 6:30 बजे।

6:24 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक फैजान को धन्यवाद देते हैं, साथ में

0: पूरा समाचार विभाग को भी कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

भुजुलेन पायुत कठोबोन में, भुजुलेन पायुत कठोबोन में 72 साल की 72 years old श्री भानुदत्त भतु, श्री भानुदत्त भतु जिन्हें लोग आनंद भतु नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ है कल दिन के दो बजे इनके मकान भुजुलेन पायुत कठोबोन से उठाकर थामा मेर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। रेलवे रोड केवल नगर बैरिव में 84 साल की 84 years old श्रीमती बसंती भागीरथी, श्रीमती बसंती भागीरथी पैदाशी नाम तुकाई और जिन्हें लोग संता नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के एक बजे इनके बेटे धीरज भागीरथी के मकान रेलवे रोड केवल नगर बैरिव से उठाकर ओलिविया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। नंबर 82 रॉयल रोड पायुत कठोबोन में 93 साल के 93 years old श्री हीरामन अनूप जिन्हें लोग जगदेव नाम से भी जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ है कल सुबह 10 बजे इनके मकान नंबर 82 रॉयल रोड पायुत कठोबोन से उठाकर बालों सुल्फेरिनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शिवाला रेलवे रोड मोताई ब्लांश में 69 साल की 69 years old श्रीमती पारो सिवनुत पैदाशी नाम सुभा और जिन्हें लोग पारो नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के दो बजे इनके पति धनराज सिवनुत के मकान शिवाला रेलवे रोड मोताई ब्लांश से उठाकर मोताई ब्लांश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। रामलोल स्ट्रीट कोंकारोल रिविया दे क्रेओल में 70 साल की 70 years old श्रीमती सुमित बना पैदाशी नाम लद्रू और जिन्हें लोग सरोज नाम से भी जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे इनके पति किसुन बना के मकान रामलोल स्ट्रीट कोंकारोल रिविया दे क्रेओल से उठाकर टोंबोलेन मेबग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। नंबर 4 जॉर्ज विक्टोर केवेन पोर्टली समय 69 साल के 69 years old श्री जयन कुमार फूलबोसिया जिन्हें लोग जयन नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। वे पहले कालीमाइकासी के अध्यक्ष थे। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान नंबर 4 रोज विक्टो कावेन पोर्टलिस से उठाकर ले सालीन किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। और रॉयल रोड लाल माटी में 72 साल के 72 years old श्री सच्चिदानंद रामास्वामी जिन्हें लोग सत्यानंद कोंथाकतिया नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी पत्नी मनीता रामास्वामी के मकान रॉयल रोड लाल माटी से उठाकर मेजिन कौदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 11 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: नहीं सो। सोमवार 11 मई रेडियो मनोरंजन पर आप सभी लिसनर्स का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है या नई सोच इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। अभी से लेकर रात के 9 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। तो चलिए, आज का दिन आप सभी के लिए कैसे बीता बताइएगा ज़रूर, हमें यकीन है अच्छे से बीता होगा। और अभी अभी अगर घर लौटे हैं, या बहुत से लोग शाम को नाइट शिफ्ट करते हैं, मतलब कि रात में काम करने जाते हैं, जहाँ से भी जैसे भी हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो सो मच आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए नई सोच इस प्रोग्राम में, ये जो चलने वाला है 7 बजे तक, और 7 से 9 बजे के बीच जो है हम आपके लिए चलाएँगे दिलों की आवाज़। तो जुड़े रहिएगा अभी से लेकर रात के 9 बजे तक हमारे साथ ऑन रेडियो मनोरंजन। तो चलिए नई सोच प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अमृत फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज जी की आवाजों में।

जी हाँ, कभी कभार अपने भीतर बहुत कुछ भरा होता है। कभी कहने को हम चाहते हैं पर लगता है कि सुनने वाला नहीं है। कभी बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं मिलते। और कभी कभी लगता है कि बोलकर करे भी क्या। इसलिए कुछ बातें अंदर ही रहने नहीं चाहिए, उनके सामने कहे जो हमें समझते हैं। है ना वो जिसने हमें ये जीवन दिया है, है ना वो जो हमें रास्ता दिखाता है, है ना जब हम भटक जाते हैं तो हमें सहारा देते हैं, वो भगवान, वो ईश्वर, फिर चाहे जिस भी नाम से उन्हें पुकारे। सब छोड़ जाते हैं लेकिन वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते।

0: नई सोच
1: चलिए नई सोचिए जो प्रोग्राम है इसमें आप हमारा साथ दे रहे हैं और इसमें हमारी कोशिश होती है कुछ ऐसे गाने हम चलाएं जो ज़िंदगी से जुड़े हो, जो ज़िंदगी की हकीकत को बयां करे। कभी कभार ऐसा होता है ना कि जीवन के इस चकाचौंध में हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने एहसासों को भूल जाते हैं, अपने जज्बातों को भूल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो पीछे छूटती जाती है और ज़िंदगी की इस दौड़ में हम आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें भी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। छोटे छोटे एहसास, छोटे छोटे जज्बात, किसी के लिए मन में कोई अच्छी बात, ये सारी बातें जीवन में होना भी बहुत ज़रूरी होती है। ये हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम का एहसास दिलाती है, एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट होता है उसका याद दिलाती है, किस तरह से कोई बिना वजह ही हमारी मदद करता है, हमारा साथ देता है। इन सभी बातों पर तब हम जाकर गौर करते हैं। तो बहुत ज़रूरी होती है ये छोटी छोटी बातें जो हमें एहसास दिलाती हैं कि ज़िंदगी अपने आप में कितनी खूबसूरत है, और कुछ लोग इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। जैसे कि अभी आप सभी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और आपका साथ इस प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बना रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए नई सोच के इस आखिरी गाने की ओर हम बढ़ेंगे और इसी के साथ नई सोच ये जो प्रोग्राम है ख़त्म होने को चला, लेकिन हमारा और आपका जो साथ है वो बना रहेगा रात के 9 बजे तक ऑन रेडियो मनोरंजन। 7 बजे से शुरुआत होगी दिलों की आवाज़ की। नॉट टू फॉरगेट, आप अपने डेडिकेशन हम तक पहुँचा सकते हैं 5250-6200 पर। साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ऑन 4028070 पर। थोड़ी देर में हम हमारे टिकटॉक पर लाइव भी होंगे, तो वहां पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
0: You're listening to RM3 Radio Man.

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं ऑन रेडियो मनोरंजन। घड़ी मिला लीजिए, शाम के 7 बज रहे हैं और यहाँ से दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है। और आज है मंडे 11th ऑफ मई। देखते ही देखते मई महीने के 10 दिन निकल चुके हैं, 11वां दिन निकलने को है। समय मानो इतनी तेज़ी से दौड़ रहा है, कभी कभार डर लगता है ना कि कहीं समय के इस दौड़ में हम पीछे न रह जाए। तो चलिए, साथ जुड़ चुके हैं, साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ से दिलों की आवाज़ प्रोग्राम की शुरुआत होती है। प्रोग्राम जो है चलेगा रात के 9 बजे तक। आपके डेडिकेशंस हम इंक्लूड करेंगे और यहाँ पर आपको पता ही है 80s, 90s, 2000 के गाने चलते हैं, मिलेनियल के गाने चलते हैं। तो कोई गाना किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं ऑन रेडियो मनोरंजन। और हमारा टिकटॉक पेज भी है रेडियो मनोरंजन का, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पर थोड़ी देर में हम लाइव भी होंगे, सो नॉट टू फॉरगेट। हमारा साथ देते रहिए रात के 9 बजे तक ऑन रेडियो मनोरंजन, इन योर दिलों की आवाज़ विद सुमी।
2: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: चले बेशक आपकी दिल की आवाज़ को हम सुन रहे हैं, आपकी धड़कनों को सुन रहे हैं, आपके डेडिकेशंस के ज़रिए, आपके फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, आपके मैसेजेस के ज़रिए, और यहाँ पर खूबसूरत गाने तराने आपके एंटरटेनमेंट, आपके मनोरंजन के लिए हम चला रहे हैं, इस शाम को यादगार बना रहे हैं, और दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में जहाँ कहीं से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच।
1: की आवाज़
0: और बहुत बहुत शुक्रिया 5250-6200 पर बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर आपके आ रहे हैं। चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। बाकवा से सुदेवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और चलिए सुदेवी जी अगला गाना आपके नाम, आपकी दीदी लालिता के नाम, सभी कुशल फैमिलीज के लिए, वंश वैभव, दादी सुनीता, निया, वीर मालिंगा से इस समय ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यही गाना सभी रामरतन फैमिलीज के नाम भी हम करते हैं। दिल तेरा आशिक फिल्म का ये टाइटल ट्रैक है। आपकी ओर से सभी सुनने वालों के नाम भी ये गाना बस यहाँ पर चलने को है, और ये गाना यहाँ पर आपकी ओर से हमारी पूरी टीम के लिए भी थैंक यू सो सो मच। कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में दिल तेरा शेख है।

0: दिलों की आवाज।
1: ऐसा है कि जिंदगी में कभी कभार हम कुछ ज्यादा ही सोचते हैं और कभी कभी ऐसी बातें भी सोच लेते हैं जो शायद हकीकत में होती भी नहीं है और बिना वजह अपने आप को परेशान करते हैं। इसलिए कभी कभार चीज़ें जो है हालात पर छोड़ देना चाहिए, जो जैसे है जैसे चल रहा है वैसे छोड़ देना चाहिए। समय के साथ सभी चीज़ों का जो है हल निकल ही आता है। चलिए इस समय जितने भी हमारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे टिकटॉक पेज पर भी हम लाइव है तो आप वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने डेडिकेशंस हम तक पहुँचा सकते हैं। और यहाँ पर अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। खुददार फिल्म का ये जो अगला तराना है कुमार सानू और अलका जी की आवाज़ों में जाता है। यहाँ पर गिरीश आपके नाम, गिरीश हरलोल जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुमार सानू जी की आवाज़ में ये गाना वो सुनना चाहते हैं। तो ये गाना आपके लिए गिरीश जी और सभी हरलोल फैमिलीज़ के लिए।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: चले देखते ही देखते शाम के 7:38 ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं। दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में आप साथ दे रहे हैं। अगला गाना हिना फिल्म का ये तराना है, लता जी की आवाज़ में गाना जाता है स्वेनल आपके नाम। आपकी ओर से गाना भाई श्रवण के लिए, भाभी कृति के लिए, अभिनव, किया, नव्या, सभी तिलक फैमिलीज के नाम, हमारे सभी आरजेस के लिए थैंक यू सो सो मच। और जितने भी हमारे टिकटॉक के फॉलोअर्स हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये गाना आप सभी के नाम भी चल पड़ा। चलिए आप सभी के दिन भर की जो थकावट है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी परेशानी है, सब दूर हो जाए और ये जो पल है बहुत ही मेमोरेबल हो, ऐसी उम्मीद हम करते हैं।

0: चलिए खूबसूरत गीतों का सिलसिला यहाँ पर जारी है ऑन रेडियो मनोरंजन दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में। श्रिया बिकू आज 16th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, तो श्रिया आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, खासकर आपके अंकल प्रदीप की ओर से और पूरे बिकू फैमिलीज की ओर से। और ये जो अगला तराना चलने वाला है ये हमारे टिकटॉक के सभी फॉलोअर्स के नाम जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, परी है, रक्ष है, शवि है, फिर यश है, दिव्या दर्शनी, ये अगला गाना आपके नाम भी। जबीन जी शुक्रिया साथ देने के लिए, संध्या जी भी हमारा साथ दे रही है, प्रदीप जी ये गाना आपके लिए भी हम करते हैं, इशिका थैंक यू सो सो मच हमारा साथ देने के लिए, एक यश जो है मॉरिशस से जुड़े हैं, एक यश जो है इंग्लैंड से साथ दे रहे हैं, और हर्षा ये गाना आपके लिए भी। जालिम फिल्म का ये तराना है अलका याग्निक और विनोद राठौड़ जी की आवाज़ों में। दिनेश गोपी जी हेलो आपको भी और शुक्रिया साथ देने के लिए। और चलिए गाना आप सभी के लिए चल पड़ा।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज़।
1: चलिए देखते ही देखते यहाँ पर रात के 7:52 ऑलरेडी हो चुके हैं। बहुत सारे लोग इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है, फिर चाहे वो रेडियो के जरिए हो या हमारे टिकटॉक के पेज के जरिए हो, और इस समय डिनर करते करते अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप सभी को बिना पीछी शुभ आहार हम कहेंगे। और यहाँ पर माहिन जी बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या सिलेक्शन है, बहुत खूब, बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, गानों को पसंद करने के लिए। इंडीड गाने हैं ही ऐसे, क्योंकि बहुत सारे गानों से बहुत से लोगों की यादें जुड़ी होती है। और यहाँ पर कौन सा गाना किसके दिल के करीब है ये तो आप ही जानते हैं। ऐसे में जो अगला तराना है, आप सभी लवली लिसनर्स और लवली फॉलोअर्स के नाम हम करते हैं, और जितने भी 90s के गानों के फैंस हैं, ये गाना उन सभी के लिए भी हम करते हैं। यार यहाँ पर नुश जी, ये गाना आपके लिए भी हम चलाएंगे, और प्यार हो गया फिल्म से लिया गया। दिवासना जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। शेन, इस गाने को हम आपके नाम भी करते हैं। खेमराज जी, आपके भी प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीपाली जी, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। और चलिए नॉट टू फॉरगेट, टिकटॉक के साथ साथ आप हमें जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 5250-6200 पर, साथ ही 4028070 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अभी के लिए और प्यार हो गया फिल्म का ये गाना उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: चलिए दिलों की आवाज के इस सेकंड आवर में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम हम करते हैं। रात के 8:03 यहाँ पर होने को है। दिलों की आवाज प्रोग्राम ये जो है जारी है और रेडियो मनोरंजन और आपका साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला गाना सूरज जी आपके नाम हम करते हैं, आपके बेटे निशाल के लिए, सभी रेडियो मनोरंजन टीम के लिए, रेडियो मस्ती टीम के लिए थैंक यू सो मच। सभी सजादा फैमिलीज के नाम ये गाना हम बस चलाने ही वाले हैं। माला जरी जी आपके प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। और दीवाना फिल्म का ये गाना यहाँ पर किसी ने हमसे रिक्वेस्ट किया था, हमारे टिकटॉक के एक फॉलोअर ने, तो आपके नाम हम करते हैं। दीवाना फिल्म का ये गाना सभी दहाल फैमिली के नाम। ऑल राइट, हेलो मीरू जी, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो लालचंद जी, यही गाना संजू जी आपके लिए भी। माधुरी जी आपको भी हम नहीं भूले हैं। प्रेमा गोकुल जी थैंक यू सो मच, ये गाना आपके नाम भी हम करते हैं। शिवानी जी, रेश है यहाँ पर, और यहाँ पर यही गाना प्रकाश जी आपके लिए भी हम चलाएंगे। और यही गाना जाता है युवान के नाम, बेटी येशना के नाम, देवीना पूरन जी की ओर से, और साथ ही उनके हस्बैंड के लिए। अपने सबका नाम तो लिखा लेकिन अपने हस्बैंड का नाम लिखना भूल गई। असलम अंसारी जी, ये गाना आपके लिए भी हम करते हैं। प्रकाश जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो किरण जी, तो चलिए दीवाना फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना कुमार सानू जी की आवाज़ में आप सभी के लिए। हाय ए जी, ये गाना आपके लिए भी। आरती जी शुक्रिया साथ देने के लिए। थैंक यू विक, ये गाना आपके लिए भी चल पड़ा।

चलिए इस समय शोना हमारे साथ जुड़ी हुई है और ये गाना आपकी मामा करुणा के नाम हम करते हैं और यहाँ पर गानों को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और टिकटॉक

का लाइव जो है हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था और यहाँ पर फिर से जुड़ चुका है। तो चलिए परी जी ये गाना आपके नाम, राजीव जी ये गाना आपके नाम, और यहाँ पर चांदनी फिल्म का ये तराना चल पड़ा है। ऋषि कपूर और श्रीदेवी जी पर पिक्चराइज ये गाना किसी ने रिक्वेस्ट किया था, तो चलिए आपकी फरमाइश पर ये गाना आप सभी के लिए।

0: ये सुनते सुनते मानो हम एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही जहां में पहुंच जाते हैं। कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, इन गानों को सुनते सुनते जो है मानो ये परेशानी दूर होने लगती है। म्यूज़िक का यही तो जादू होता है और हर एक मूड के लिए कोई ना कोई गाना ज़रूर बना होता है, है ना। तो चलिए यहाँ पर आपके मैसेजेस यहाँ पर हमें टिकटॉक पर भी मिल रहे हैं और साथ ही यहाँ पर आपके मैसेजेस हमें यहाँ पर व्हाट्सएप पर भी मिल रहे हैं। तो बादवाग विदेशी जी इस समय हमारा साथ दे रहे हैं तायाक से। अगला रोमांटिक सा तराना स्वीट हार्ट अनुष्का खेदन के नाम, जो मोहताबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है। जया जी, ये गाना आपके लिए भी हम करेंगे। ऑल राइट। और यही गाना प्रिया लक्ष्मण जी आपके हस्बैंड के नाम, आपकी बेटियों के नाम, आपके दामाद के नाम और सभी सभी लक्ष्मण फैमिलीज के नाम इस गाने को हम करते हैं। अभी थैंक यू सो मच। हेलो सरिता जी, यही गाना आपके लिए भी चल पड़ा। और रवीना और सलमान पर पिक्चराइज जया जी, ये जो गाना है आपके लिए हम चला रहे हैं। और यहाँ पर ये फिल्म का ये जो गाना है, उन सभी के नाम भी जो इस गाने को पसंद करते हैं। हेलो रीता जी, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो शारदा जी, कैसी है आप?
1: रेडियो रेडियो रेडियो
0: तो चलिए पत्थर के फूल फिल्म का ये गाना चल पड़ा है। लीला जी, ये गाना आपके नाम भी हम करते हैं। बेलरोज से आप हमारा साथ दे रही हैं। प्रिया लक्ष्मण जी मोस्ट वेलकम। शर्मिला जी हेलो, कैसी है आप?

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की
1: आवाज चलिए अपने दिल की आवाज हम तक पहुंचाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस के जरिए यकीनन लगता है ना कभी-कभार कोई तो हो जो हमारी भी दिल की बात सुने या कभी-कभार ऐसा लगता है ना कि कोई हो जो बिना कहे ही हमारी हर एक बात को समझ जाए और चलिए अभी के लिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे तारे जमीन पर फिल्म का ये जो तराना है जेसिका आपके नाम जाता है और टिकटॉक पर बहुत सारे फॉलोअर्स जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं उन्होंने इस गाने की रिक्वेस्ट की है ऐसे कल बहुत से जगहों पर मदर्स डे मनाया गया मॉरिशस में ऐसे मई महीने की अंतिम रविवार को मनाया जाता है मदर्स डे सो बहुत से लोग इसकी तैयारियों में लगे होंगे ऐसे माओं के लिए कोई एक दिन खास नहीं होता है हर एक दिन

आसी है क्योंकि हर एक के लिए उनकी माँ उनके दिल के बहुत करीब होती है ना। तो चलिए ऐसे में अगला गाना आप सभी के नाम तारे ज़मीन फिल्म का, तारे ज़मीन पर फिल्म का ये तराना शंकर महादेवन जी और साथियों की आवाज़ों में।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. चलिए दिल का क्या कसूर फिल्म का ये गाना चल पड़ा है. इसका टाइटल ट्रैक जय, ये गाना आपके नाम. परी, ये गाना आपके लिए. माधुरी जी, आपको भी हम नहीं भूले हैं और एक के बाद एक हमारे फॉलोअर्स जो है हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं. ऐसे में ये लवली सा तराना आप सभी के नाम यहाँ पर. जेसिका जी, आपने कहा था अपनी मामा का नाम ऐड करने के लिए, तो गाना आपकी मामा के नाम भी हम करेंगे.

0: दिलों की आवाज की
1: आवाज। चलिए दिलों की आवाज यहाँ पर खूबसूरत गानों का सिलसिला जो है जारी है और अगला तराना इम्तिहान फिल्म का ये गीत है चाहा तो बहुत गाना जाता है। अनीता जी आपके नाम फ्लिक ऑफ लक से हमारा साथ दे रही है, कह रही कि बहुत प्यारे प्यारे गाने आज यहाँ चल रहे हैं। इंडीड हर रोज़ ही यहाँ पर जो भी आता है जो भी काम करता है सभी जो है आपके एंटरटेनमेंट के लिए अच्छे अच्छे गाने चलाते ही हैं। सो अगला गाना आपके नाम अनीता जी, आपकी पूरी फैमिली के लिए, सभी रेडियो मनोरंजन टीम के लिए, थैंक यू वेरी मच। और यही गाना विक्रम जी आपके नाम, स्वीटीना जी आपके नाम भी हम करते हैं, सनी आपके लिए भी ये गाना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतोष जी जो गाना आपने रिक्वेस्ट किया है उसे हम चलाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे मौका मिला तो। अभी के लिए इम्तिहान फिल्म का ये गाना आपके लिए बस चलने ही वाला है। निधीश यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे टुडे, सो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। अमृता जी थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। तो चलिए इम्तिहान फिल्म का ये गाना आप सभी के लिए एक बार फिर कुमार सानू जी की आवाज़ में और उनके साथ है बेला सुलाखे।

यकीनन ये जो चाहतों का सिलसिला है यहाँ पर 9 बजे तक जारी रहने वाला है और अगला जो तराना है शोले फिल्म का ये गाना होगा ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे सुनील जी आपके नाम सनी जी यही गाना आपके नाम भी हम करते हैं किरण जी थैंक यू सो मच गानों को पसंद करने के लिए हेलो प्रीति थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए दीप्ति जी अगला गाना आपके सभी लवली फ्रेंड्स के नाम और हमारी पूरी टीम के लिए थैंक यू सो सो मच परी जी आमने सामने हम जरूर मिलेंगे मौका मिलेगा तो और ये गाना आपके लिए भी हम करते हैं थैंक यू रॉय हमारे लाइफ को लाइक करने के लिए शेयर करने के लिए

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: चलिए मानो अभी अभी दिलों की आवाज़ इस सफ़र की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते जो है ये हमारे जाने का टाइम भी होने को चला और जाते जाते आप सभी लिसनर्स का दिल से शुक्रिया हम करते हैं।

हमारे तमाम फॉलोअर्स का जो टिकटॉक के ज़रिए हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे तमाम लिसनर्स जो रेडियो के ज़रिए हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे हमारे जो सुनने वाले हैं वो MBC प्ले इस ऐप के ज़रिए भी हमारा साथ देते हैं, तो आप सभी का शुक्रिया। कलाकार फिल्म का ये गाना नीले नीले अंबर पर जाते जाते आप सभी के नाम हम करते हैं। जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी, ऐसे ही रेडियो मनोरंजन पर जुड़े रहिए, हमारा साथ देते रहिए। 9 बजे से जो है रेडियो मॉरिशस से सीधा प्रोग्राम आप यहाँ पर सुन पाएंगे। तो अगली मुलाकात तक के लिए हमारी ओर से नमस्कार आप सभी को, गुड नाइट।

0: घड़ी मिला ला वक्त रात के ठीक 9 बजे बात तू सुनो तो रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस और प्रस्तुत बात तो हर पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का
1: 7 डेज अ वीक 24 आवर्स अ डे दिस इज रेडियो मॉरिशस
2: कंटीन्यूअस म्यूजिक ऑल एम फ्री
3: भोजपुरी तड़का तोहर जीवन में स्वाद आने खातिर
4: गमन जलसा हंगामा
5: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो गमन धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो
0: रात के 9:01 हुआ था आज लिंदी की रात लिंदी 11 मई 2026 सबको क्या आज प्रताप सिंह से तालुक की ओर से प्यार भरा नमस्ते वसलाम भोजपुरी तड़का कार्यक्रम अभी से लेके रात के 11 बजे लिए नाच गाना म्यूजिक धूम धड़ाका तलों के साथ और आशा करते हैं कि तलोक भी हमने के साथ दे वजह मन करता को भी भोजपुरी की सुने की था नंबर रोक मैया काज जगदेव जगवित साहब 402-8085 और जब हमने आया था गमत ही गमत होला तो लोग जाने ना सर बोले कि नहीं चेहला चलो सुनने जा ये पहल का गाना नीरज गुप मधु की आवाज़ में मोनिका टू ये चलाते से सब रेडियो मॉरिशस और सब रेडियो मनोरंजन के श्रोतालु के नाम

ऐसा लगा हुआ था कि धीरे धीरे तापमान में गिरावट आवा था, यानी कि धीरे धीरे हमने सर्दी के मौसम में जाते ही सा विंटर सीजन और सर्दी मौसम में सर्दी जुकाम खांसी से बच्चे का तेल चेहरा ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी वाला फल खाए के, जैसे कि कौन कौन फल है जिक्र में विटामिन सी बा, जोहोंस नारंगी जिक्र में विटामिन सी बा, लेमन नींबू इकड़ो चाय खाए के, फिर है गुआवा गुयाव आमला स्ट्रॉबेरी कीवी पपाई पाइनएप्पल आम अमरा और जब अमरा की बात करते हैं सर तो अमरा के कुछ हैं या अमरा के अचार बहुत अच्छा विटामिन सी भरल बैकर में और विटामिन सी लेबर तो सर्दी खांसी जुकाम से दूर रह बजा। चला भी अगला गीत सुनब जाए लाली लाली कान पर लाती मिराई में मकई संजय बिहारी गीत तोहर कहती रूप तोहर पत्नी सुरेखा बेटा कुशल बहू बेटी रिंकू दामाद और सब बिहारी परिवार के नाम है। गीत संगीता अमीरन की ओर से रीता सतालुच के नाम है। गीत लाली लाली कान पर लाती

लाली लाली कान पलाते मीरा ही में मकई हाँ तू भी तो लगे माटी के कोई टुकड़ा हुई तो कोनो ना कोनो चीज पलाते रही कहे के आगे दिन कामे आई दुनिया में दिखते ही सके से युद्ध हुआ था ना तो चेहरा खिजाली मौते से बच्चे कहते चेहरा कोनो ना कोनो चीज पलाते के पारिस नहीं करिया आलसी नहीं बनिया समय रही तो जरूर कुछ ना कुछ पलौते ताकि तोहरा तोहर लड़का लोग के मिली खाई की रात के 9:13 भोजपुरी तड़का प्रोग्राम अजय प्रताप सिंह के साथ रात के 11 बजे संगत यार अक्सर हमने के रास्ता पर सुननी रास्ता रेडियो टीवी पर सोशल मीडिया पर क्या एक्सीडेंट होते रहे रहा एगो कारण एक्सीडेंट के मोबाइल फोन के यूज़ कर ला जब ड्राइव करा था तब भी को लालवा निकल बा नियम निकल बा कि जो आदमी पोताब ड्राइव करा था पोताब सेवी करता है लापोली थोड़ा पकड़ लेते तो और लिसेंस अकेला छीन जाए और ढेर पर परी रामान पे ही करे कि तो चला जब ड्राइव करी रहा सर तो हमने के जो न ब्रेक लगाए के या ऑब्स्टेकल देखे के देरी हो जाला एक्सीडेंट के रिस्क बढ़े रहा कहे कि हमने एक हाथ में पोताब ले से एक हाथ में बोलो बा अब SMS करते ऐसा या कोई से बचाते ऐसा तो कंसंट्रेशन थोड़ा गड़बड़ा जाला जब तू टेलीफोन ही करते हुआ ड्राइव करते हुआ तो तू अपन जान डाले तो खतरा में और जितना पासाजे बा उकलो जान और जितना पदयात्री लोग चला था सीमा में वो लोगों की जान खतरे में बा और मोबाइल के यूज़ कर ला ड्राइविंग के समय ट्रैफिक रूल्स की वायोलेशन है सख्त से सख्त सजा मिली ला और मोबाइल यूज़ करते हुए ड्राइव करते तो मेंटल डिस्ट्रैक्शन भी होला सब कुछ कन्फ्यूजन में पड़ जाए और कंसंट्रेशन कम हो जाए सेफ रहे खातिर गाड़ी चलाते समय फ़ोन वहाँ अपन डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दिया या आपके तय कर दिया पोता वाकई ज़रूरी कॉल हो तो साथ में गाड़ी रोक के तब बात करिए नेविगेशन पहले सेट कर ला मैसेज के रिप्लाई करिए बाद में सबसे ज़रूरी है तो हर जान और जितना पासाजे की जान बा वो ज़रूरी है पोता में चाहे कितना भी कॉल आए जब तू ड्राइव करते हुआ तो कॉल ना लिया पोता वाकई साइलेंट मोड में डाल दिया या तय कर दिया इसी दुर्घटना से कब्जा बचे और अगला गीत माम जेलिया मीरा मोहन ग्यावल गीत है गीत सुहासिनी की ओर से चलावत तीसरे अगर घर वाला खातिर सुहासिनी की ओर से घर वाला को दुगो बेटा और सब परिवार खातिर चाची प्रभावती लोल रह नुबल फौसे गीत और खातिर चाचा आत्माराम है गीत और खातिर चली संजय हरिचंद गीत तोहर खातिर आप हन पीतों से पत्नी संध्या बेटी हविश का सब हरिचंद परिवार के लिए है गीत चलावती सब संगतियालो के नाम जो नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ सर माम जेलिया

जैसे जैसे हमने के उम्र बढ़ते जाला जैसे 30-40 साल हो जाला तो सब कोई के शरीर में कोनो न कोनो प्रकार के दर्द शुरू हो जाला कभो गोर में दर्द कभो हाथ में दर्द कभो कमर में दर्द कभो ठेवनी में तो इस सब दर्द से बचे खातिर कुछ यहाँ करे की रोज के चला कसरत करे की स्ट्रेचिंग करिया हर दिन 20 से 30 मिनट तक जइया मौस मौस से लामौस करिया हल्का एक्सरसाइज करिया स्ट्रेचिंग से मसल्स फ्लेक्सिबल रहेला और बॉडी स्टिफनेस कम होला बहुत देर तक एक ही पोजीशन में नहीं बैठिया और कुछ यूजफुल एक्सरसाइज है वॉकिंग योगा स्ट्रेचिंग और जब सेज में तू बैठबा तो सही पोस्चर में बैठिया या गाड़ी में बैठा लवा तो ऐसे स्ट्रेट बैठिया नहीं कि वैसे होके झुक के नहीं बैठिया सीधा बैठना और खड़ी रहना सीखिया लैपटॉप या मोबाइल यूज़ करते समय गर्दन झुका के ज़्यादा दर्द नहीं बैठती जब गर्दन थोड़ा झुका रहेगा तो गला में सकेला दर्द हो जाए वेट उठाते वक्त कमर से नहीं घुटनों के मोड़ के उठाइया और देखा था कि बबनगाज नहीं सकता अकेले में उठा हुई तो कोई से उठवा दिया कोई के पेये करके उठवा दिया और काशवा देखा था नहीं सकता वह सॉरी करे तो कोई के पेये करके कमा करा दिया कहे कि धरती उम्र के साथ साथ हमने के जितना हमने के जो हड्डी है वो कमज़ोर होला एक खातिर अगर तू देखा तो वह 40-50 साल हो गए नहीं सकते हुआ बबनगाज उठाए या भारी चीज़ उठाए तो कोई के पेये कर दिया ताकि थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हुई और दर्द से बच्चे खाती रोज के चार 7-8 घंटा अच्छा नींद में सुते के कैसे मसल्स रिकवर होला अगर तो हर मातला इजे हो गल बा तो मातलावा की बिक दिया कोई नवा मातला खरीद के ओकर में सुतिया जा और बॉडी की स्ट्रांग बनाए

खातिर चहला प्रोटीन खाए की जैसे कि दाल अंडा दूध पनीर अगर में प्रोटीन बा दूध दही और तिल के उपयोग करिया एकर में कैल्शियम बा और धूप और पोषक भोजन करिया जकर में विटामिन डी बा और शरीर के स्वस्थ रखे खातिर पानी पिया डिहाइड्रेशन से ही बचावे रहे थोड़ा शरीर की और शरीर में दर्द तब भी हो रहा जब स्ट्रेस से हुई बा तो स्ट्रेस कम करिए जब स्ट्रेस कम रही तो दर्द भी कम रही और जैसे बोलिए अगर तू अपन शरीर के अच्छी तरह से देखभाल कर बा तो उतना दर्द नहीं हो पाई दर्द वहाँ रहेला जैसे 40-50 साल हो जाला तो डॉक्टर लोग बोलेगा कि धीरे धीरे हमने की मसल्स हमने की हड्डी ईजी होला एक खातिर दर्द होला जैसे जैसे तो लाश बढ़ले जाए कहाँ तो सैकों तो सस हो तो स्वाभाविक बात है कि दर्द हो भी करी तो हमने बोली सर कौन कौन चीज चला करे कि ताकि दर्द वहाँ कम हो अभी सुनब जा बीजमावती संपत्ति गावल गीत गीत गवाई में चले की बाहर गीत चलावत ऐसा रतन निहाल की नाम रहे गाँव भी पत्नी करुणा पापा विजय और सब निहाल परिवार की नाम राज मन्ना जी है गीत और करी सब मन्ना परिवार खातिर और है ये गीत चली सुदेश जसवा की रसक माँ राजकुमारी जिमी दुखिया और सब दुखिया परिवार की नाम कभी दुखिया के जन्मदिन रहल कुन दिन तधे मना प्यार आशीर्वाद और पत्नी और बेटी और सब और दुखिया परिवार की ओर से थे माना प्यार और आशीर्वाद और जिस आपको क्या जन्मदिन पे था जन्मदिन मुबारक है गीत और नाम गीत गवाई में चले की बात चलोगे चंदा

संगतिया लोग अंग्रेजी में कहावत है माइंड योर ओन बिजनेस एक मतलब है कि जो चीज तुहरा नहीं कौन से नहीं करेगा उसमें पर नाक नहीं डालिया देर को कुछ सर के जाफे में नाक डालेगी तो बड़ा बुरा बात है जब तुहरा को जाफे नहीं कौन से नहीं करा था तो का ही तू जलाला मेद मको जी छोड़ दे भैया है ठीक बा अपन काम से मतलब रखिया कह के जब दूसर के काम में तू टांग अड़ाई बा तब प्रॉब्लम होला समझदार की इशारा काफी बा माइंड योर ओन बिजनेस रात के 9:26 अगला गीत है काम चोर कृषि मोनिक गैले वन और जबरदस्त गीत है शोभा के नाम शोभा हवन पॉम्पलमुस से रिहाना हसनानी हवन फेनिक्स से और ये गीत जरावती से कविता के नाम कविता हलिस्कारी से आफेज सैबिया से सुना था मंजा गीत हरो नाम अनिता जी फ्रीकॉन फ्लैग से कमला दिनु माताबा से और ये गीत दीपा दुखित रहेलन कनाडा अगर पति केविन अगर बेटा और सब दुखित परिवार के नाम है गीत चली चाची ललिता कुशल त्रियोले से है गीत हरो नाम

हाँ तो तू कामचोर नहीं बन गया है, तू मेहनती बन गया, तू कमासूद बन गया, मेहनत से लगन से काम करिया, अपन परिवार के पालन पोषण करिया। हम देखी ना ढेर जिनिस लोग हैं काम नहीं खोजन सा करे कि बाप रे बाप खाली खोजन सा घर में बैठ के समय में खाए के घूमे के नाचे के बरका बरका रिबान पहने के बरका बरका मोटरसाइकिल गाड़ी चलाए के ये सब अच्छा है, हम नहीं बोलते नहीं, पर काम करिया पैसा कमाइया तब ना सब करे। अब माँ बाप के बोझ पर कितना करब, एगो लास हिला माँ बाप लोग के अपन निकालो के पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिए सर, तब जिस भी बहनता बहन सको थो रहोगे तो भाई अब लड़का नहीं हुआ ना, एगो आजुल तो गल हुआ माँ से हो गल हुआ, तो चेहरा काम करे के काम करवा बनिया, काम चोर नहीं बनिया। हे हे हे रात के 9:35 तक लगी गीत दिन ता नाना दिन ता और गीत मैं भी इनकी ओर से चला दी सर जान भी खतीर आप रहिलन वाकवा मैं भी क्या बात है क्या बात है।

गीत राज सब मालो के नाम का है कि मई महीना के अंत में दैनीय वीकेंड दैनीय दिमाग के हमने मनाओ अब सब मदर्स डे मातृ दिवस और माता माँ रहेला माँ देवी के रूप माँ जननी चाहे कुछ भी हो जाए तो हर माँ ही रही और माँ के मान सम्मान करिया माँ के आदर करिया माँ के पैरों तले जन्नत बा स्वर्ग बा मातृ दिवस की शुभकामनाएं अभी से ही सब एमबीसी रेडियो के सुनने वाले श्रोतालों के नाम वैसे तो रोज मदर्स डे बा तो हर माँ बीमार रही तो वो कभी दवाई खरीदिया कौन चीज माँ के मन करी खाए की तक खरीद लिया यही तो मदर्स डे कहला मदर्स डे एक दिन नहीं मदर्स डे 365 दिन होला रात के पौने 10 बजे तक तू सुनो तो रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन प्रोग्राम हो चुरी तड़का ये प्रोग्राम रोज चले ला लेंदी से लेके दिमाग से एमबीसी रेडियो पर रात के 9 से 11 बजे ले केवल एमबीसी रेडियो पर अगला गीत मधुबाला आए है सब हसीनालों के नाम जिक्र नाम बा मधुबाला गीत तेरे खातिर भवंती जुदन गीत गैले वन्ना और है गीत चलावत ईसा वीना कुपुस्वामी के नाम रहेलन मेबग फिर सुलमा दुखित मेबग रहेलन हन्ना और नबीहा कर घरोला कर सासुमा और सब दुखी परिवार के नाम और है गीत शालिनी हीरू की ओर से ओकर घरोला विशाल फिर बेटी हर्षिता वर्षिता जोशिता वर्षिता और सब हीरू परिवार जो नहलन लाफ्लोरा मधुबाला

आज की जो हमने युग में जिया था इससे ओके टेक्नोलॉजी एज बोल रहा सर और आज के युग में इंटरनेट के बोलबाल हर एक क्षेत्र में इंटरनेट ने दुनिया के बदलते लगभग का नजरिया और इंटरनेट के ढेर महत्व जानकारी के स्रोत है और इंटरनेट पर जैबत पढ़ाई सेहत टेक्नोलॉजी न्यूज सब कुछ चला सकेरा मेरे संचार में क्रांति वीडियो कॉल ईमेल सोशल मीडिया के माध्यम से लोग दुनिया के किसी भी कोने में सकल जला जाए और जब हमने इंटरनेट की बात कही सर तो इंटरनेट के जरिए हमने के अक्से मिलेला व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जूम पर ऑनलाइन शिक्षा भी होला स्टूडेंट्स घर बैठे सकी ऑनलाइन क्लासेस करें इंटरनेट के जरिए डिजिटल लर्निंग भी होला रोजगार और बिजनेस में इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग सकल जला करे डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग वर्क फ्रॉम होम ई सब होला मनोरंजन के साधन भी होला इंटरनेट के जरिए यूट्यूब पर सकबा फिल्म देखे गीत सुने गेम खेले और वीडियो देखे और सकबा जा नेटफ्लिक्स यूट्यूब पर भी जाए और इंटरनेट पर दूसरी ओर इंटरनेट के नुकसान इंटरनेट से नुकसान भी होला हमने के मोबाइल और इंटरनेट के लत लग जाला फेक न्यूज साइबर क्राइम समय की बर्बादी और प्राइवेसी के खतरा इंटरनेट एगो शक्तिशाली साधन है अगर एक तू अच्छी तरह से इस्तेमाल करबा तो अच्छा रहेला योगदान आने ला जिंदगी में

कर अगर बुरा तरह से इस्तेमाल करबा तो ये तोरा बर्बाद करके रख दे। अब ई दीपान होला कि तू इंटरनेट की कैसे यूज करत हो। रात की 9:50 अगला गीत सुंदर परी गिरीश रूपचंद गीत हवन और है गीत छरावती सा आशा जानू के नाम रहेलन को तेज बहुत बहुत प्यार के साथ सब परिवार खातिर सुंदर परी।

0: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खाती
1: कमर जलसा हंगामा
2: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे एमपीसी रेडियो कमर धमाल और मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमपीसी रेडियो
3: रात के 10:11 हुआ था तू सुना तो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन प्रोग्राम बहुत हुई चल का रात के 11 दी अभी गीत सुना मोरिसिया मोरिसिया मोरिसिया जहाँ हमने की देश है जो ना बहुत ही खूबसूरत देश है दुनिया भर में कोई छोटा सा टापू हिंद महासागर में पर हिंद महासागर के सितारा है और बोली जा सकी हमने की देश इतना सुंदर बा और उतना ही सुंदर हमने की भाषा हमने के लोग हमने की धर्म हमने की संस्कृति और सबको एक साथ मिलकर हमने सब त्यौहार मनाए ला सो चाहे कावड़ी हो चाहे होली हो ईद उल फित्र हो कोनो भी त्यौहार हो तो सबको मिलजुल के हमने ये सब त्यौहार मनावी ला सा अगला गीत रेशम के साड़ी जी हाँ गीत चलावती सा खासम खास ये सब श्रोतालो खातिर गीत चली अनिता जी के नाम जो नवन फ्री कॉम्प्लेक्स से और सब परिवार खातिर है गीत चलाव सा ओके अगला गीत चलाव सा राजेश भाई की ओर से सब पकड़ परिवार खातिर और फिर हई थी दई गीत जन चली रेशम की साड़ी उस सब महिला लोग खातिर जोन खुशी रह रहे तरह तरह के साड़ी पहने के रेशम की साड़ी

हमने की देश में हर एक लोकाशन को सारी रहेला अब जैसे टेलीविजन में देख बता टीवी से तुलसी में तुलसी के साड़ी अनुपमा के साड़ी हर प्रकार के साड़ी बा और साड़ी तो सब जोड़ी जोड़ी रहेला तो जितना कोई खुशी रहा साड़ी पहनने के गीत तो लोग रात के 10:18 और जाना सकी ठंडा करता ठंडा गिरता था बेशक अगर नाइट शिफ्ट में होता तो अपन एगो त्रिको अपन साथ ले दिया बहुत अच्छा क्या कि ये ठंड से बचे खातिर और अगला गीत है बेल बेल दी हाँ बेल बेल दी मौसी और बहुत ही व्यासन गीत सबको खातिर जिदा को अभी हमने के साथ देवता रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर तो चले एक साथ सुनाएगी बेल बेल दी मौसी

जब से दुनिया बनल बा तब से हर कोई खुशीला सुंदर दिखे के जोली दिखे के लाजवाब दिखे के और सब कोई खुशीला कोई ना कोई पर कॉम्प्लीमेंट करी ऐसे शादी में कोनो महिला गर्ल कोनो पुरुष बोलक कितना खूबसूरत दिखाते हुआ था कि इसे खुश हो जाला या कोई पुरुष बात कोई कॉम्प्लीमेंट कर दे लगता वो खुशी हो रहा था सब कोई हमनी खुशी रही रहा सब कोई हमने की तारीफ करी था ठेक वाले का फूल जाए रहा सा तो अपन ख्याल रखे अपन आपकी सुंदर बनी आजकल ब्यूटी पार्लर बा मैनिक्यू पेडिक्यू और हेयर स्टाइलिंग ये सब होला और बेशक अपन आपके खूबसूरत बनी है जब अपन आपके खूबसूरत बनाई बा तब देख बस सब कोई तोहर आगे पीछे घूमी अब अपन कदर नहीं करवा तो कोई तोहर कदर ना करी तो चला भी गुड सब्जा कभी कभी आगे पीछे बस हमसे बोल गीत एल्बम हर जमाना गीत तो हमने चाहो तो इस विपन के नाम विपन के और से कर माता जी पिताजी सब परिवार लोग खतीर शास्त्री बने माली जी है गीत तोहर खतीर ड्राइवर दो सौ वंजा वो सब ड्राइवर दो सौ पैसेंजर लोग खतीर गीत चली और है गीत हमने चलाओ तो इस वैभव के नाम जन्म की साथ देवतवन और ये गीत सैतो एस एस कॉलेज के सब स्टूडेंट्स और अध्यापक दोस्तों के नाम कभी कभी आगे पीछे

ऐसे ने को जमाना रहल कि कबो कबो खाली छोकरा लोग के पढ़ावत रहन से छोकरी लोग के जब पढ़ाई के समय आवत तो छोकरी के बोलते छोकरी से का हो तो शादी करके दूसर घर में चल जाए पर शिक्षा के साथ समय के साथ जब शिक्षा आल तो उसे मोटालिटी में थोड़ा बदलाव आल और आजकल तो छोकरा छोकरी दोनों पढ़ाई करेरा प्री प्राइमरी से लेकर टर्शरी लेवल तक हर एक क्षेत्र में लड़का लड़की दोनों पढ़ाई करेगा तो जहाँ ले सकब लड़का लोग के चेहरा पढ़ाई की जी हाँ और सरकार की ओर से हर सुविधा देवल जाता हर मदद देवल जाता लड़का लोग के पढ़ाई के और चेहरा लड़का लोग के पढ़ाई के लड़का लोग के पढ़ाई बात हमने की समाज आगे बढ़ी हमने की दुनिया हमने की देश आगे बढ़ी तो कबो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करिए छोकरा छोकरी में तो हर जगह बेटा हो चाहे बेटी हो सब कोई के पढ़ाया बीए एमए पीएचडी पोस्ट पीएचडी तक पढ़ाया लड़का लोग के पढ़ाई बा लिखाई बा लड़का लोग बड़ा आदमी बनी जब लड़का लोग बड़ा आदमी बनी तो तू सुख कर बजा इन्हें कि लड़का के खड़ी फॉर्म संग एच एस सी करा दे रहा था बस आजकल को फॉर्म संग एच एस सी बस नहीं बा चहला लड़का लोग के आर पढ़े के और पढ़े की कोनो उम्र नहीं रह रहा है कोनो सीमा नहीं रह रहा पढ़ाई लिखाई की तू चाहे 50 साल के हवा कबो लिखो नहीं करो अभियो से तू खुद पढ़े की सकब प्राइवेट ट्यूशन लेके पढ़े सकब अपन फॉर्म साइन करे हाँ चेसी करे जी हाँ अच्छी तरह सुना तो

चाहे सैकौता थोड़ा ससौता हो जाए तो हर मन बा स्ट्रॉन्ग विल पावर बा एगो मोटिवेशन बा आगे बढ़े कि थोड़ा मन में एगो सचिका पाए के दशक भर प्राइवेट ट्यूशन लेके आगे बढ़े और कोनो न कोनो काम करे। जी हाँ, यही पढ़ाई लिखाई जो है बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई एगो वरदान है। तो चहला हमने कि देश में अगर सब कोई पढ़ल लिखल रही तो दुनिया देश कितना सुंदर हो जाए। तो हमेशा हमारे बात याद रखिए, हमेशा लड़का लोग की अंकुआ से करिए, प्रोत्साहित करिए आगे पढ़े के, बड़ा से बड़ा क्लास करे के, तमी जमी लड़का लोग की गुनीमन काम मिले, लड़का लोग अच्छी तरह से समाज में रही। अगला गीत हेलो हेलो राजकमल चिंतामणि गीत के लिए, बहुत ही जोशीला गीत है हेलो हेलो। और हेलो हेलो करके का बोला था और एक साथ सुनब जा है गीत चलाओ तो रोशनी की ओर से और घरोला को दिन को बेटी और सब परिवार के नाम और है गीत चली अपाया जी के नाम और रोसाई रसोल के नाम और वेंकटेश है गीत और खतीर बहुत बहुत प्यार के साथ हेलो हेलो।

0: भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। गमक धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: एमबीसी रेडियो पर हमने किया तोलो के नाता अभी से नए कई साल से 25 साल से बाद जब एमबीसी फॉरेस्ट साइट में रहा तब से हमने किया तोलो के दोस्त चल याद बना तब रहल वन वर्ल्ड एफएम ताल एफएम शुगर एफएम की शुरुआत तब से आज रे तोलो के हमने के साथ दिल आला और आज भी उनके साथ देवा तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एगो ऐसा दौर आल जब फॉरेस्ट साइड में एमबीसी जब वहाँ बंद हो तब यहाँ एमबीसी मौका में खुलल और बेशक और यहाँ पर आल बेस्ट एफएम रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती और ऐसा सुंदर से प्रोग्राम सब कुछ चलाई लग जा कि सबके के मन लुब्ध हो गल आज भी कल भी आज भी हमेशा एमबीसी रेडियो हमेशा नंबर वन रहल हमेशा नंबर वन रही और बरकरार रखी। और जब गमत की बात होला तरे को बहाना चला गमत करे के कोई किरानी भी ऐसे रहेला शादी रहेला फ्योसाए रहेला या कोनो खास संगत जा तो हर लग गया कई साल बाद तक गमतवा हो भी करी बढ़िया बढ़िया पकवान नाच गाना म्यूजिक धूम धड़ाका क्या बात है। जब गमत की बात करब से जब तोहर जेब में पैसा बा भैया तो रोज की गमत बा जब जेब में न कौड़ी न पैसा तो कैसन गमत हो कि नहीं ई खातिर बोल जा कि जब ली जेब में पैसा बा तक गमत ही गमत होला आज के गमत को जी हाँ जल ललिता गजादर बोला तो गमत करके तो हम भी ललिता से मिला ललिता चल तोहर संगे हमू कमरवा डुलाइला तो जितना कोई के मन बा गमत करे के भी रात के तो लोग के नींद नहीं लगता तो चला गमत करे संगे संगे स्वीटी और स्वीटी उनके साथ देव तो अन्ना और फिर थी वन भाई लाफ्लोरा से भाई धनी हो उनके साथ देव तो लाफ्लोरा से भाई धनी सोनन चितन की यह गीत तोहरो नाम किशन गुड़ियाप और किशन गुड़िया आपको सब परिवार हम के साथ देवत हो जा और जितना कोई की नींद ना लगता है गीत लो के नाम कोई कोई के बारे में सोचा था तो बस है गीत लो के नाम आज की गमट

जब से दुनिया बनल बा छोकरा छोकरी एक दूसरे से मिलेला दोस्ती होला प्यार होला फिर शादी शादी के बाद परिवार परिवार के बाद बच्चे इस सदियों से इसे होला और हईते होते रहेला और यहाँ कुछ जोली छोकरी बात जगह से कुछ जोला जोली छोकरा प्यार करेला ये तो आजकल बड़ी पॉपुलर बा कुणाल हिरेलाल के गावल गीत और रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस के श्रोता लोग गीत की जितना मांग करे रहे सर रोज के बाप रे बाप एक जोली छोकरी से प्यार करीला जेकर खातिर हम रोज जीला कैसे बदला बोके कैसे समझा बोके तो चला कैसे समझेबा अपन दिल के चला गीतवा सुने जोली छोकरी से प्यार करीला

संगत लोग आज के गमटको को जलसा लाल बा किशोर किमिया के गावल है गीत के संगे भोज भीतर का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से अभी हम के साथ ही रह जाते लोग के फोन को और एसएमएस के लिए शुक्रिया। ठीक 11 बजे सुन बजा सुनहरी पल कार्यक्रम और बाद रात के 12 बजे से कल पचे के 5 बजे ले नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने की तरह मुलाकात हुई अब बुधवार की रात के 9 से 11 बजे इसी चैनल पर रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। तब तक हमने की इजाजत दिया और जी प्रताप सिंह से तालुक

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

नमस्कार श्रोताओं, सभी का स्वागत। मैं विकास आपके साथ कार्यक्रम सुनहरे पल AM2 रेडियो मॉरिशस पर। और बड़ी खुशी होती है जब इन पुराने गाने या फिर कहें कि एवरग्रीन गोल्डन हिट्स को लेकर इस एक घंटे के सफर में हम शामिल होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस ओर से आप भी तो हमारा साथ दे रहे हैं। तो चलिए, हर एक लम्हे में म्यूजिक भरते हुए आगे चलते हैं सफर में सुनहरे पल।

भाई जिंदगी तो ये सिखाती है कि कभी खुद को कमजोर मत समझना, क्योंकि टूटकर भी लोग संभल जाते हैं। जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है, बस जरूरत होती है फिर से उठने की और खुद पर यकीन करने की। तो बस जिंदगी ने एक मौका दिया है सपने देखने का, तो उनको पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी। लगे रहो, खुद से कहो कि ये मुमकिन है।

0: है मोहब्बत का नगमा जुबान पर ना आता। अगर तुम ना मिलते, अगर तुम ना मिलते, मोहब्बत का नगमा जुबान पर ना आता।
1: हर नई सुबह जिंदगी की भागा दौड़ी फिर से शुरू हो जाती है। वैसे मुस्कुराना भी एक कला है जो हर किसी को नहीं आती। कई लोग दर्द छुपाकर भी दूसरों की खुशी बन जाते हैं और वही लोग असल में सबसे मजबूत होते हैं। मुस्कुराइए, साथ में जिंदगी मुस्कुराएगी और ये मुस्कुराहट, ये खुशियाँ आपका पता लगा ही लेगी।

ये जो आपका हमारा रिश्ता है ना म्यूजिक के जरिए, ये बेमिसाल है। वैसे रिश्तों में अगर अहंकार आ जाए तो बातें कम और दूरियां ज्यादा हो जाती हैं। थोड़ा झुक जाना सीखिए, क्योंकि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते बचाना ज्यादा जरूरी होता है।

कुछ लोग हमारी जिंदगी में, हमारी कहानी में गीतों की तरह, जहाँ जैसे गाने हैं उसकी तरह आते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं और फिर याद बन जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ दिल में हमेशा गूंजती रहती है। तो चलिए इन गानों के लिए प्यार एक बार फिर से लेकर मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूँ। जल्द ही कार्यक्रम चलते रहेंगे एम टू पर, एमबीसी रेडियो हमेशा आपके लिए। ध्यान रखिए, म्यूजिक का साथ देते जाइए। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ NBC रेडियो हर पल आपके साथ।

0: गजरा।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

सुबह पे जिस तरह शाम का

0: घर में
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

आज ही खाएगा।